नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को बधाई हो अभियंता दिवस की। चित्त और साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा पूजा की बधाई। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास के 26वें तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय बजे हैं सुबह के 5:59 और 10 सेकंड। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें कार्यक्रम के तहत कुछ कृषि संबंधी जानकारी।
3: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज की कड़ी में हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव पर। श्रोताओं, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्यान्न पोषण एवं आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे देश में 60% से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% योगदान देती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सन 1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन 51 मिलियन टन था, जो कि 2011-12 में बढ़कर 250 मिलियन टन हो गया था। इसी प्रकार से तिलहनों का उत्पादन भी 5 मिलियन टन से बढ़कर 28 मिलियन टन हो गया था। विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न पदार्थों जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, फल, चाय, कपास, गन्ना इत्यादि के उत्पादन के संदर्भ में भारतीय 3 शीर्ष स्थानों पर जगह बनाने में कामयाब रहा। लेकिन आज वही भारत विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा का कम या ज़्यादा होना, पवनों की दिशा में परिवर्तन आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। ये ग्रीन हाउस गैसें धरातल से निकलने वाली अपरक्त विकिरणों यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है और इससे बाढ़ एवं चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय कृषि पर अनावृष्टि का संकट सबसे ज़्यादा है क्योंकि आज भी सिंचाई से संबंधित व्यवस्था मानसून पर ही आधारित है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तथा उत्तर पश्चिम भारत में पाले तथा मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं कृषि उत्पादन पर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों, मृदा, मवेशी, कीट पतंगों पर प्रभाव देखा जा रहा है और इससे कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानसून के दौरान वर्षा अवधि में कमी आई है। शीतलहर एवं पाला, तिलहनों तथा सब्जियों के उत्पादन में भी कमी आई है। वर्ष 2003 में जनवरी माह में शीतलहर के कारण विभिन्न खाद्य पदार्थों में जैसे आम, पपीता, केला, टमाटर, आलू, मक्का, चावल आदि के उपयोग पर अधिक प्रभाव पड़ा था, उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा था। वर्ष 2004 में मार्च माह में तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप गेहूं की फसलें अपने निर्धारित समय से 10-20 दिन पहले ही तैयार हो गई थी, जिससे पूरे भारतवर्ष में गेहूं के उत्पादन में 4 मिलियन टन से भी ज़्यादा कमी आई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2009 में अनियमित मानसून के कारण चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जलवायु चरम सीमा तक परिवर्तित हुई है। जलवायु परिवर्तन विभिन्न प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपजाऊ मृदा, जल, अनुकूल वातावरण, कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक फसल को विकसित होने के लिए एक उचित तापमान, उचित प्रकार की मृदा, वर्षा तथा आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इनमें से किसी भी मानक में परिवर्तन होने से फसलों की पैदावार भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के जलीय चक्रण को प्रभावित करने के परिणाम स्वरूप कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसलों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचता है। बागवानी फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उच्च तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करता है, जैसे खरपतवार को बढ़ाकर फसलों और खरपतवार के बीच स्पर्धा को तीव्र करता है, कीट पतंगों तथा रोग जनकों की श्रेणी का विस्तार करता है। कृषि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि फसलों की ऐसी प्रजातियों को विकसित करना चाहिए जिनमें शुष्कता एवं लवणता का दबाव सहने की क्षमता हो और जो बाढ़ एवं अकाल के प्रभाव से शून्य हो, तथा सिंचाई एवं जल संबंधी व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए। नई कृषि तकनीकियों जैसे कि संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल विविधीकरण, कीट प्रबंधन को सुधारना, मौसम पूर्वानुमान व्यवस्था में सुधार लाना इत्यादि को अपनाना होगा, तभी कृषि उत्पादन सही ढंग से हो पाएगा। और आज की जानकारी यहीं तक।
0: जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे सुनीता अग्रवाल से, पूर्व प्रसारित यह जानकारी थी। इसी के साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रामचरितमानस गान का पाठ आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत।

बाली वध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

0: गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।
1: सत्संगति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति, अर्थात सच्चे या अच्छे मनुष्यों की संगति। इसमें यह तो सत्य है कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। शठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति साधुओं की संगति होती है जो सब प्रकार से वंदनीय और प्रार्थनीय होती है। साधुओं की संगति तो सभी गुणों की खान है जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल डालती है। सत्संगति दो प्रकार की होती है, प्रथम साधु और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से और दूसरी हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की संगति हमें विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके जीवन मुक्ति के साधनों का पथ प्रदर्शन करती हुई संसार की अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति को उपकार के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए सत्संगति के लिए कहा गया है कि वह अज्ञानी से अज्ञानी और जड़ से जड़ पदार्थों को भी ज्ञानवान और चेतनशील बनाती है। संगति से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइए धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मनोनति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार, कर्तव्य पालन, धर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशलता तथा मन वचन और कर्म की पवित्रता आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत, भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।
0: सत्संगति का प्रभाव सुन रहे थे अभी आप आज का चिंतन। वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आइए सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

0: सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे।

इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए फैटी लिवर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्यों होता है, क्या कारण है और निदान क्या है, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ऋषि और बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।

0: नमस्कार मित्रों, बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां निकलकर सामने आ रही है और हमारी जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित कर दे रही है। एक ऐसी ही बीमारी है फैटी लीवर की। 10 में से लगभग 7-8 लोग फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है और ख़ासकर जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, अल्कोहल लेता है, उसे ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो भी फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों इस तरह की बीमारी आजकल हो जा रही है और समय रहते हैं इसका हम उपचार कैसे करें, और सबसे अच्छी बात कि हम सावधानियाँ क्या क्या रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: जी नमस्ते।
0: डॉक्टर साहब, ये फैटी लीवर क्या है और ये कॉमन क्यों होता जा रहा है?
1: जी, ऐसा है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप अपने प्रैक्टिस में 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो उसमें 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहा है। तो ये आम चिकित्सकों के लिए एक बहुत पैनिक सा कंडीशन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस पर गहन अध्ययन करते हैं और इस पर अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्यतः जो लीवर की समस्या होती है वो पहले अल्कोहल के कंजप्शन से होती थी। अल्कोहल लेने से लीवर में सूजन आ जाता था जिसे हम लोग फैटी लीवर बोलते थे, जिसको बोलते थे अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है और वो है आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, आपका रहन सहन, आपका फूड हैबिट्स। तो जब हम ये देखते हैं कि आज के डेट में लोग फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे आश्रित हो गए हैं,

0: सीजनल फूड नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, तो इस वजह से आप का जो फैटी लीवर है वो धीरे धीरे आम जनों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसा देखते हैं कि आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये काफ़ी बड़ा है, तो 5 से 10 सालों में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप रात को सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर दिन में आप फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो वो कंडीशन और पैनिक हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिक को अगर ठीक करेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आहार विहार को ठीक करेंगे, तो हम फैटी लीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
1: मतलब हमारी जो बदलती जीवन शैली है, या यूं कहें बिगड़ती जीवन शैली है, वो बहुत हद तक इस फैटी लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है।
0: जी बिल्कुल।
1: हमारे खाने पीने उठने बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, हम रात तक जगे रहते हैं, जैसा आपने बताया, जब मन किया सो लिया, जब मन कर लिया खा लिया, और खाना भी कैसा, वो तैलीय पदार्थ, और ये हमारे लीवर को रोगग्रस्त कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसका पहचान क्या है और समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है। तो जैसे ही फैटी लीवर स्टार्ट होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, तो लोग को लगता ही नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक स्टेज बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो ये एक दिक्कत सी कंडीशन, अगर स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है, ग्रेड 1 ही है, तो अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन की दवाइयों में आपकी फैटी लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, जैसे LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि आपकी लीवर का साइज वगैरह क्या है। साथ में अगर हम CBC करा लेते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, तो ये कुछ छोटा सा टेस्ट है, इससे अगर आप चाहें तो निरंतर करने रहने से हम लोग फैटी लीवर को बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता है।
1: और यदि लक्षण दिखने लग जाते हैं, यदि हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ये सारी जो रूटीन टेस्ट है नहीं कराते हैं, तो फिर लक्षण क्या दिखने लग जाते हैं इसके?
0: हाँ, लक्षण में क्या है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पैर में सूजन आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीवर का फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी पाचन शक्ति वो कमज़ोर होने लगेगी। और लीवर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो सार भाग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडीज़ को मिलता है। और एक लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको आलसीपन आने लगेगा, फिर आपके पैर में सूजन होने लगेगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचने लगेगा, तो ये सारी समस्या आपके फैटी लीवर्स की आती है।
1: डॉक्टर साहब, यदि शुरुआती लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं, या हमने रूटीन टेस्ट कराया और मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है, तो फिर इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
0: देखिए, आज के इस सेशन में मैं यह बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लीवर की समस्या इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद पे आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और आयुर्वेदिक कुछ औषधियों से 100% ठीक होता है। तो इसमें एक आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अगर हम विरेचन लेते हैं, जो कि एक पंचकर्म का प्रोसेस है, तो विरेचन से आपका लीवर खुद डिटॉक्स हो जाता है, मतलब वो शुद्धिकरण हो गया लीवर का, और उससे आपकी लीवर की सारी समस्याएँ ठीक हो जाती है। और उसके बाद कुछ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ अगर अपने वैद्य से या चिकित्सक की सलाह से जो भी वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुनर्नमा से बनी हुई चीज़ें हो गई, भुई आंवला से बनी हुई चीज़ें हो गई, भृंगराज से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये जो चीज़ें जो हमारे आसपास ये मिलती भी हैं, ये चीज़ें, तो इसका सेवन करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऋतु शोधन, कि हर शरद ऋतु में अगर हम एक विरेचन ले लेते हैं तो हमसे लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ वो ख़त्म हो जाएगी और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, और यदि फैटी लीवर की समस्याएं ज़्यादा हो गई है, तो फिर उपचार किस प्रकार किया जाता है और कितना वक्त इसमें लग जाता है?
0: हाँ, अगर आप लीवर की समस्या से ग्रसित हो गए तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें, वो एक आपको एक प्लान बना के देंगे कि कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, आहार विहार को ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि लेंगे और साथ में पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आने वाले 3 महीने में अगर आपका लीवर बहुत डैमेज हो गया, मतलब आप ऐसे 3 स्टेज हम लोग देखते हैं, पहले फैटी लीवर, और फैटी लीवर को अगर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस से वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सरोसिस से फाइनली वो लीवर कैंसर में मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है,
1: मतलब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है।
0: हाँ, क्योंकि अगर हम फैटी लीवर में ही कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर का एक अपना ऐसा गुण होता है कि वो लीवर के सूजन को कम करने के लिए लीवर उसमें एक स्कार बनाता है, मतलब कि उसके चारों तरफ एक छाया, मतलब उस पर एक दाग आता है, और दाग आने से लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मतलब टफ होते जाता है, हार्ड होते जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है, लीवर का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और वो धीरे धीरे लीवर फेल्यूर की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर वो हम लोग लीवर फैटी लीवर को एक सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो।
1: डॉक्टर साहब, हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, बिल्कुल, तो शुरुआत से ही हम अपने खान पान को सुधार कर रखें, अच्छी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें, बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित रखें, तो किस प्रकार कौन कौन चीज़ों का सेवन किया जाए और किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए?
0: बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें होल ग्रेन्स पे डिपेंड होगा, आजकल मल्टी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं तो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल सब्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें वैसे आर्टिफिशियल जो चीनी है या आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा, और जितनी भी घर से बनी हुई पदार्थें हैं उस पर डिपेंड होना होगा। और आज हमारे जो पंत प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसके लिए हमें अपने खान पान में तेल और घी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आने वाले समय में जो फैटी लीवर से लोग पैनिक हो रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा।
2: फैटी लीवर कारण और निदान अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर ऋषि से, बातचीत कर रहे थे श्री संजय कुमार लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, समाचारों के लिए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, चलिए दिल्ली केंद्र।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थितान् जनान् अपि संबोधयिष्यति। त्रिदिवसीयस्य सम्मेलनस्य प्रदर्शन्याः च आयोजनं सिलिकॉन टू सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम इत्यस्मिन् विषये भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने अर्धचालक विद्युत प्रौद्योगिकी मूल्यश्रृंखलया सम्बद्धाः वैश्विकाः भारतीयाश्च उद्योगाः, नीति निर्मातारः, निवेशकाः, अनुसंधानकर्तारः, नवोद्यमाः, शैक्षणिक संस्थाः, छात्राश्च एकत्रिताः भविष्यन्ति। उद्घाटनात् पूर्वं प्रधानमंत्री ह्यः नवदिल्ल्यां प्रमुखैः वैश्विक मुख्य कार्यपालकैः सह अर्धचालक सम्बन्धस्य विशिष्टोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। श्रीमोदी भारतस्य अर्धचालक क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय प्रशासनस्य उद्योगक्षेत्रस्य च मध्ये घनिष्ठ सहकार्यस्य आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवान्। भाजपेति दलं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये अद्य आरभ्य मासैकपर्यन्तं राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियानं आयोजयिष्यति। अस्य अभियानस्य केन्द्रे जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतायाः प्रकाशनं तथा विशेषतः युवजनानां सेवाकार्येषु प्रवृत्त्यर्थं प्रोत्साहनं भविष्यति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः 1200तमस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य सप्तमे दिनांके शपथ ग्रहणस्य 25 वर्ष पूर्तिरपि स्मरिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिवसः अद्य सेवादिवसरूपेण आचरिष्यते तथा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु रक्तदानशिबिराणि आयोजयिष्यन्ते।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री को भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य

0: दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today morning at Yashobhoomi in New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate completion of his 25 years of public service as a head of government. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown, Vadnagar, in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. A report.
3: A series of welfare programs will be held at PM's birthplace in Vadnagar today on the occasion of his birthday and 25 years of his public service. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will participate in a grand Mahaarti at the historic Shamishta Lake, where sacred water will be collected in a kalash and handed over to bikers travelling to Varanasi. The dignitaries will lead a foot march from the lake to Hatkeshwar Temple to offer prayers, followed by flagging off a rally of 250 bikers heading to Varanasi to spread the message of public service. Home Minister and Chief Minister will also lead a cleanliness drive at Vadnagar Railway Station today. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
2: India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis. The Government of India has reconstituted the Central Board of Film Certification, CBFC, for a period of 3 years. Ministry of Information and Broadcasting said that the reconstituted CBFC comprises the 18 members including Vinod Anupam, Manoj Joshi, Hansraj Hans, Preeti Zinta, Pankaj Tripathi, Ricky Cage, Sunil Shetty, Rupali Ganguly and Priyadarshan. The notification regarding the reconstitution of the board was issued by the Ministry of Information and Broadcasting yesterday. Delhi government has approved the construction of a 250-bed super speciality cum trauma block at Guru Tegh Bahadur Hospital in Dilshad Garden of Delhi. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi. The Chief Minister said that once the new block becomes operational, critical patients will have access to 24/7 emergency and trauma center, specialist treatment, diagnostics, surgery and intensive care at one place. The Federal Reserve in United States raised its benchmark interest rate for the first time since 2023 in an effort to lower persistent high inflation. The central bank also signaled that another rate hike could occur later this year. The quarter point increase lifts the Fed's key rate to about 3.9% and over time could result in higher borrowing costs for mortgages, auto loans and credit cards. In a set of quarterly projections, the Fed also signaled that its rate setting committee expects to hike rates a second time to 4.1%. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against hosts Afghanistan in Delhi this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India has already secured the series with convincing wins in the first two matches, while Afghanistan has only managed brief moments of resistance. And that is the end of this news bulletin.

अभी से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसके तहत सुनेंगे आप गायन राग अहिर भैरव, कलाकार होंगी परवीन सुल्ताना। चंदन दास की गई चंद हौसलों का आप लुत्फ उठाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत 7:45 पर। सुबह 8 बजे शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए और प्रादेशिक समाचारों के लिए 8:30 बजे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इसकी कड़ी संख्या 3 सुनेंगे आप। 9 बजे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे शिव प्रशांत गौरव। 9:30 बजे सुनवाएंगे आपको प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए एक बार फिर से शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में सुबह 10 बजे 10:10 पर लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रम। आज के मेहमान 10:10 पर रंग तरंग 11 बजे और यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12 बजे। हिंदी अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों के लिए पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में 1 बजे। आकाशवाणी की रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार 1:10 पर सुनेंगे आप। 1:20 से पुनः विविध भारती के कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकेंगे। सुरीला सफर 1:20 पर, 2 बजे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, हिंदी समाचार 2:15 पर, 2:30 सुनेंगे आप सदाबहार नौ में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। प्रादेशिक समाचार पुनः 2:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे। 3 बजे से सुनेंगे आप सखी सहेली कार्यक्रम।

आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। पुनः आकाशवाणी के रांची केंद्र से 4 बजे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा, प्रसारित किए जाएंगे। और हेलो फरमाइश विविध भारती के तहत सुनेंगे आप 4:02 से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5 बजे एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों का समय है और 5:02 से छाया गीत का आप आनंद लेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:30 हम अपने स्टूडियो से आपको जानकारी देंगे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की।

शाम 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत किया जाएगा। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पर और छुआछूत से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है, इस पर भी चर्चा होगी। डिजिटल युग में हिंदी, इस विषय पर वार्ता होगी रितिका कुमारी तिवारी की। प्रादेशिक समाचार शाम 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे और 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। शाम 6:30 सुनेंगे आप ग्रामीण सभा कार्यक्रम कृषकों को संबोधित प्रायोजित कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में धान फसल में कीट और रोग प्रबंधन पर, समसामयिक कृषि कार्य पर आज की बात होगी। एक महिला किसान सीता देवी गोदरमा विश्रामपुर पलामू से ले गई भेंटवार्ता सुनवाएंगे आपको। बातचीत करेंगे संतोष कुमार, पूर्व प्रसारित यह भेंटवार्ता होगी। जल संरक्षण पर आज की नसीहत, मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी और पलामू के मंडी से प्राप्त बाजार भाव जानेंगे आप। शाम 6:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र में हम शामिल होंगे। 7:00 सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 पर 7:15 पर अपने स्टूडियो से सुनवाएंगे आपको प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग के तहत कुछ फिल्मी गानों का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:30। उजाले की ओर 7:45 पर सुनेंगे आनंद कुमार की वार्ता, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य। चित्रपट से फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। 8:30 क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरहदें और हिंदी अंग्रेजी उर्दू समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में 8:45 पर। 9:30 विविध भारती के तहत आज के फनकार कार्यक्रम का आप आनंद ले सकेंगे और 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्पेशल प्रोग्राम सुनेंगे आप चीयर फॉर भारत। रजनीगंधा फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने अपने स्टूडियो से 10:30। 11:00 पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए और सभा समापन हम करेंगे 11:10 पर। तो यह थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग में आइए सुनते हैं गायन राग अहर भैरव, कलाकार हैं परवीन सुल्तान।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को

0: घोषणा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पद यात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD कन्ना लोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
5: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजिनों में से एक बना है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर

0: 25,000 रुपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. US House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. More from our correspondent.
3: The conference will focus on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Parallel sessions will cover advancements in the display industry, 6 country roundtables are designed to facilitate collaboration and joint ventures, a forum on women's leadership, among other sessions. Semicon India 2026 will adopt a comprehensive value chain approach, showcasing the journey from semiconductor materials, equipment and chip design to fabrication, advanced packaging, electronics and systems. It will feature more than 600 participating companies and is expected to attract around 50,000 visitors with representatives from 52 countries, more than 400 executives and over 150 speakers. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years in public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown.

0: widening the social security. The Economic Advisory Council recommends ending sterilization-linked incentives as national fertility rate is well below the replacement fertility rate, writes the Hindustan Times. And finally, in a historic milestone, Sayukta Parashar becomes first woman IPS officer to lead CRPF's elite Cobra unit, states the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi, New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no local standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. US House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international to be played in Delhi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
6: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
7: पर खर्चा?
6: बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
7: वो तो ठीक है, पर खर्चा?
6: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
8: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का पसाव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
11: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे 2 दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद 2 दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से एक महीने तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान, देशवासियों से एक दिया जलाने का आह्वान। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी, सरकार 30 सितंबर को रखेगी अपना पक्ष। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा घोटाला मामले में दो अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने मरीजों को 4 घंटे के भीतर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने के लिए एमएस साइंस कंपनी के साथ किया एमओयू। रांची में बनाया जाएगा कमांड सेंटर। और झारखंड में 20 सितंबर तक बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। राज्य भर में कल वज्रपात से 5 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से एक महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के

0: हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ और चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने लोगों से आज शाम एक दिया जलाने का आह्वान किया है। चतरा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तौर पर मना रही है।
2: 17 सितंबर को भारत देश के लिए ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो बिना रुके लगातार 25 वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे हैं, अथक प्रयास कर चलते आ रहे हैं। वैसे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री को लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु संध्या 6 बजे से 7 बजे एक एक दिया आशीर्वाद हेतु जलाए।
1: राज्यपाल सचिवालय ने नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। सरकार की सहमति के बाद राज्यपाल सचिवालय बर्खास्तगी का आदेश जारी करेगा। नए विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब कुलपति को बर्खास्त करने के लिए राज्य सरकार की भी सहमति जरूरी है। प्रस्ताव में कुलपति दिनेश सिंह पर वित्तीय अनियमितता, गबन और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर पीएल खाते में जमा राशि को अपनी मर्जी से खर्च करने का उल्लेख किया गया है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अपील पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब राज्य सरकार की ओर से 30 सितंबर को अपना पक्ष रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि राज्य सरकार और जेएसएससी इस मामले में कोई शपथ पत्र दाखिल करना चाहते हैं तो 24 सितंबर तक उसे दाखिल कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक कर एसआईआर के तहत दावा आपत्ति एवं सुनवाई की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने सुनवाई के दौरान टोकन सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती और छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिला मतदाताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने प्रत्येक दावा आपत्ति का निष्पक्षता से परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन में एक रूप सुनिश्चित करने के साथ शून्य अथवा कम फॉर्म 6 वाले मतदान केंद्रों पर पात्र युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास करने को कहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों में अपराध अनुसंधान विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा के मामले में 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जमशेदपुर के ऋतिक रोशन और रांची के पंकज प्रशन हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार मरीजों को समय पर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल की है। सरकार ने एक कॉल में 4 घंटे के भीतर मरीजों तक ब्लड पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कल एमएस साइंस कंपनी के साथ एमओयू किया। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में कमांड सेंटर बनाया जाएगा जहां से रक्त की मांग और आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
3: वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लोगों को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो एक कॉल करेंगे वो और आपको ब्लड मिल जाएगा। ब्लड की दिक्कत अब नहीं होगी, बिल्कुल जांच के साथ ब्लड मिलेगा। उसका काम है कि वो हर जिले में कलेक्शन भी वही करेगा, कहाँ कलेक्शन करना है, नहीं करना है, किसके साथ करना है वो करेगा, टेस्टिंग भी वही करेगा।
1: रांची में झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में टेली स्टार्टअप कलेक्टिव रांची चैप्टर का कल आयोजन किया गया जिसमें राज्य के 75 से अधिक स्टार्टअप फाउंडर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निवेश, फंडिंग, व्यवसाय विस्तार और प्रभावी पिच तैयार करने से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों ने स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। धनबाद जिले के

0: निरसा में कल पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में सागर नामक अपराधी को गोली लगी है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बाहर से कुछ अपराधी धनबाद पहुंचे हैं और स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।
1: सूचना मिली थी कि वहाँ पहुंची पुलिस को देखते ही उसने फायर किया, तो गोली लगने की सूचना है और वो इलाजरत है। उसकी अब बात करने की स्थिति में आएगा तब हम लोग डिटेल पता करेंगे। टोटल तो 5 लोगों की सूचना थी, 2 लोग पकड़ा गए हैं, 1 यहाँ इलाजरत है और 2 भागा हुआ है जिसके लिए टीम लगी हुई है। सब लोग जब एक बार पकड़ा जाते हैं डिटेल पूछताछ हो जाएगी तब कोई कहानी समझ में आएगी। अभी तक इतना पता चल रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आएगी।
0: गुड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री समेत 10 देसी पिस्टल की बॉडी, 20 पिस्टल की पाइप, 22 मशीन पार्ट्स, 30 अदद पीतल रॉड सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेन मिर्धा और गुलमुनी देवी के रूप में हुई है। और अब मौसम का हाल। राज्य में 20 सितंबर तक कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आज दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी झारखंड समेत पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में बारिश हो सकती है। इधर कल हुई वज्रपात की घटना में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा और गिरिडीह में 2-2 और पलामू में 1 व्यक्ति की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पीएफ के लिए बेसिक सैलरी लिमिट 25,000 रुपए किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने लिखा है झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौशल और तकनीकी शिक्षा में बढ़ेगी साझेदारी। दैनिक भास्कर ने ट्रेड वॉर पर लिखा है रूसी खरीद पर अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा, वोटिंग आज। हिंदुस्तान ने झीरम घाटी नक्सली हमले के 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं दैनिक जागरण ने जेपीएससी घोटाले में रांची के पंकज प्रसून और जमशेदपुर के ऋतिक रोशन की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से 1 महीने तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। देशवासियों से एक दिया जलाने का किया आह्वान। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी, सरकार 30 सितंबर को रखेगी अपना पक्ष। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा घोटाला मामले में 2 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने मरीजों को 4 घंटे के भीतर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने के लिए एमएस साइंस कंपनी के साथ किया एमओयू। रांची में बनाया जाएगा कमांड सेंटर। और झारखंड में 20 सितंबर तक बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। राज्य भर में कल वज्रपात से 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: भारत में मानव तस्करी मुख्यतः भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक अपराध है। मानव संहिता के अनुसार तस्करी का अर्थ है बलपूर्वक तरीकों से शोषण करना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती करना, तस्करी या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी सबसे न्यूनतम प्रकार का अपराध है, जो देश के लगभग हर हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि गैर कानूनी तरीकों से लोगों को किसी और देशों में सीमा पार करना भी मानव तस्करी होती है, लेकिन इसे परिभाषित करते हुए एक मानव तस्करी के अंतर्गत बाल तस्करी के मामले में किसी भी तरह की हिंसा या जबरदस्ती शामिल है। बच्चों को बलपूर्वक किसी घृणित काम में शामिल करना भी मानव तस्करी कहलाता है। पहला, जबरन वेश्यावृत्ति करना। दूसरा, बंधक मजदूर बनाना। तीसरा, जबरदस्ती भीख मांगना। चौथा, जबरन अपराधिता में शामिल करना। पांचवा, घरेलू गुलामी करना। छठा, जबरन शादी करना। सातवा, जबरन अंग निकालना जैसे किडनी, आँख, खून इत्यादि। जबरन नशीली दवाओं की तस्करी इत्यादि आ रहा है। मानव तस्करी होने के पीछे कई कारण हैं और दबंग इसका फायदा उठाते हैं। गरीबी से बचने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवारों को भरण पोषण करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। कुछ लोग नौकरी, यात्रा और आवास की व्यवस्था करने और अन्य प्रकार के जेब खर्च के लिए उधार लेते हैं, लेकिन जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो ये अपना उधार लेन देन करने के लिए आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ मामले में तो तस्कर लोगों के अन जरूरी कागजात भी रख लेते हैं और जब तक उसका कार्य नहीं चुकता तब तक ये लोग उसका शोषण करते हैं। मानव तस्करी, शोषण, वेश्यावृत्ति आदि जैसे कार्यों के लिए व्यक्ति का मूवमेंट होता है। तस्करी के शिकार लोगों में 51% महिलाओं में, 28% बच्चों में, 21% पुरुषों में होता है। सेक्स उद्योग में शोषित 72% महिलाएं ही होती है। भारत उन देशों में एक है जहां मानव तस्करी के शिकार लोगों की बड़ी संख्या है। इन तथ्यों से पता चलता है कि मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है। इसके फैलने का मूल कारण गरीबी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अपराध को रोकना चाहता है तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रभावित देशों के साथ सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय परीक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम व्यक्ति के अवैध व्यापार के विरुद्ध भारत में कानूनी प्रक्रिया के सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय

0: देश के 270 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिटों की संख्या के लिए निधि प्रदान की। भारत में विभिन्न कार्यों से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की तस्करी अधिकाधिक की जाती है। यौन शोषण और जबरन विवाह के उद्देश्य से देश के भीतर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है, खासकर उन देशों में से जहां लिंग अनुपात पुरुषों की अधिक है। श्रम के उद्देश्य से भी पुरुषों और लड़कों के तस्करी की जाती है और अवैध व्यापार करने वाले के द्वारा उसका यौन शोषण भी किया जाता है। सर्कस शो में भी जबरन मजदूरी के लिए बच्चों को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानव तस्करी पूरे विश्व भर में गंभीर एवं संवेदनशील समस्या है। मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध है। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी का सबसे बड़ा रूप यौन शोषण है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वर्ष 2019 में 1000 केस तथा 95% महिलाओं को वैश्यावृत्ति में पाया गया है। वर्तमान में 6616 मुकदमे रिपोर्ट भी हुए हैं। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति वर्ष 44,000 बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई कदम भी उठाए हैं तथा कई प्रकार के कानून भी लागू किए हैं। वर्ष 2018 में मानव तस्करी निर्वाहन संरक्षण और पुनर्वास विधेयक बनाया गया, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाए जाने का प्रावधान रखा गया। ऐसे मामलों में अपराधी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसकी संपत्ति की कुर्की और जब्ती भी की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसे मामलों का भी मानवाधिकार समय समय पर संज्ञान लेता रहा तथा राष्ट्रीय आयोग व अंतर्राष्ट्रीय आयोग महिलाओं का भी इस मामलों में अपनी पैन नजर रखी है। मानव तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे मानव तस्करी को रोकने के लिए अति संवेदनशील समुदायों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाना, मानव तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यरत आसान बनाना, तस्करी के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और व्यवस्थाई संबंधी फ्रेमवर्क बनाना, राज्य तथा केंद्र मानव तस्करी को बंद करने के लिए तस्करी के शिकार लोगों को छुड़ाएं और अपराधों की जांच के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ऑर्थिक की स्थापना करना, जिला पुलिस नोडल अधिकारी जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करेगी जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
1: अभी आप मानव तस्करी पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, मन से बड़ा कोई दर्पण नहीं। यदि हम अपने अंदर झांकें तो हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हमारे कर्म क्या हैं, और जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही हमारी गति होती है। मानव देह ईश्वर ने बड़े ही भाग्य से दिया है, तो सत्कर्मों में ही इस देह को लगाया जाए तो अति उत्तम होता है। जी हाँ, क्योंकि ये दुनिया है, जब तक यहाँ हमारा दाना पानी है हम रहेंगे, और उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो हमारे कर्म ही हैं जो हमें बाद में भी जीवित रखते हैं। यदि हमारे अच्छे कर्म हैं तो युगों तक लोग याद रखते हैं, और यदि कर्म सही नहीं है तो फिर याद तो करेंगे लेकिन किस तरह करेंगे आपको भी पता है। चलिए, बस कुछ ही पलों में हम जो हर पलामू कार्यक्रम लेकर आएंगे उसके पहले सुनिए कुछ संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम जोहार पलामू। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का, संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
7: जोहार पलामू।

स्वागत है तमाम साथियों का हमारे जोहार पलामू कार्यक्रम में। मित्रों, आज है भगवान विश्वकर्मा जयंती, जो देवों के वास्तुकार शिल्पकार माने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वो सृष्टि के प्रथम इंजीनियर वास्तुकार हैं जी। और बड़े ही धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। औद्योगिक संस्थानों में और अन्य जगह घरों में भी लोग धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि ये जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवलोक में स्वर्ण नगरी लंका, द्वारिका नगरी और देवताओं के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था। इस दिन भारी वाहनों, मशीनों, औजारों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और प्रभु विश्वकर्मा से व्यापार में वृद्धि के साथ साथ मशीन, औजार ये सही काम करते रहें और इसकी कामना की जाती है। साथ ही सुख समृद्धि शांति की कामना करते हैं श्रद्धालुगण, ताकि कोई बाधा ना आए उनके जीवन में और ना ही उनके व्यापार में, कार्य में। जी हाँ, आज पूजा बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसके साथ ही गणपति उत्सव का तो चल ही रहा है, जिसकी धूम मची हुई है। चारों ओर शंख, घड़ियाल, धूप, दीप, भजन कीर्तन से वातावरण दिव्यतापूर्ण हो गया है। जी हाँ मित्रों, ये पर्व जो हैं हमें नई ऊर्जा देते हैं, उत्साह देते हैं, उल्लास, उमंग और जीवन को खुशनुमा बनाते हैं और एक जीने की कला सिखाते हैं। भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे हम एक साथ मिलजुल कर पर्व को मनाएं।

गणपति जी विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, मंगलकर्ता कहे जाते हैं और सर्वप्रथम पूजे जाते हैं ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए किसी भी कार्य में। जी हाँ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए डालते हैं एक नज़र आज की प्रमुख घटनाओं पर। सबसे पहले हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की बधाई देते हैं। उनका है आज जन्मदिवस और इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिवस है, जयंती है, पुण्यतिथि है। आइए डालते हैं एक नज़र। नीदरलैंड के नाविक ने 17 सितंबर सन 1958 को मॉरिशस की खोज की थी। जी हाँ, और अमेरिका के बोस्टन शहर की स्थापना आज ही की तारीख 17 सितंबर सन 1660 में हुई थी। कोसा ब्रोमा का युद्ध हुआ था 17 सितंबर सन 1761 को और यूरोपीय संसद ने 17 सितंबर सन 2004 को मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। न्यूयॉर्क में 17 सितंबर सन 2011 को आक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था मलेशिया। 17 सितंबर सन 1957 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था मलेशिया। जॉर्डन में 17 सितंबर सन 1970 को गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। हवाना में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 17 सितंबर सन 2006 को शुरू हुआ था। भारतीय चित्रकार और बंगाल स्कूल के कार्टूनिस्ट गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ आज ही की तारीख को 17 सितंबर सन 1867 को। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ ई वी रामास्वामी नायकर का जन्म भी आज ही की तारीख को 1889 को हुआ था और भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक आई के कुमारन का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ और भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर सन 1986 को हुआ था। जी, और अमेरिकी मानव विज्ञानी लोक विज्ञानी रूथ बेनेडिक्ट का निधन हुआ था आज ही की तारीख को। तमिल विद्वान निबंधकार कार्यकर्ता वी कल्याण सुंदरम का निधन हुआ आज ही की तारीख को। फैशन डिजाइनर व्यवसायी लॉरा एशले का निधन 17 सितंबर सन 1985 को हुआ था और ब्रिटिश दार्शनिक प्रोफेसर कॉर्ल प्रॉपर का निधन भी आज ही की तारीख को हुआ था। प्रसिद्ध लेखिका पाउला एड्स का निधन भी आज ही की तारीख को हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, क्योंकि गीत संगीत के बिना तो कार्यक्रम अधूरा ही होता है, क्योंकि बीच बीच में मनोरंजन

मित्रों, आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। और अब बातें कर लेते हैं सेहत की, लेकिन उसके पहले मौसम की भी बातें आपको बता देते हैं। मौसम की जानकारी, मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बारिश हो सकती है और कहीं बादल छाए रह सकते हैं, यानी कि बादल आते जाते रहेंगे। कभी धूप, कभी बादल, कभी वर्षा का मिला जुला असर रहेगा। जी हाँ, यदि हम तापमान की बातें करें तो आज का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और कल का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना बताई गई है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम। और आइए अब सेहत की बातें करें। हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम वायु प्रदूषण की बातें करें, जो हम सांस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो प्राणवायु है, तो आज प्रदूषित हो गई है, इसका क्या असर होता है, आइए जानते हैं। आज के इस औद्योगिक युग में वायु प्रदूषण सबसे बड़े स्वास्थ्य संकटों में से एक बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बातें करें तो उनके अनुसार दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। वायु गुणवत्ता का सीधा असर मानव स्वास्थ्य

प्रदूषण न केवल हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है बल्कि हृदय, मस्तिष्क, त्वचा और यहाँ तक कि गर्भावस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वायु प्रदूषण वह स्थिति है दोस्तों, जिसमें वातावरण की स्वच्छ और प्राकृतिक हवा में अवांछित विषैले या हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, और इसमें कुछ प्रमुख प्रदूषक शामिल हो जाते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, धूल, धुआं और रासायनिक गैसें। ये प्रदूषक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, वायु प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, लकड़ी, कोयला, कचरा और अन्य ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्पन्न हो जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती हैं। औद्योगिक प्रदूषण है रिफाइनरी, पावर प्लांट, फैक्ट्री, रासायनिक उद्योगों से कई प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जो वायु गुणवत्ता को, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और इसमें PM2.5 सिलिका धूल यानी सिलिकोसिस का कारण बनता है, कोयले की धूल ब्लैक लंग रोग का कारण बनता है, और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें शामिल होती हैं जो हमारे हृदय को, स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बस, ट्रक, कार, दो पहिया वाहनों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, लोगों में अनेक बीमारियों का कारण बनती हैं। जी हाँ, और निर्माण स्थल होते हैं जहाँ पे, वहाँ पर सीमेंट कण, डीजल से चलने वाली मशीनों का धुआं है, धूल है, मिट्टी वायु में मिल जाती है और फिर यह PM10 के स्तर को बढ़ा देती है। यदि हम कृषि अवशिष्ट की बातें करें तो पराली दहन

ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में कैंसर के जोखिम को बढ़ा देते हैं, खतरा पैदा करते हैं। जी, घरेलू शोध भी वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं दोस्तों। घर के अंदर लकड़ी और कचरा जलाना भी वायु में हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन करता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से मनुष्यों में कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर देखा जाता है। यदि वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाए तो अस्थमा, बार बार खांसी और गले में जलन, संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की क्षमता में कमी, COPD और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों, बुजुर्गों, बाहरी श्रमिकों, एथलीट्स और पहले से श्वसन रोग से पीड़ित व्यक्तियों पर होता है। इससे प्रभावित जो अंग हैं, हृदय। हमारा हृदय प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसी अति सूक्ष्म कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप, अनियमित धड़कन, हृदयाघात, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधित जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। शोध के अनुसार PM2.5 कण मस्तिष्क कोशिकाओं में सूजन पैदा कर देते हैं, जिससे संज्ञानात्मक क्षमता में कमी हो जाती है, ऑक्सीडेटिव तनाव हो जाता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, ध्यान और एकाग्रता में कमी आ जाती है, तनाव और अवसाद बढ़ जाता है, तंत्रिका संबंधी विकार, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को नुकसान, ये सब कुछ हो सकता है। प्रदूषित हवा त्वचा और आंखों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इससे समय से पहले झुर्रियाँ हो जाती हैं, त्वचा में जलन होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, आंखों में जलन होती है, पानी आने लगता है, लालपन हो जाता है, सूजन और ड्राई आई सिंड्रोम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय करने चाहिए। इसको पूरी तरह से रोक पाना तो कठिन है, लेकिन इसके प्रभाव को तो कम किया ही जा सकता है। अत्यधिक प्रदूषण के दिनों में बाहरी गतिविधियों को कम करना चाहिए, अधिक ट्रैफिक वाले मार्गों से बचना चाहिए, पौधे लगाइए, अधिक से अधिक पौधारोपण होना चाहिए। घरों में भी आप अपने घरों में भी भले ही कम जगह है, छोटे छोटे गमलों में पौधों का रोपण करें, पौधे लगाएं। मनी प्लांट है, एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है, जो घर में लगाए जा सकते हैं, घरेलू प्लांट है उसे अवश्य ही लगाएं। घर के भीतर भी कुछ प्लांट लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, उन्हें भी लगाना चाहिए। और अपने घर में एयर प्योरीफायर का उपयोग करना चाहिए। मास्क का उपयोग सबसे प्रभावशाली होता है। जब कोरोना काल था और हम सभी

वाहन नहीं चल रहे थे, लोग अपने घरों में थे, तो ये तो हमें देखने को मिल ही गया जी। और व्यायाम करना चाहिए, सुबह सुबह जितनी जल्दी हो उतने समय, उस समय वायु शुद्ध होती है, उस समय व्यायाम करना और योग करना फायदेमंद होता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है ताकि शरीर का जो भी विषैला तत्व है वो बाहर निकल जाए, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ही चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका हम ध्यान रखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं जी। और पर्यावरण प्रदूषण यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है दोस्तों, इसे मिलकर सामूहिक रूप से करना होगा तभी इससे बचा जा सकता है। पौधारोपण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये तो बार बार कहा जाता है, ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जैसे जैसे विकास होता जा रहा है पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल घटते जा रहे हैं और इसका असर सीधे मानव पर, जीव जंतु पर प्रभाव दिखा रहा है जी। तो ये तो है।

0: बुद्ध ने कितनी अच्छी बात कही कि हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ, तो हर एक नई सुबह एक हमारे लिए एक अवसर लेकर आती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को कैसे ग्रहण करते हैं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है मित्रों, प्रसन्नता ही मार्ग है। जी हाँ, जीवन में यदि खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो फिर सारी नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग सकारात्मक होते हैं उनके आसपास कभी भी दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो दुखी नहीं होते हैं, भले ही उनके जीवन में कितने भी संकट हों, परेशानियां हों, समस्याएं हों, क्योंकि समस्याओं से तो घिरा हुआ हर व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक है उन परेशानियों में भी वो प्रसन्नता ढूंढ लेता है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है, तो फिर समस्याएं अपने आप धीरे धीरे सुलझ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उलझने समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ, और यदि उस समय जो व्यक्ति परेशान हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, तो वो तो फिर और दुखी हो जाता है, स्वयं भी दुखी होता है, अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करता है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है और मन में अनेक तरह के विचार उसे मरने से पहले ही मारने लगते हैं। जी हाँ, क्योंकि वह तिल तिल कर मरने लगता है। इसलिए इन महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इनके विचार यूं ही नहीं होते। उन्होंने कठिन तपस्याएं की, अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, ज्ञान अनुभव अर्जित किया, उसके अनुसार उन्होंने बातें बताई। तो उनके बताए मार्ग पर चलिए, अपनी जिंदगी को संवारिए। और अभी तो उत्साह का वैसे भी वातावरण है, चारों ओर उत्साहित वातावरण है, लोग पर्व का आनंद ले रहे हैं। आप भी झूमते रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, लोगों के साथ, मित्रों के साथ प्रसन्न रहिए, जीवन को प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ाइए। और घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई हमसे कह रही है कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामो कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर निर्मला तिवारी का था, संयोजनकर्ता थे प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव खिंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा, जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में, ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना

पर एक जंगल में कुछ लोग गए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेश ही क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए। यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहां भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन और किसी अन्य भाषा में इसका

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
4: रविंद्रनाथ
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए और समावेशी विकास को गति दी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown Varnagar in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Varnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and will always remain integral and inalienable parts of India. India called upon Pakistan to immediately vacate from areas under its legal and forcible occupation instead of engaging in such theatrics. Hyderabad Liberation Day is being observed today, commemorating the historic merger of the erstwhile Hyderabad princely state with the Indian Union on this day in 1948. Central government has been organizing Hyderabad Liberation Day celebrations since 2022. This year's main program will be held at the Secunderabad Parade Grounds with Vice President C.P. Radhakrishnan as the chief guest. Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat, G. Kishan Reddy and Bandi Sanjay Kumar, along with several other dignitaries, will participate in the celebrations. The U.S. Federal Reserve has raised its benchmark interest rate for the first time since 2023 in an effort to lower persistent high inflation. The central bank also signaled that another rate hike could occur later this year. The quarter point increase lifts the Fed's key rate to about 3.9% and over time could result in higher borrowing costs for mortgages, auto loans and credit cards. In a set of quarterly projections, the Fed also signaled that its rate setting committee expects to hike rates a second time to 4.1%. In the United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. The bill is named after the late Senator Lindsey Graham of South Carolina, who spent more than a year negotiating it. The measure was approved in a 262-159 vote and now heads to President Donald Trump to be signed into law. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of northeast India today. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are predicted over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat for the day. In Delhi, partly cloudy sky with a possibility of very light rainfall at isolated places during morning to forenoon is likely today. India's Asian Games 2026 campaign will get underway today with Tech Ball 2 days before the official opening ceremony in Aichi, Nagoya in Japan. The Indian men's doubles pair of Declan Marshall Gonsalves and Mohammad Anas Imran Beg will be the country's first athletes in action. And that is the end of this news bulletin.

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपकी साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया? विस्थापन की बातें हैं इसमें।
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे, और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था। तब पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई।
0: अभी भी युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और वो

0: की बात भी है उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो कैसे आपने तो लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहां से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी,
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
0: जी,
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं। तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं। तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की, तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली, मैं
0: जी
1: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था, उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे, तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा, तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया उसमें डबल छपाई आ जाती है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया
0: जी, जी।
1: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है। अगर हम देखें तो

0: अपनी किसी बहाने स्पर्श करते हैं तो वो बड़ा त्रासद होता है,
1: अवांछित स्पर्श।
0: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास। ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा, जिसमें स्त्री पात्र हैं, तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं?
1: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई हैं दार्शनिक, तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं। वहीं मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है, क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं,
0: और गहने पहनना,
1: गहने पहनना, और वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती
0: क्या
1: थी।
0: बात है
1: लेकिन पापा के थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से
0: जी,
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा। तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा।
0: जी जी
1: तो मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बात है कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे
0: जी,
1: तो मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी। तो बात कथक की चली है तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूँ और कोई बड़े आयोजन में भाग लूँ हिस्सा लूँ?
1: वही बात फिर आयावरी की आ जाती है ना कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि 3 साल हो, मतलब मेरे को सीखते हुए 6 साल हो गए, तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता ये कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती हैं, तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूं कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय।
0: जी जी।
1: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया
0: जी।
1: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी, तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
0: पूरा
1: वो लेखन की तरफ चला आया। और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
0: बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि बात कथक की चली है और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो हाँ, फिर अधूरा
1: सा लगे। आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती रह जाती थी और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओं में दिल रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
0: क्या बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी और हमने सुना है, अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: ये तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ।

0: इंस्पायर हुई, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था, उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की और

0: और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में स्वतंत्रता से पहले ली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं, लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पर रखा और मल्लिका काफी करीब उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी, और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने आप बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
1: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
0: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पे विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
1: गजब, क्या बात है।
0: तो ऐसे ऐसे अगर मैं कहूं कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल, और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया। निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
0: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही, जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
1: जी।
0: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है, और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं, और उसके विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है, वो उसे मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलन है। तो वो लिखने में मुझे आनंद आया, क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ, मैंने वो आंधियां देखी हैं, पीली आंधियां जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियां घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
1: क्या बात, तो राजस्थान में,
0: राजस्थान में। तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे, तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियां लिखा। और खाप पंचायतों का दौर था, तो वहां पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्जाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियां मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो, जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है, जिसको साइड वाइंडर कहते हैं, तो

0: वो सांप, क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं, और कोई भी दृश्य रचें तो हमेशा कहा जाता है ना, कहानी लिखिए नहीं, दिखाइए। तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए।
1: क्या बात है। तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूं और आपकी कहानियों को याद कर रही हूं। वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टरपीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ये, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है। तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। या अब हम आपके इस पर आते हैं, शाल भंजिका। तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
0: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी। इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई, क्योंकि मेरे पास,
1: मुश्किल होता है प्रेम कहानी
0: हाँ,
1: लिखना जब
0: रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा।
1: जी
0: तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे। तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है, ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र। तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं, और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है। और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है, जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है, हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है,
1: अच्छा,
0: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं, तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो,
1: हाँ,
0: तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका
1: हाँ
0: शीर्षक आया है।
1: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपकी आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती
1: क्या
0: हूं।
1: बात है। हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है, त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही तो हुआ ये कि मेरे लास्ट जो तीन पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा।
1: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है वो सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहाँ नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी।
1: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बर्तानवी नैतिकता, जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतु लक्ष्मी के हस्ताक्षर से मातृसत्ता समाप्त कर दी गई।
0: जी जी।
1: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं, लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
0: जी।
1: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को, दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। तो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई।
0: और यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहां से? दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था? ये
1: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहां रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का। तो वहां पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूँ। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरे एक सूंड है।

0: जी
1: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती
0: गजब,
1: है।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरीटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे, जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
0: क्या बात है।
1: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोध परक है, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
0: बिल्कुल। तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे हैं, और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना, कैसे ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर, उसके मन में घुस के आपने
1: परकाया
0: लिखा
1: प्रवेश।
0: परकाया प्रवेश। और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका, जो यायावरी पर है, किनाया,
1: जी बिल्कुल,
0: और
1: घूमता।
0: विदेशों की यात्रा के दौरान। उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
1: नहीं,
0: विदेशी
1: वो
0: लेखक।
1: घुमक्कड़ी वो अलग है। वो घुमक्कड़ी
0: अच्छा
1: अंग्रेजी
0: जी
1: साहित्य
0: जी
1: के
0: हाँ हाँ
1: गलियारों से, वो
0: हाँ
1: तो यात्रा वृत्तांत ही है।
0: हाँ
1: लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है, उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का, स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ, जो कि एक पर्यावरणविद है,
0: जी
1: वो सॉल्ट लेक पे काम करती है। वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी, तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे, और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और
0: ओ
1: शाम को
0: क्या
1: जम
0: बात
1: के डांस करते
0: है।
1: थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें, हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा, आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं टर्की की जो यात्रा थी
0: ये हिस्सा
1: उसको,
0: आपकी किताब में भी है, मैंने पढ़ा भी है। हाँ
1: बिल्कुल,
0: जी
1: तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूचे आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा, और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम, जिसको हम सच में, जिसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
0: उस प्रेम से, मतलब वो देह से आगे है वो प्रेम, हमें लगता है।
1: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरह की खींचतान नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है। एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है, वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
0: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। मेरे ताऊ जी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन, जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं, वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं, और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं,
0: तो जो रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं,
1: रेडियो से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं
0: शुक्रिया
1: मनोज कुलश्रेष्ठ उनका नाम है, तो
0: सखी
1: सहेली उनका प्रिय कार्यक्रम है।
0: जी जी।
1: तो उन सब के सानिध्य में मैं रही, बचपन से पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही, घर में कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने जमीनी काम किए हों और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है, और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है, और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ, और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रही हैं।
0: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहाँ कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का,
1: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि 3 बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी 2 बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए, और मजेदार बात यह कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है, और उनको ट्रस्ट चला रही है, और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है वहां पे, बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के, वो वस्त्र पहने हुए,
0: अच्छा,
1: और जेन ऑस्टन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया, मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके, जितने संभव हो सकते थे थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी साहित्य के गलियारों से।
0: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
1: पहली बार तो मैं घूमने गई थी, और संयोग से मैं, जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी, तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए, तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
0: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली है, जहां पर लोक संस्कृति लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
1: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है, किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं, तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
0: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और?
1: हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो साथ
0: हिंदुस्तानी,
1: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी। चलो
0: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना।

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां होंगी,
1: ज्यादा ही है ममता, 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया वन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं।
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां हैं उसमें हैं। तो चाय बागानों में बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी, तो वन्या में वो कहानियां हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है, और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी।
0: जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी, पढ़ाई के दिनों में शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था, और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
0: जी, मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही है कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला, तो लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा। फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे, इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

भजन सुमन इस एल्बम से आपको सुनवा रहे थे ये भजन, जिसे पंडित रामानंद शर्मा के पंडित रामानंद शर्मा ने इसे अपने ढंग में ढाला है। गोपाल, सुखदेव, कौशेंद्र, राघवेंद्र शर्मा की आवाजें आपने सुनी, शर्मा बंधु का संगीत इस भजन में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं मनहर उदास की आवाज में ये गजल, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बजने ख्याल। इस एल्बम से आप सुन रहे थे गजल दिलराज कौर की आवाज में, सईद राही ने इसे लिखा, उत्तम सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में इब्राहिम अश्क का ये कलाम,

अली मोरे अंगना। इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे शुभा मुद्गल और साथियों की आवाजें, शहाब अलाहाबादी के बोल और जवाहर वट्टल का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए सुनते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये कव्वाली, जिसे गाया मोहम्मद रफी और साथियों ने, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जवाहर वट्टल का संगीत आप सुन रहे थे, बोलो तारारा। इस एल्बम के गीत में आवाज दलेर मेहंदी और साथियों की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं नाजिया हसन और जोहेब हसन की आवाजों में इंदिवर के बोल। बिद्दू का संगीत एल्बम बूम बूम से सुनिए ये गीत।

नाजिया हसन और जोहेब हसन की आवाजों में इंदिवर के बोल आप सुन रहे थे। बिदु का संगीत बूम बूम एल्बम से ये गीत आपने सुना। रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सपना अवस्थी और अनु मलिक की आवाजें, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत इस गीत में जिसे हमने लिया है चाइना गेट फिल्म से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 में ये बात कही।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि निर्माण और आत्मनिर्भरता हमारी परंपरा में शामिल रहा है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
2: सेमिकॉन 2.0 विल बिल्ड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवर 6 पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज डिजाइन, द पिलर नंबर 2 इज मशीन्स एंड मटेरियल्स, पिलर 3 विल बी मोर डिस्प्ले मेमोरी सिलिकॉन कंपाउंड एंड लॉजिक फैब्स, पिलर 4 विल बी मोर एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स, पिलर 5 विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द पिलर 6 इज अबाउट टैलेंट।
0: 3 दिन का यह सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मन अड्डे की आवाज में आनंद फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसे गीत यादों की महफिल कार्यक्रम में चुने हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर्स हमें नजर आते हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म से गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, इसलिए कुछ ऐसी फिल्मों के गीत हमने चुने हैं जिनमें डॉक्टर और मरीज नजर आते हैं।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे सफर फिल्म के इस गीत में। इंदिवर ने से लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गुलशन बावरा के बोल, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में परिवार फिल्म के इस गीत में संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसी फिल्मों के गीत लिए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर आते हैं।

आ गले लग जा। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में खामोशी फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, तो ऐसी फिल्मों से गीत लाए हैं जिनमें डॉक्टर

मुन्ना भाई MBBS फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शान की आवाज में। अब्बास टायरवाला ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं कलाकार। कबीर सिंह फिल्म का ये गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, सचेत परंपरा का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है. साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है. भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए.
3: ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्टर of electronics and IT Ashwini Vaishnav said India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades, but it was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organized across the country. Talking to media on the occasion, BJP Chief Nitin Naveen said party workers across the country are participating in these blood donation camps. Mr. Naveen said under the leadership of Prime Minister Modi, India is rapidly moving on the path of development to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. Securities and Exchange Board of India Chairman Tuhin Kanta Pandey has said that greater public awareness about the risks involved in derivatives trading is needed as many retail investors continue to suffer losses even after 3 to 4 years of trading in the futures and options segment. Addressing the NABFID Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey highlighted the need for investors to understand whether they are prepared to participate in the derivatives market. Mr. Pandey said the securities market can play an important role in meeting India's growing infrastructure financing requirements by providing capital at different stages of an asset's life cycle. The Enforcement Directorate's Delhi Zone has conducted search operations at 4 premises located across Delhi, Bihar, Jharkhand and Karnataka today. The search operations are being carried out in connection to a case related to a bomb attack on the RSS office in Ranchi in June this year. In Jammu and Kashmir, 2 terrorists were neutralized in a joint intelligence-based counter-terrorism operation launched in the Bratal area of Udhampur district today. Our correspondent reports that the operation was launched last night after security forces received confirmed inputs about the presence of terrorists in the area. The army said the operation was still in progress, with search and surveillance operations continuing in the area. Prime Minister Narendra Modi has shared an article written by former President Ramnath Kovind highlighting India's inclusive development trajectory. In the article, Mr. Kovind highlighted how India's growth story is increasingly bringing those who were previously unheard, unseen or underserved into the national mainstream. Prime Minister Modi has also shared an article written by athlete PV Sindhu in which she stated that India never lacked talent but often missed opportunities and pathways to realize big dreams. In a social media post, the Prime Minister noted that the article reflects on how the last 12 years have changed this, enabling a new generation of Indians not just to dream big, but to turn those dreams into reality. Benchmark domestic equity indices were trading on a positive note in the afternoon session. The Sensex added 247 points to 74,583 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत देश भर के लोगों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, कहा हर आशीर्वाद जनसेवा के उनके संकल्प को बनाता है दृढ़। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर दिया जा रहा जोर। राज्य के विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों, वर्कशॉप और विभिन्न प्रतिष्ठानों में धूमधाम से की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। दक्षिण अफ्रीका में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने जलवायु अनुकूलन को विकास, जन सुरक्षा और आजीविका की रक्षा का बताया विषय। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची में आयोजित T20 मैच में झारखंड के ईशान किशन और बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी खेल प्रेमियों को करेंगे रोमांचित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत समस्त देशवासियों ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति, जनकल्याण और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के प्रति आपका समर्पण एवं प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। इधर आज से एक महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 साल पूरे कर रहे हैं। यह सफर जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से तय हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा और सुशासन दृष्टिकोण से प्रभावित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए लगातार काम कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता ने झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद के खात्मे के साथ साथ आम जनजीवन को नई दिशा दी है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। गांव वीरान हो रहे थे, लोग डर के साये में जीते थे, लेकिन फिर बदलाव की एक शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं।
0: गौरतलब है कि गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र लाल आतंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन केंद्र सरकार के नीति और सुरक्षा बलों के साहस ने नक्सलियों का यहां से खात्मा कर दिया। यहां के लोगों ने बताया कि उन्हें अब मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी हैं।
1: मेरे प्यारे,
2: पहले गुरबादी रहो, पेंशन नहीं मिलत रहो, अब पेंशन मिल लो हमन के असाधान जी लागत है। रोड भी बन गेलै और हम इनके आराम से गाड़ियों में बाजार मन चल जाले।
3: हम लोग का पहले से बहुत दिक्कत था पानी के, अब में सरकार जल मीनार दे दिया। जल मीनार से हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बाल बच्चा का कपड़ा धो रहे हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद देते हैं।
4: पहले नक्सलवाद के टाइम सड़कें नहीं थी, थाना से कोई स्टाफ नहीं आते थे, शिक्षा व्यवस्था का स्थिति बहुत बुरा था क्योंकि नक्सलियों का टारगेट ही रहता था अधिकारी लोग, ठेकेदार लोग। अब यहाँ पर CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब आकर जब बैठे बहुत राहत मिली। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: झारखंड में आज धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स, बोकारो स्टील प्लांट, DVC चंद्रपुरा, TTPS गोमिया स्थित IEL, ओरिका लिमिटेड कोयलांचल के औद्योगिक क्षेत्र, वर्कशॉप और विभिन्न प्रतिष्ठानों में पूजा की गई। इस अवसर पर आकाशवाणी रांची परिसर में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसी दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। गोड्डा जिले के लाभुकों ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जुड़कर उन्हें न सिर्फ रोजगार मिला है बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी संवर रहा है।
5: हमारे देश प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो भी उन्होंने दलित समाज या पिछड़ा समाज या विश्वकर्मा समाज के ये उन्होंने जो उत्थान किया है, सबसे पहले वो गरीबों की मसीहा है और गरीबों के लिए उन्होंने सब दिन सहारा दिया है। इससे बहुतों को रोजगार मिला और अच्छा फायदा हुआ, 80% लगभग कामगारों को फायदा हुआ है। अभी बहुत जमीन और आसमान का अंतर है।
6: पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। हम जैसे युवा को बहुत सहायक साबित हो रही है और मैं चाहता हूं सरकार और भी बेनिफिट दे मुझे, और मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा सुविधा मिली है।
0: स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इस वर्ष यह अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा सफाई मित्र, सुरक्षा तथा सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कल पार्लियामेंट्री लीडरशिप इन क्लाइमेट एडेप्शन एंड रेजिलेंस विषय पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन को केवल पर्यावरण नीति का विषय नहीं बल्कि विकास, जन सुरक्षा और आजीविका की रक्षा का माध्यम मानना चाहिए। भारत ने क्लाइमेट जस्टिस को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन और जलवायु सहनशीलता के लिए घरेलू स्तर पर निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत के संकल्प से प्रेरित होकर रांची में फैटी लीवर मुक्त रांची अभियान की शुरुआत की गई है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने लोगों से खान पान और जीवन शैली को लेकर जागरूक रहने की अपील की है।
7: फैटी लीवर मुक्त रांची एक बड़ा अभियान डॉक्टर एस के सरीन के नेतृत्व में चलेगा। आज की जीवन शैली, अनियमित खान पान, डब्बा बंद खान पान, उसका परिणाम है कि लीवर आजकल फैटी होता है। ये एक बड़ा अभियान है और एक बस से लगभग 1,20,000 लोगों की एक साल में टेस्टिंग होगी। देश का ये पहला शहर होगा फैटी लीवर फ्री रांची। निश्चित रूप से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत की टी20 टीम में श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव हैं। 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत देश भर के लोगों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, कहा हर आशीर्वाद जनसेवा के उनके संकल्प को बनाता है दृढ़। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर दिया जा रहा जोर। राज्य के विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों, वर्कशॉप और विभिन्न प्रतिष्ठानों में धूमधाम से की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। दक्षिण अफ्रीका में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जलवायु अनुकूलन को विकास, जन सुरक्षा और आजीविका की रक्षा का बताया विषय। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची में आयोजित टी20 मैच में झारखंड के ईशान किशन और बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी खेल प्रेमियों को करेंगे रोमांचित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। तब हो जाती है जब हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास से निभाया जाए, न कि झूठ धोखा लालच बेईमानी से निभाते जाए, क्योंकि इसका परिणाम ही जिंदगी में जहर घोलने लगता है और जिंदगी को नरक कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े ही गंभीर भी बातें आ रही है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी हो जाए तो हमें बताइए कुछ कि क्या आप और आपके दोस्त जब मिलते हैं तो कुछ ताने उलाने का दौर चलता है या नहीं, और दोस्ती पर कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें ये

बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आपके हमसफर के आने के बाद आप वाकई दोस्तों से दूर हो गए, या ऐसा सिर्फ कहा जाता है। ये सारी बातें तो आप बताएंगे ही, साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, संगीत किसका है।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस गीत में था और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं रोज फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पढ़ने आता हूं और सोचता हूं कि आज यूनुस जी आएंगे, मगर अफसोस मैं निराश हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि आप सब लोग कार्यक्रम अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इंतजार बहुत लंबा हो गया है। भाई आपकी ये इंतजार जो है जल्द ही खत्म होगा ऐसे हमारा मानना है। हमारे साथी कह रहे हैं कि दोस्ती में आदमी बेतकल्लुफ रहता है, हर बंधन से मुक्त, जिसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब की दीवार नहीं होती, होता है तो बस आपसी प्यार और इतना सा लिहाज कि जब दोस्त ये दोस्त कभी रूठ ना जाए। पुरुष के मामले में यही दोस्त हम सफर की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये बहुत फोन करता है इसे और काम नहीं क्या, ये तुम्हारे ऑफिस में है क्या, वगैरह वगैरह। इतने पर भी अच्छे दोस्त बुरा नहीं मानते और दोस्ती बनी रहती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संसार के सफर पर मानव आने के बाद पहली बार परिवार से मिलता है, फिर सहपाठी, स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं अच्छे, हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, फिर अचानक जीवन में अजनबी के आने से उनके साथ फिर एक नया परिवार बना लेते हैं। परिवार और दोस्तों दोनों का साथ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों का साथ हमें कुछ पलों के लिए खिलखिलाने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है। परिवार दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर जिएं और खूबसूरत पल बिताएं, तनाव मुक्त रहें। हमारी कोर साथी कह रहे हैं कि आज की भारत यारी दोस्ती की ज्यादा बातें करती नजर आ रही है। कभी समुंदर तो कभी आसमान है दोस्ती, जैसे आजाद परिंदों की जान है दोस्ती। कभी मुसीबत में फंसे दोस्त को भी बचा लेती है दोस्ती, खुशियों का पिटारा है दोस्ती, प्यार भरे रिश्तों का नाम है दोस्ती। वहीं हमारे कोर साथी कह रहे हैं कि रिश्तों की दुनिया में दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी के खूबसूरत रंग है। यारों के साथ हंसी बेफिक्री होती है और प्यार के साथ दिल कुछ ज्यादा ही खामोश होकर धड़कने लगता है। दोस्त चाहे जितना छेड़ें, हम सफर आए तो दुनिया सिमट जाती है और कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान उस सिमटी दुनिया में फिर से हलचल मचा देती है। शायद जिंदगी भी इसी उलझन का नाम है, कभी यारी के नाम, कभी प्यार के नाम। तो बस इस बात पर एक गीत याद आ गया जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। ये बताइएगा कि ये गीत किसकी आवाज में है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे साथियों ने, और हमारे साथी बहुत सी बातें तो लिख रहे हैं। उदित जी, अनुराधा जी, हमारे एक और साथी ने ये जवाब दिया, हमारे साथी ने ये भी बताया कि अनु मलिक का संगीत इस फिल्म के गीत में

पूरी की दोस्ती अटूट, सुखर गानों की दोस्ती भी अटूट, सुख का हजारों लाखों से दोस्ती अटूट, सोचो अगर सुख दोस्ती नहीं करे तो क्या होगा। ये भी सोचने की बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि आते हैं अकेले, अकेले ही छोड़ जाते हैं संसार, बीच सफर में मिलता है परिवार और यार दोस्तों का प्यार, फिर बनते हैं किसी मन चाहे हम सफर के प्यार के शिकार, देखते रहते हैं रिश्तों के बदलते रंगों का आकार, उलझनों में ही चलती रहती है ये जिंदगी निराकार। क्या बात कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम हैं यारों के यार, करते हैं धर्म पत्नी से प्यार, शिकार करते हैं अनीति का, निज धर्म पर चलना सिखलाते अपने माता पिता के संस्कार, इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं लेकिन अपने अच्छे संस्कारों से बनाते हैं हम अपना अच्छा परिवार, हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ, तो यारो दोस्तों के लिए मेरे दोस्तों दीजिए उन्हें भाई जैसा प्यार। हाँ, प्यार से तौबा मत करना, प्यार बढ़ाता भाईचारा, लेकिन किसी ने सच कहा है प्यार दिलों का मेला है, ऐसा इन्होंने गीतों के साथ और आगे अपनी बात कही है। तो जब बात यारो दोस्तों के साथ प्यार पर आ गई है तो एक गीत आपको सुनवा ही देते हैं, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज तो आप पहचान ही लेंगे। हमें बताइए लिखा किसने है।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अजनबी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें आज बात हो रही है अकेलेपन की भी, साथ में यारे दोस्तों की भी और हम सफर की भी। हमारे साथी कहने की कल रात ही उन्होंने अपनी पत्नी को बताया अपने उन 3 दोस्तों के बारे में जो नॉन स्टॉप बातें किया करते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल के दिनों में ही सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हुए, परंतु हायर एजुकेशन कॉलेज के समय मुझे स्वयं मेहनत करके कमाना और पढ़ाई के खर्चे निकालना पड़ा और इस वजह से समय के अभाव के कारण दोस्तों से मिलना नहीं होता था। फिर मेडिकल प्रमोशन ऑफिसर जॉब लगा, फिर शादी की और बच्चों की जिम्मेदारी में व्यस्त रहा और अभी भी हूँ। हाँ, मेरे स्कूल के समय से आज तक और आगे भी मेरा सच्चा प्यारा दोस्त और साथी रहा है रेडियो और विविध भारती, विविध भारती परिवार और इन दिनों फेसबुक के विविध भारती के श्रोता साथी भी। हमारे एक और साथी ने भी कहा है कि उनके जो विविध भारती के जो श्रोता साथी हैं उनके दोस्त हैं और एक अलग तरह की दोस्ती पेज में हमें नजर भी आती है आप सभी के कमेंट्स के जरिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्ती फिल्म उनकी दोस्ती पर आधारित जो फिल्में हैं उनमें सबसे पसंदीदा फिल्म है। ऐसे बहुत से लोगों ने दोस्ती फिल्म को ही चुना। हमारे एक साथी दोस्ताना फिल्म का नाम भी लिखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि हम सीनियर लेडीज का एक ग्रुप है और हम रोज शाम को मिलते हैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए और बहुत सारे जो भी उत्सव त्योहार जो भी होते हैं वो सब हम आपस में मिलके मनाते हैं और कभी कभी नाश्ते वगैरह के लिए भी वो बाहर जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं। लेकिन कोविड आने के बाद से ये दौर थोड़ा खत्म हो गया उनका और वो उस वक्त को अब भी मिस करती हैं। हमारे और साथी हैं वो कह रहे कि दोस्ती पर आधारित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्ती उन्हें अच्छी लगी, खुदगर्ज याराना और दोस्ती का नाम भी हमारे एक साथी ने लिखा। वही हमारे एक साथी कह रहे कि व्हाट्सएप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक कॉलेज फ्रेंड का भी ग्रुप है, समय समय पर छोटी छोटी टूर्स भी हम करते रहते हैं, साथ में मिलते रहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिए जलते हैं तो अंधेरों में उजाला भर जाता है, मन में उम्मीद और जीवन में नई रोशनी आती। एक छोटा सा दीपक भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। एक साथी कह रही कि प्रेम ही ऐसी चीज है जो दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग थलग कर देता है। हम योजना तो बहुत बनाते हैं मगर अंत में वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। जन्म लेते ही हमें मिलता है प्यारा परिवार, फिर यार दोस्त, फिर एक प्यारा सा हमसफर। ये जीवन के क्रय हैं। एक दिन आपको समझ आ जाता है कि हम जो भी पात्र जी रहे हैं वो भी एक कहानी है और कहानी के लेखक है ईश्वर। तो इस जिंदगी में जो रिश्ता मिले उसका शुक्राना कीजिए और जो ना मिला उसके लिए उदास मत होइए। जो हो रहा है एक पटकथा का हिस्सा है और आप एक छोटे से रोल में हैं, तो बस उस रोल को निभाते रहिए और खुश रहिए। नमक हराम फिल्म का जो गीत हमने सुनाया दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बहुत से साथियों ने कहा कि उनकी लिस्ट में वो गीत शामिल था। और भी हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट के 90 नंबर का जो गीत था वो चल चुका है। एक और साथी कह रहे हैं कि प्यार यार और परिवार में छुपा है सारे संसार का सार। संबंधों की सामंजस्यता के अभाव में इंसान एकाकी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अभिरुचि के समानांतर भाव की तलाश में इंसान कभी यार कभी प्यार तो कभी परिवार में जीवन गुजार देता है। अंततो गत्वा उत्तरार्ध में परिवार से ही संपूर्ण संतुष्टि मिलती है, ये हमारे साथी का कहना है। और एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम से आज तक दोस्ती चल रही है, 60 साल से मोबाइल पर लगातार हम बातें कर रहे हैं। भाई इतना समय तो शायद मोबाइल को आए हुए भी नहीं हुआ, लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार है, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय संजोग और स्थल के बदलाव से नए दोस्त तो बनने स्वाभाविक हैं और उनमें से कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। पर मैं पुराने और संयोगों के कारण छूटे पुराने दोस्तों को भूला नहीं हूँ। कल की मन में और कभी कभी सपनों में भी याद आते हैं। कुछ इस दुनिया से चले गए पर मेरे सपनों में तो कभी कभी आते जाते रहते हैं। ये आपका लगाव ही है अपने दोस्तों के साथ, जो आपको वो नजर आते रहते हैं। और इस तरह की दोस्ती तो बिल्कुल बनी रहे तो अच्छा है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कुछ बात, लेकिन ये बात हम आपको बताएंगे एक गीत के बाद। तो ये गीत हमने चुना है एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम आपको हमें बताना है, और ये भी बताइएगा कि इस गीत को लिखा किसने।

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत। हमारे साथियों ने कुछ जवाब दिया हो तो हम तक पहुंचा नहीं अब तक। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल, कॉकटेल 2, इन फिल्मों में मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है और उनके जो गेट टुगेदर होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि 100 से 150 लोग मिलते हैं, 1978 का उनका बैच है और बड़ा ही आनंद उन्हें आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संसार में यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है, हर दुख सुख में वो बिना बुलाए हाजिर रहेगा, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि यारों के साथ दिमाग फ्रेश होता है और प्यार के साथ दिमाग का दही होता है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से मित्रता हो गई मेरी सबसे अच्छी मित्र से, बस कक्षा में आते ही हम दोनों तुरंत ही बातें करने लगी, यूं तो आगे पीछे की सीट थी फिर भी दिन भर बातें करती थी, अगली कक्षा में हम दोनों एक ही सीट पर बैठने लगे, फिर हम अलग हो गए क्योंकि हम नए घर में आ गए। तो अब भी आपकी उनसे बातें होती हैं या नहीं ये हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज भी एक कॉलेज मित्र के यहाँ हम चार मित्र जा रहे हैं, वो उद्योगपति है और विश्वकर्मा पूजा पर हमें आमंत्रित किया है, तो यारी दोस्ती का मूल्य उत्तरार्ध में ही महसूस होता है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं पशु पक्षी से करो, वो आपको दोगुना देंगे, यानी कि दोगुना प्रेम देंगे। हमारे एक और साथी कहने कि दोस्त कम बनाते हैं पर जिसे बना लेते हैं उसे कभी नहीं भूलते, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, बात सबसे करते हैं पर दोस्ती सबसे नहीं, पर जो दोस्त हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, इतने कि अभी जब हमारे घर का काम चल रहा था तो उन्होंने कई बार हमारे लिए खाना भी बनाया और साथ आकर भी खाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिसे परिवार के साथ इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं, और तो और स्कूल के भी कुछ दोस्त फिर से मिल गए हैं, पर हाँ बस दुख उस बात का है कि जिसका सबसे ज्यादा जरूरी वही साथ छोड़कर चले गए, ये तो खुद नहीं भगवान ने बुला लिया, शायद उन्हें कुछ अच्छे इंसानों की जरूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भाई अब जीवन की रीत है यही हम कह सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। वही हमारे साथी ने जो अपनी दोस्त से पहली पहली मुलाकात याद की उस पर एक गीत आपको सुनवाते हैं, आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसका, फिल्म का नाम भी।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं, मैं कभी अकेली नहीं रह पाई, पैदा होने के बाद हमेशा बहुत बड़े परिवार में रही, माता पिता दोनों का परिवार बड़ा और संयुक्त था, शादी भी बड़े घर में हुई, 3 बच्चे उनके शादी के बाद परिवार, अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी तौबा तुम्हारे ये इशारे, इस गीत में से कौन सा शब्द इबारत में है कृपया बताएं। तो हम आपको बता दें कि तौबा शब्द ही हमने इबारत में शामिल किया हुआ है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, ये गीत उन्होंने बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे तय है, मगर मोबाइल ने तो हमें अभी से अकेला कर दिया। वही हमने एक साथी को कहा था, जो वो कह रहे थे कि 60 साल से वो बातें कर रही हैं फोन पर, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल पर बातें होती है, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल नहीं आया था, और उन्होंने कहा कि वे लैंडलाइन तो आ गया था। तो बिल्कुल सही बात, हम अपनी बात लेते हैं वापस, और अच्छा है आप अपने दोस्तों से इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए दोस्तों का जीवन में आना एक नई ताजगी और नए दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो दिल का जुड़ाव होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए रिश्ते जहां जिंदगी को नया रंग देते हैं, पुराने रिश्ते हमारी जड़ों और पहचान को संभाले रखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि अगर सच्ची भावना तो कभी भी दोस्ती टूटती नहीं है न रिश्ते, तो इसलिए मन में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सारे दोस्त स्कूल कॉलेज के मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज वो दोस्त गुम हैं। हजारों बार फोन फेसबुक पर तलाश करते पर निराशा हाथ लगती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बिछड़े हुए दोस्त से मिलना यादगार होता है, ऐसा इनके साथ हुआ। 8वीं में सांची में थे, पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया, लेकिन 2025 में जब सांची गए तो कई दोस्तों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें से एक मिला और पुरानी बातें हुई, बड़ा आनंद आया। और अब आपको आनंद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

0: Pakistan-based sanctuaries and the Al-Qaeda leadership responsible for the September 11 terror attacks in the United States. Speaking at a United Nations Security Council meeting on the situation in Afghanistan, India's permanent representative P. Harish recalled the Council's recent visit to the 9/11 memorial in New York. Mr. Harish called on the international community to remember the victims of the September 11 attacks and act against not only terrorists, but also those who aid, finance, support or shelter them.
1: Draining this swamp that provided an enabling environment for such monsters of humankind to prosper is very important. The same permissive environment that sheltered the architects of 9/11 has in the years since continued to provide space, support and impunity. The international community must join hands to address the continuity of such sanctuary in order to ensure that more such individuals are not thrust upon any country or its citizens and no one loses family and loved ones.
0: The government has refuted a video circulating online with the claim that an IAF MiG-29 fighter jet crashed during landing due to pilot error. The fact-check unit of Press Information Bureau, PIB, said the video is fake and being circulated by the Pakistani propaganda accounts. It said the footage in the claim is from a video game. The fact-check unit has urged people to report any suspicious content related to the central government at factcheck@pib.gov.in. Director General of News Services Division, Akashwani, Rajiv Kumar Jain, administered the Swachhata Pledge to officers and staff at the premises of Akashwani in New Delhi today. Additional Director General News, S. Subramanian, was also present on the occasion. The pledge was administered as part of the ongoing Swachhata Hi Seva 2026 campaign, being observed across the country from today till the 2nd of next month. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. At the stock markets, the Sensex was trading nearly flat while the Nifty was trading moderately higher during the afternoon session today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SemiCon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
3: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
3: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
4: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: 2 PM समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
3: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
7: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खाब वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
6: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
8: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
9: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
10: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
4: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाहगाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाए और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती का। एक देशभक्ति गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक संदेश के बाद।
12: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में मुकेश की हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।

0: मेरी बात कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर,
2: मेरे पास लक्ष्मी से कुछ बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी कलम से निकले गीत आप

हसरत जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म के गीत में ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, जो गया आसमान फिल्म के गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है। इस अवसर पर कोडरमा में भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां 11 कलाकारों ने 48 घंटे में 1,40,000 दीयों से पीएम मोदी का भव्य मोजेक आर्ट बनाया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में शाम को ड्रोन के जरिए इस कलाकृति का एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ध्वजाधारी आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाकर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की।
1: पहली बार इस तरह एक मोजेक आर्ट के माध्यम से लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा दिए का उसमें एक चित्र बनाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उस चित्र के माध्यम से हम सब लोग उनके जन्मदिन की शुभकामना भी देते हैं। और उसमें हमारे जो भी या तो लाभार्थी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, हर कोई आएंगे, शुभकामना संदेश के साथ साथ एक दीपक भी जलाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया है। इस उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालयों में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। श्री साहू ने पीएम मोदी के 25 वर्षों के जन सेवा काल की सराहना की।
2: देश से एक घर में दरवाजे का आदमी प्रधानमंत्री है, लोगों को सेवा करने का काम किया है, और देशवासी भी आज एक अपने घर के दरवाजे पर दिया जलाकर आशीर्वाद देने का काम करने वाले हैं। और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश की ओर से आज प्रदेश कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है।
0: राज्य के दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे हैं। आज दिवंगत मंत्री का 12वां है। उत्सव उपवन में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, हफीजुल हसन, दीपक बिरवा, दीपिका पांडे सिंह, नेहा तिर्की और इरफान अंसारी समेत कई वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। असीम मंडल पर झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा कुल 2,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह असीम के पश्चिम बंगाल में सरेंडर करने की उन्होंने पुष्टि की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विवेकानंद विद्या मंदिर में संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सेवा सप्ताह के तहत विकसित भारत @2047 विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई थी। क्षेत्रीय निदेशक डॉ. कुमार संजय झा और प्रधानाचार्य अमिताभ लाहन ने बताया कि इसमें 12 स्कूलों और 4 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया।
3: हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपनी भावनाओं को किस तरह प्रदर्शित करती हैं, देश का जो 2047 का जो हमारा एक ब्लूप्रिंट है, एक लक्ष्य है विकसित भारत का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रभावी संदेश है कि पूरे देश को किस तरह हम इसको विकसित भारत के रूप में अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़े।
0: जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित केरला पब्लिक स्कूल में आज डाक विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्कूल के 104 शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। डाक विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों को बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा और कम प्रीमियम पर मिलने वाले फायदों की जानकारी दी और इसे बच्चों के परिवारों तक पहुंचाने की अपील की।

0: हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं।
1: डाक विभाग धीरे धीरे लोगों के जहन से उतरता जा रहा है, जिसको बचाने के लिए सिंहभूम डिवीजन द्वारा एक अवेयरनेस सेशन किया गया, जिसमें सबसे पहले हम लोग विद्यालय में आए हैं, क्योंकि अगर शिक्षकों को शिक्षित किया जाए डाक विभाग के बारे में तो ऑटोमेटिक वो बच्चों में चला जाए। तो ये सेशन मूलतः जो हमारा सीनियर स्कीम चलता है और हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो हम लोग करते हैं उसके बारे में मेन फोकस था। और भी डाक विभाग बहुत सारा चीज कर रहा है, इससे आप हर घर डाक घर के तहत हम लोगों से जुड़े और डाक विभाग को फिर से उस गति में लेके चले।
2: रेलवे बोर्ड ने चोपन और मधुपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रेन के परिचालन से चोपन, पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र के यात्रियों को मधुपुर आने जाने में सुविधा होगी। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने सृजन के प्रति सम्मान का संकल्प लेने का भी आह्वान किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

सुनते हैं उसी खूबसूरत से गीत को, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। और मुझे उम्मीद है कि इस खूबसूरत से नगमे को सुनकर आपके दिल में वो पुरानी यादें फिर से जाग उठेंगी।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अजीब दास्तान है ना ये, कि एक वक्त था वो गोल्डन इरा, जिसकी जो प्यार मोहब्बत की जो बातें होती थी वो उस वक्त कुछ अलग ही होती थी। मतलब अगर हम गोल्डन इरा की बात करें और प्यार मोहब्बत की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना दोस्तों। ये वो वक्त 50 से 60 का दशक, या कहें कि 60 से 70 का दशक आते आते तो वो चीज़ें और भी रोमानी होती चली गई। और ऐसे में अगर हम जिक्र कर रहे हैं खूबसूरत गीतों का, और जिक्र ना हो 1961 में आई फिल्म जंगली का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर उस फिल्म की हम बात करें तो उस फिल्म में जो शम्मी कपूर साहब है ना, उनका वो याहू अवतार, उनका एनर्जेटिक और अनोखा जो उनका डांसिंग स्टाइल था ना, वो एकदम ही गजब था। और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, सुंदर खूबसूरत वो एहसास, और उस वक्त में उनके साथ वो खूबसूरत सी हीरोइन सायरा बानो है ना। वाकई में पूरी फिल्म में 4 चांद लग गए इन सभी खूबसूरत चीजों ने मिलकर। और अगर हम बात करें उस फिल्म के खूबसूरत

0: खूबसूरत गीतों की। तो ये जो खूबसूरत सा गीत अभी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनवाने वाले हैं, जिसके संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र रहे, और ये वो गीत जिसमें शंकर जयकिशन साहब ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई म्यूजिक शैली को एक साथ मिला करके ये खूबसूरत सा गीत तैयार किया, जो कि एकदम नया था हिंदी सिनेमा के लिए। और ये नयापन ऐसा था कि जब ये स्क्रीन पर आया और उसमें शम्मी कपूर साहब की मस्ती और एनर्जी मिली, तो भाई वाह, क्या ही कमाल किया इस गीत ने। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, और मुझे उम्मीद है कि इस गीत को सुनकर आप लोग भी झूम उठेंगे।
1: अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: को मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करो।

0: सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए।
1: दोस्तों बिल्कुल सुकू सुकू। अगर हम बात करें शमी कपूर साहब की उस एनर्जी की, उनके उस मस्ती भरे अंदाज की, और बात ना करें हम उस फिल्म की जिस फिल्म से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिली वो खूबसूरत हीरोइन शर्मिला टैगोर। जी हाँ बिल्कुल समझे आप सही, फिल्म है कश्मीर की गली। कश्मीर की गली वो खूबसूरत सी फिल्म जहाँ कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ और शिकारे में बैठे हुए शम्मी कपूर साहब चुलबुले अंदाज में और उनके साथ शर्माती हुई प्यारी सी शर्मिला जी। हाय चार चांद लगा दिए उन लोगों ने इस फिल्म में। और इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत जो हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं उसने तो और भी खूबसूरत अंदाज में लोगों के दिल पर डेरा डाला। जी हाँ दोस्तों ओपी नैयर साहब का संगीत एकदम वही ट्रेडमार्क रिदम फास्ट पैट संगीत और इस गीत की जान थी इसमें जो पंजाबी फोक का तड़का लगा था और उसके साथ में वेस्टर्न जो बीट्स हैं वो भी उसमें थोड़ी डाली गई। वाकई में एकदम कमाल का फ्यूजन कमाल का मिक्सचर इस गीत में को देखने के लिए मिला और साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और उनका साथ देती हुई खूबसूरत आवाज़ की मलिका आशा जी है ना। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत और जो आपका डांस करना अभी शुरू है ना उसको कंटिन्यू कीजिए।

तो आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैथिली मेलेडी में और आपके साथ हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता और उनमें से अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं बीरगांव गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ। और वो लिखते हैं मैटिनी मेलेडी में बहुत ही खूबसूरत सुंदर गोल्डन एरा की सॉन्ग सुनवा रहे हैं और उसको सुनकर हम उस दौर में चले जाते हैं। लिखते हैं 12 साल की उम्र से फिल्म देखनी शुरू की और आज तक देख रहे हैं। उनके पिताजी टॉकीज में मुनीम रहे और चाचा प्रोजेक्टर ऑपरेटर, तो वो उनके केबिन में बहुत सारी फिल्में देखा करते थे। और लिखते हैं कि आज बचपन याद आ गया गाने सुनकर। बहुत खूब, आप इसी तरह अपने जो बचपन के दिन हैं उनको यूं ही ताज़ा करते रहिए और ज़्यादा अगर ताज़ा हो रही है ना तो साथ साथ थोड़ा डांस भी कर लीजिए अजीत जी, मज़ा आ जाएगा। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से। इनके साथ हैं अनिता मुखी, सिमरन मुखी। और अजीत जी का एक और संदेश आया और लिखते हैं जंगली के गीत क्या करूं मैं सुकू सुकू। लिखते हैं किसी अंग्रेजी फिल्म से रफी साहब ने शम्मी कपूर को एक अलग पहचान दी। बहुत खूबसूरत आपने जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। और दोस्तों इसी तरह हमारे पास संदेश भेजते रहिए और अपने जो इन गीतों के साथ में जुड़ाव है वो हमें बताते रहिए, हम उन संदेशों को अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और अब हम चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। ये वो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर हम इस गीत की बात करें तो ये गीत राज कपूर साहब की रोमांटिक फिल्मों की अगर बात होती है तो ये फिल्म टॉप पर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म का ये वाला जो गीत मैं आपको आज सुनवाने जा रही हूँ, जहाँ राज कपूर साहब पेड़ की डाल पर बैठ कर एकॉर्डियन बजाते हैं और वैजयंती माला पानी में तैरते हुए एक दूसरे के साथ वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। और इस गीत की, इन गीतों की अगर हम बात करें ना, ये गीत वाकई में लाजवाब है। अगर आप इनके शब्दों को देखें, जो बोल लिखे गए हैं उसमें किस तरह से नायक नायिका अपने अपने बारे में बातें करते हैं। और खास बात ये रही कि इस गीत में मुकेश साहब के साथ बीच बीच में जो डायलॉग बोले गए हैं, बीच बीच में जो थोड़ा बातें की गई हैं, वो वैजयंती माला ने खुद अपनी आवाज़ में की। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हम आपको कौन सा गीत सुनवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, संगम फिल्म से मुकेश जी की आवाज़ में ये

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज में, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति। और जो अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसा गीत है जो कि सन 1965 की आई एक ऐसी सुपरहिट फिल्म है जिसने बहुत से रिकॉर्ड्स भी तोड़े, बहुत से जो नियम हैं वो भी तोड़े। जी हाँ दोस्तों, अब हम रोमांटिक फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त के जो रोमांस के सुपरस्टार हैं अगर उनके बारे में बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। और वो कौन है? वो है हमारे देवानंद साहब। भाई देवानंद साहब के बिना रोमांस की बातें हो जाए इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और उसमें अगर हम उनकी फिल्म गाइड का जिक्र ना करें तो बातें करना ही बेकार है ना। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं गाइड फिल्म से एक ऐसा खूबसूरत सा गीत। पहले हम बता दें भैया आपको कि जो गाइड फिल्म है उसमें देवानंद जी के साथ में है खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान भी। और ये जो फिल्म है ये आर के नारायण के फेमस उपन्यास पर बनी है। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में वहीदा रहमान का जो आइकॉनिक डांस है वो काबिले तारीफ है। और मतलब अगर हम देखें तो उस वक्त के हिसाब से तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ये एक एडवांस सॉन्ग कह सकते हो, एडवांस डांस कह सकते हो, क्योंकि उस वक्त में पहाड़ों के बीच खुलकर नाचना सबके सामने एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्रांतिकारी चीज़ थी। ये सभी परंपराओं को, सब बंधनों को तोड़कर खुशी से जश्न मनाती वहीदा जी। और अगर इस खूबसूरत से गीत की, खूबसूरत सी आवाज़ की बात करें तो इस गीत को सुरीली आवाज़ में सजाया है स्वर कोकिला लता जी ने। जी हाँ दोस्तों।

तो लता जी ने इस गाने में जिस तरह की उमंग, जो मस्ती उन्होंने भरी है ना, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इस गीत में उतारा है। तो लीजिए सुनते हैं एस डी बर्मन साहब के संगीत से सजा ये खूबसूरत सा गीत, जिसमें फिर से एक बार गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने।

खूबसूरत और इतनी हिट फिल्मों के बाद में हम राजेश खन्ना जी के उस गोल्डन पीरियड को याद ना करें हो ही नहीं सकता। और उनकी फिल्म आराधना जो कि 1969 में आई थी, क्या ही खूब फिल्म। और जिस गीत को अब हम आपको सुनवाने वाले हैं, जहाँ हीरो यानी कि राजेश खन्ना साहब मौसम और कुदरत की दुहाई दे करके अपनी नायिका यानी कि फरीदा जलाल को उनके दिल का हाल उगलवाना चाहते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे भाई इस फिल्म में तो शर्मिला टैगोर उनके साथ में है, लेकिन जी हाँ शर्मिला टैगोर भी हैं, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब का डबल रोल है और जो उनका दूसरा किरदार है उनके साथ है फरीदा जलाल। और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक छेड़छाड़ से भरा हुआ चुलबुला सा ये गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत जिसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। लीजिए सुनते हैं एसडी बर्मन साहब के संगीत से सदा सजा हुआ ये हल्का फुल्का ताजगी से भरा गीत, जो कि आज मुझे लगता है आप सबको गुनगुनाने पर एकदम मजबूर कर देगा।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, नाजियन इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगले संदेश के जरिए जुड़े हैं। भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन के साथ अजित भावसर जी एक बार फिर से जुड़े हमारे साथ। लिखते हैं कि गाइड फिल्म के लिए जानकारी, इस फिल्म की शूटिंग जो है गुजरात लिमडी गांव में हुई थी, वहां वो स्वामी बनकर मंदिर में रहते हैं और अंग्रेजी गाइड में विलेन के एन सिंह की रेलवे ट्रैक पर फिल्माया गया सीन भी वहीं का है जी। और लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्जन जो है इस फिल्म का नहीं बन पाया और बहुत खूबसूरत जानकारी अजीत जी आपने, आप हमेशा बहुत अच्छी जानकारियां जो हम तक देते हैं। तो आप दोस्तों इसी गीत के साथ मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम समाप्ति की। फिर से आऊंगी, फिर से हाजिर होंगी लेकर एक बार फिर से बहुत से गीतों को। तो तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस, जिसमें आज आप सुनेंगे ये वार्ता और इसका टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी और उनका यूनानी इलाज। जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर आयशा परवीन, HOD यूनानी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, और इंटरव्यू ले रहे हैं मंसूरुद्दीन फरीदी।

0: तकरीबन 40 साल पूरे कर चुकी है, और उन्होंने ख़ास तौर से मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया है यूनानी मेडिसिन में। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम में डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा का खैर मकदम
1: शुक्रिया,
0: है
1: शुक्रिया बहुत
0: जी।
1: बहुत। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लिया है, जो आजकल नीड है, जो जरूरत है इस चीज की।
0: डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा, डिप्रेशन और एनजाइटी ये दो नफसियाती मर्ज हैं, और आपको मालूम है आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो दोनों की क्या अलामत हैं जो हम सबसे पहले जज कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन के शिकार हैं या ये एनजाइटी के शिकार हैं?
1: इन दोनों को डिफाइन करना, अगर मैं यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डिप्रेशन जो है मालन हो लिया, उसे हम डिप्रेशन कहेंगे, और ये नफसियाते इस्तराबी, मतलब जो आपको एंजाइटी जो पैदा करेगी, अगर इसका कोई कॉज मालूम करा जाए तो इसकी एक वजह नहीं हो सकती, इसकी बहुत सारी वजह हैं, और उन वजहों को देखना हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, डिप्रेशन हो रहा है कि आप जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है वो या तो ज्यादा खा रहे हैं, या आपने किसी से बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद कर रखी है, या आप या तो भूखे रह रहे हैं, या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या आपने स्मोकिंग शुरू कर दी है, या आप घंटों टीवी के सामने जो है वो बैठे रहते हैं, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं। या आप किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और एंजाइटी हो रही है, या आप बहुत जल्दी जा रहे हैं वॉशरूम में, तो फिर इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक एंजाइटी को शो करता है। लेकिन अब हमें देखना है कि इसकी वजह क्या है, और उसकी जैसे एक वजह नहीं हो सकती। अगर मैं यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो हमारे यहाँ खिल्त होती है खून, बलगम, सौदा,
0: जी
1: सफरा। हमारे जो अतिब्बा इकराम है उनका कहना ये होता है कि सौदा की खिल्त, उसका गलबा अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उससे जो है वो डिप्रेशन पैदा होता है, और उससे ही जो है एंजाइटी जो है वो पैदा होती है। अब हमारा काम यह है कि उस सौदा को, उस गलबे को हमें किस तरह से उसको हटाना है, किस तरह से उसको ओवरलुक करना है, ये हमारा काम है। अब उसकी वजूहात क्या है? हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर हो जिसकी वजह से ये हो रहा हो सकता है आपके कुछ प्रोक्रास्टिनेटिंग, ऐसा है नहीं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं,
0: जी
1: आपकी नेचर में ये शामिल है कि ये है। तो देखिए, अगर ये कहूँ कि अलग अलग आदमियों के अलग अलग परसेप्शन होते हैं एंग्जाइटी को खास तौर से जज करने के लिए, कि किस तरह से वो एंग्जाइटी हो रहा है। अब किसी ने, मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोल दिया, और मैं कंटिन्यूअसली उस बारे में सोच रहा हूँ क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। एक दूसरा शख्स है जिसने बोल दिया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो ये अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग लोगों के परसेप्शन है, वो किस तरह से उसको रिसीव कर रहा है, ये जो है वो देखा जाएगा कि क्या है।
0: जो लोग डिप्रेशन और एनजाइटी के शिकार होते हैं उनके लिए यूनानी मेडिसिन इसमें क्या गाइड करता है?
1: देखिए, सबसे पहले मेडिसिन तो मैं नहीं कहूंगी, सबसे पहले तो हमें जो है लाइफस्टाइल पे ही ध्यान देना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे आपने देखा कि उनका घर का माहौल ऐसा है, कभी कभी देखा उनके ऊपर पाबंदियां बहुत हैं, और वो जो है वो उस चीज से उनका डर, खौफ, ये सब उनके अंदर पैदा हो गया है। तो हमें देखना है, क्योंकि मैं हमदर्द में जो हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो है मैं उपड़ी करती हूँ, तो मैंने जो देखा है, अगर मैं लोगों से पूछूं क्या क्या आ रहा है, हाइपरटेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, क्या आ रहा है, ओबिसिटी आ रही है, पूछू आप डिनर कब करते हो, मेरे दो तीन क्वेश्चन पैट होते हैं उनसे कि आप डिनर कब करते हो, मैडम रात के 11 बजे करते हैं या 11:30 बजे करते हैं, ठीक है, उनका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे, आप उठते कब हो, मैम 10 या 11 बजे उठते हैं। पानी कितना पीते हो, पानी आप जो है वो कम पीते हो। एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज जो है वो 90% लोग जो है वो नहीं बताएंगे कोई एक्सरसाइज जो करते हैं। आप देखिएगा, सबका ताल्लुक इस चीज से है। हमारे यहाँ आता है असबाबी सित्ता जरूरिया, मतलब 6 एसेंशियल फैक्टर ऑफ द लाइफ। उसके अंदर सबसे पहले हवा है, उसके बाद माकूल मशरूब मतलब खाना पीना, उसके बाद जो है हरकत सुकून नफसानी, साइकोलॉजिकली भी आपको जो है हरकत जितनी देनी है उतनी देनी है, हरकत सुकून बदनी, आपको जिस्म को कभी रेस्ट देना है और कितना रेस्ट देना है, उसके बाद कितना काम करना है। उसके बाद आता है नौम और यगजा मतलब सोना और जागना, ठीक है, और उसके बाद आता है एहतबाज और इस्तफरा के रिटेंशन और कितना एलिमिनेट हम करेंगे। तो ये जो हिफ्जाने सेहत में बात करती हूँ, या प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की बात करती हूँ, या मैं कम्युनिटी मेडिसिन की बात करती हूँ, तो हमारा पूरा जो है वो इस चीज के ऊपर बेस होके रहा है। आज एक 11 साल के बच्चे भी आते हैं, वो कहते हैं उनको एसिडिटी हो रही है। एक बच्चा मेरे पास रिसेंटली आया, मुझे बहुत अफसोस भी है कि उसका फादर बाहर गल्फ में काम करता था, और उसने कहा कि इसको मेंटल डिसऑर्डर कुछ हो रहा है, ये हंसता रहता है, बोलता रहता है। मैंने कहा ये शुरुआत कैसी हुई, तो उसने कहा ये मैं तो बाहर था, ये मोबाइल बराबर चलाता था, रात भर जो है गेम्स खेलता था, ब्लैंकेट ओढ़ के गेम्स खेलता था, और उसके बाद ये कुछ कुछ बोलने लगा, करने लगा, उसके बाद ये हालत होगी, तो मैं जॉब छोड़ के इसके पास आया हूँ। तो आप देखिए कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड

0: इसने हमें बहुत सारी जो है वो खूबियां भी दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी खराबियां भी आई हैं। वही है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज की ज्यादती अगर हम करेंगे तो वो खराब होगी, लेकिन हमें इसका कितना इस्तेमाल करना है, इसमें कितनी रेडिएशन है, कब तक इस्तेमाल करना है, इसका किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, ये हमें खुद अपने आप जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अपनी सेहत अगर जब तक ये नहीं सोचे कि हमारी सेहत हमारे हाथ में होती है, उनको दो तीन टिप्स देती हूँ कि आपको रात का खाना एक तो जल्दी खाना चाहिए, रात के खाने में और सोने में कम से कम 4 घंटे का फर्क होना चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, और सर्दियां हैं तो 2 से 3 लीटर पानी आपको जो है जरूर करना है, और आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है, और फिजिकल एक्सरसाइज। मैं नहीं कहती कि आप 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करें, मैं कहती हूँ आप सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करें, सिर्फ 10 मिनट अपने दें, उसके बाद वो इसी को 2-3 दिन बाद 15 मिनट कर दें, उसी के बाद वो 20 मिनट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा जाए। अच्छा, आजकल जो है वो ये जैसे मैंने डिजिटल वर्ल्ड की बात करी तो देखा कुछ नहीं हुआ, खाने का दिल चाहे स्विगी से कर दिया, से आपने कर दिया, आप किस टाइम खा रहे हो, कितना जंक खा रहे हो, कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल करो, सारी की सारी कहीं से कहीं ये को रिलेटेड है इस एंग्जाइटी से, इस डिप्रेशन से। अब क्या होगा, आपको ओबिसिटी भी हो रही है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो रही है, आपको एंग्जाइटी भी जो हो रही है, आपको पेप्टिक अल्सर भी हो रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो रहा है। कहाँ है ये सारा सारा कुछ आज जो दुनिया में है, ये सारा लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं होगा, बहुत सारी चीजों पर हम उबूर नहीं हासिल कर सकते।
1: एक चीज़ और है, जैसे लाइफस्टाइल की जैसे बात कर रहे हैं, इस पे हम रहते हैं, तो बड़े शहरों में घर छोटे हैं, जहाँ संभाल लीजिए घर के करीब के पार्क नहीं है, आदमी जॉगिंग नहीं कर सकता है, रात में खाने के बाद वॉक नहीं कर सकता है, वो परेशान रहता है। इस सूरत हाल में वो आदमी खुद को किस तरह बिजी कर सकता है या इन सब बुराइयों से दूर रह सकता है, ये जो मसाइल हैं नफ्सियाती।
0: देखिए, खाना आपके हाथ में है, आप जल्दी खा सकते हो। हाँ, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग 10-10, 11 बजे ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद बनाते हैं खाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आपके हाथ में है। आप हैवी खाना ना खाएं, ये आपके हाथ में, सुबह उठना आपके हाथ में, ज़्यादा पानी पीना आपके हाथ में। रही आपकी एक्सरसाइज की बात, ये किस तरह की, कोई जरूरत नहीं है, आप इस घर के छोटे कमरे में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप खड़े खड़े जॉगिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वही काफ़ी है आपके लिए। आपको पता है कि मैं 18-19 साल से बराबर योगा कर रही हूँ, और पहले मैं फिजिकल जाती थी योगा करने के लिए, उसके बाद लेकिन अब जब से कोविड हुआ उसके बाद मैं लाइव क्लासेस अपने घर के कमरे में ही करती हूँ। मैंने 60 क्रॉस कर लिया है, लेकिन आई एम फिट एंड फाइन, मुझे अलहमदुल्ला कोई शुगर नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने लाइफस्टाइल को अपने हाथ में रखा है। मेरा अर्ली डिनर होता है, बस हल्का डिनर होता है, एक्सरसाइज मेरी होती है, पानी मैं उसी हिसाब से पीती हूँ, रात में मैं बहुत जल्दी सोती हूँ, इस फोन को मैं काफी दूर रख देती हूँ अपने से, और रात को मैं है कि 9 बजे मैं सो जाती हूँ, 9-9:15, और ऑटोमेटिकली आप यकीन मानिएगा कि मैंने कभी कोई अलार्म नहीं लगाया। मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक है जो मुझे 4:45 बजे 4:30 बजे मुझे उठा देता है, मुझे पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। तो ये किसने किया, ये खुद मैंने अपने ऊपर वर्क किया। जब तक लोगों को ये नहीं मालूम होगा अपनी सेहत हमारे हाथ में है, जब तक जो हम इन चीजों पर जो है वो नहीं हासिल कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की योगा की
0: जी,
1: अभी इस वक्त योगा की बात निकली है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि एंजाइटी और डिप्रेशन में वो कौन से आसन हैं जिनको करने से इस मर्ज पर काबू पा सकता है आदमी, या कम से कम मदद मिल सकती है बाहर आने में से।
0: बिल्कुल, ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज माइंडफुल। मैं तो कहती हूँ अगर आपके घुटने भी दर्द हो रहा है आप ब्रीदिंग करिए, लेकिन आपको वो घुटना सोचना है अपना कि मेरे घुटने में पेन हो रहा है, और ये नहीं कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं और आपका दिमाग उधर जा रहा है उधर जा रहा है, नहीं, आपको 100% उसमें देना होगा। लोम विलोम करते हैं कि हम एक नाक से जो है वो सांस लेते हैं और दूसरी से कर देते हैं, तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कुछ नहीं, घर बैठ ऐसे हम खाली जो है वह एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक मेंटल के लिए जो है वो हीमिंग साउंड जो है हमें निकालनी पड़ती है कि हमें जो है वो ये टंग जो है अपर पैलेट से लगाने के बाद, और हमें एक मुंह से हीमिंग साउंड निकालनी पड़ती है, मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर हम 10 बार करते हैं तो इसका सीधा असर जो है हमारे मेंटल उसके ऊपर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स करता है। अच्छा, पानी आप देखिएगा, कभी भी गुस्सा आता है या हमें स्राविक फिर हम क्या कहते हैं उसको, पानी का ग्लास देते हैं, पानी ज्यादा पीना जो है वो वही इस चीज को एंग्जाइटी को इसको कहीं ना कहीं जो है वो कम करता है। तो तो ये है ना, आपकी सेहत जो है आपके हाथ, आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा अपने लिए। लोगों को आंख जब खुलती है जब पानी सर से ऊपर गुजर गया होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बात तो ये हुई कि एनजाइटी और डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं उनके मसले आपने जैसे बताए, एक ये है कि जिस फैमिली में कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है उसके साथ रहने वाले उसके साथ कैसा रवैया रखें, कैसा उनका बर्ताव रहे, या उसको एक चीज ये होती है कोई नफ्सियाती मरीज होता है तो लोग उसको पागल कहने लगते हैं, तो ये चीज घर वालों के लिए या दोस्तों के लिए अहबाब के लिए, कोई अगर डिप्रेशन का शिकार है तो उससे किस तरह ट्रीट किया जाए?
0: देखिए, बहुत अफसोस के साथ मैं एक बात कह रही हूँ, इस बात कि हम लोग, मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी इस मेंटल प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। आज अगर WHO की बात करते हैं तो 300 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो मेंटल हेल्थ के शिकार हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं कि ये डिप्रेशन है। वो कहते हैं ये बदतमीज़ है, ये सुनता नहीं है, इसको सब चीज़ें आराम से मिल रही हैं तो इसलिए इसको वैल्यू नहीं है सब चीज़ों की। क्या है? नहीं, हमें अपना रवैया ज़रूर चेंज करना चाहिए। मैंने देखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उससे और ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं और क्या करते हैं, एक आध थप्पड़ भी इसको जड़ देते हैं। नहीं, आप देखिए वो कितनी दिन तक बदतमीजी से बात करेगा। हाँ, आप समझदार हैं ना, उसको है मेंटल प्रॉब्लम, पहले तो यह बात ध्यान रखिए। और आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपना माइंड चेंज करना है कि नहीं, ये सही नहीं है, इसका कॉज जानना है क्या है और हम इसको किस तरह ठीक करते हैं। देखिए, अच्छे रवैये से ठीक करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। मैं तो उन लोगों को कहूंगी, मैं उन माँ बाप को ये सलाह देना चाहूंगी, प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिए। अगर उसको थेरेपी की जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप उसको रेगुलर थेरेपी दीजिए, और ये नहीं कि एक थेरेपी दे दी, दो थेरेपी नहीं, जितना काउंसलर बताता है उतनी थेरेपी की जरूरत है तो उतनी थेरेपी दीजिए। आप देखिएगा, अगर यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, वहां कुछ नहीं है, सब बिल्कुल रेगुलर फैमिली है, सब अच्छी खासी, लेकिन वहां जो है लोग रेगुलर थेरेपी ले रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको काउंसलर की जरूरत है, आप चीज नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल ले जाइए, उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाइए, आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास, उसको वो कंडीशन ना होने दीजिए, उसकी लास्ट जो कंडीशन है सिज़ोफ्रेनिया वगैरह से, उससे आप बचा सकते हैं उसको। अगर आपने सही टाइम पे इंटरवीन कर दिया, सही टाइम पे मदाखलत कर दी, तो आप उसको बचा सकते हैं।
1: एक चीज बहुत आम देखी गई है, एक कुछ लोगों को हाथ धोने की बीमारी होती है, जैसे हर बात बात में थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धो लिए, पैर धो लिए,
0: ऑब्सेस्ड होते हैं।
1: जी, इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, और अगर कोई पेशेंट इस टाइप का कोई घर में है जो इसका मर्ज का शिकार है, तो उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं या उससे बाहर ला सकते हैं?
0: देखिए, ये भी एक एंग्जायटी की निशानी है, ये सारा करना ना, ये भी कि बार बार जा रहे हैं।

0: इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, और अगर कोई पेशेंट इस टाइप का कोई घर में है जो इसका मर्ज का शिकार है, तो उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं या उससे बाहर ला सकते
1: देखिए, ये
0: हैं?
1: भी एक एंग्जायटी की निशानी है ये सारा करना ना, ये भी कि बार बार जा रहे हैं वो, बार बार हाथ धो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो देखिए, जहां तक मुझे लगता है, एक अच्छी काउंसलिंग बहुत सारी चीजों

0: मेडिसिन की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। तो हमारे यहाँ चार तरह से जो है तरीके बताए गए हैं अतिबा ने। सबसे पहला उसके अंदर जो आता है वो डाइटोथेरेपी आता है। सबसे पहला जो आता है वो डाइट आता है, दूसरा जो होता है दवा के साथ हो जाता है, तीसरा जो आता है इलाज भी तदबीर के साथ होता है, और चौथा जो आ जाता है इलाज भी या मतलब सर्जरी के साथ जो हम करते हैं। तो डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन के अंदर या एंग्जाइटी के अंदर। डाइट का तो अतिबा ने पूरा जिक्र किया, इसी से जो निकल गया जिसे हम डाइटोथेरेपी कहते हैं या इलाज गिजा जिसे हम कहते हैं वो है। पहले तो आप उसकी हैबिट देखिए कि वो डिप्रेशन की वजह से एंग्जाइटी की वजह से उसका रगबा किस चीज़ की तरफ है, वो क्या चीज़ सबसे ज्यादा जो है वो खा रहा है। तो आपको देखना है हमारे यहाँ डाइट का जो दिया है वो सॉफ्ट डाइट के बारे में बहुत दिया हो गया है, जैसे कि जो है कद्दू है, पम्पकिन है, तुरई है, ये जो हल्की गजाएं हैं या जो हमारे माउस शरीर है और जो है वो बार्ले वाटर वगैरह है, इन सब चीज़ों का जो है दिया है। मुरब्बात का जो है वो आंवले का बहुत है, एंटीऑक्सीडेंट है कहीं ना कहीं, सेब का मुरब्बा है। अब ये सारे मुरब्बात जो है वो हल्की गजाएं जो जूद हजम गजाएं होती हैं। अच्छा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है खुश्की की वजह से होता है, यबूसत की वजह से होता है। तो हमें क्या है, हमें उसमें तरतीब लानी है, हमें तरतीब ला के उसको मॉइस्ट करना है उस जगह को। तो हम ऐसी चीजें देते हैं, फ्रूट्स के अंदर अगर हम बात करें, हम तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, और ऐसी अवॉइड करते हैं जैसे ब्रिंजल है, प्याज है, और बंद गोभी खासतौर पे दूसरी गोभी है, और राजमा है जो बहुत ज़्यादा बादी करती हैं, या ऐसी गजाएं तजवीज़ करते हैं जो हल्की हों, जूद हजम हो। क्योंकि देखिए आपने लेट खाना खाया, उसके बाद वो खाना हजम नहीं हुआ, आप जाके लेट गए, आपको इंडाइजेशन हुआ, गैसेस बन रही हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हुई कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको आपको अगले दिन जॉब पे भी जाना है, जो खासतौर से ड्राई चीज़ है, ड्राई गोश्त वगैरह जो है, वो मीट वगैरह, उसको अवॉइड करने के लिए जो है वो बोलते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बात जैसे यूनानी मेडिसिन की कर रहे हैं, तो अगर जैसे आपका 40 साल का एक्सपीरियंस इस लाइन में है, आपने क्या चेंजेस देखे खास तौर से डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में? जो रिसर्चेज हुई हैं उसका क्या फर्क पड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर? नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं या यूनानी मेडिसिन में?
0: बिल्कुल बढ़े हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरी दो अभी रिसेंटली काम हुए हैं, डिप्रेशन पर, एंजाइटी पर। अच्छा, मजे की बात है कि हमने दोनों के पेशेंट्स जो है वो मॉडर्न, हमारे यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल भी है पूरा, तो हमने मॉडर्न साइकेट्री ओपीडी से लिए हैं, और वहाँ के जो हेड एचओडी है उसने हमें रिकमेंड किया कि ये आप करके देखिए, तो वो दोनों थेरेपी हमने करी है। अच्छा, मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात बताती हूँ डिप्रेशन की, तो तीन तरह से जो है होता है। पहले तो हमें क्या करना है कि हमने नफ्सियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, फिर दूसरा जो है वो तनख्वाह मवाद करना है, और तीसरा जो है अतबा इकराम का मानना होता है कल्ब का, कल्ब को तकवीत देनी जो है वो ज़रूरी होती है। तो अगर हम तदाबीर की बात है, नफ्सियाती तदाबीर की बात करते हैं कि अगर वो एंग्जाइटी हो रही है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो वो कहाँ रह रहा है, वेंटिलेटेड रूम है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं है कहीं, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, खाने पीने का उसका किस तरह से, और कभी कभी हम कहते हैं ना कि इस माहौल चेंज कर दीजिए, कि हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, एंग्जाइटी हो रही है, अब हमें ये ब्रेक लेना है, तो वो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई, हम कहते हैं कि आप जो है वो पहाड़ों पे चले जाइए थोड़े दिन तक, वहाँ आपको अच्छा लगेगा या करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसका माहौल चेंज करना है, उस खुश्की को दूर करना है जिसकी वजह से डिप्रेशन पैदा हुआ है, जो बारीक सौदा जो हो गया है वो तरतीब उसके अंदर जो है वो पैदा करनी है। दूसरा जैसे मैंने बताया तनखिया करना है कि निकालना है, अब हम उस मवाद को कहीं ना कहीं निकाल लें, तो मवाद को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कि हम बहुत सारे उसको परगेटिव भी देते हैं कि भाई लूज मोशन हो जाए, इससे जो है वो निकल जाए, और उसके बाद उसको स्वेटिंग करते हैं कि स्वेटिंग के जरिए से वो मवाद का जो है वो इखराज हो जाता है। लेकिन एक बात, अगर हमने उसको परगेटिव दे दिया तो कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर पानी की कमी ना हो जाए या हो जाए, उसको दूर करने के लिए फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर यूनानी की बात करें तो हमारे यहाँ एक होता है नतूल, नतूल आपने शायद नाम सुना होगा, कुछ जो है वो दवाएं होती हैं, कुछ रोगनियात होते हैं जिसको एक सर्टेन पेशेंट को लिटा दिया जाता है, जो हमने अभी किया था एंग्जाइटी के ऊपर, और वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर से कंटिन्यूसली उसके माथे पे पोर किया जाता है आधा घंटे तक, 2 वीक्स तक की करी थी, उसके बाद हमने 1 वीक की करी थी अभी जो बता रही हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे रोगनियात हैं जो ये तरतीब पैदा करते हैं, रोगन कद्दू है, रोगन काहू है, रोगन बनफ्शा है, रोगन गुल है, रोगन बादाम शीरी है, तो कहीं ना कहीं ये तरतीब पैदा करते हैं। और ये नतूल की जो मैंने आप बताई एंग्जाइटी में, ये एक तरफ हमने देखा कि वो एक मॉडर्न मेडिसिन ले रहा है, और हमने एक तरफ जो 30 पेशेंट थे उनको जो है हमने नतूल थेरेपी करना स्टार्ट कर दी, तो हमने फिर दोनों का कंपैरिजन किया। तो जो हमने नतूल थेरेपी रोगों ने कद्दू से करी थी, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट उन पेशेंट्स के ऊपर आया, एंग्जाइटी को कम

0: करने के लिए, और बाकायदा हमने हेमिल्टन स्केल वगैरह लगा के उन्होंने हमें सेकेटरी ओपीडी से पेशेंट दिए थे और हमने ये लगाए। तो एक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो खाली लगाने की ज़रूरत है कुछ है। दूसरा आ जाता है हमारा, जो हमने एक डिप्रेशन पे काम किया था, दूसरा आ जाता है हमारा दलक, जिसे हम मसाज कहते हैं। तो बहुत सारे, तो हमने क्या किया, डिप्रेशन के पेशेंट हमने वही सेकेटरी ओपीडी से लिए थे, और हमारे दलक की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो हमने उसके ऊपर करा दलके लयन। दलके लयन मतलब हल्के हाथ से मसाज करना। तो हमने वहाँ फिर हमने लिया रोगने कद्दू, हमने इसमें एंग्जाइटी में लिया था, रोगने काहू हमने जो है वो डिप्रेशन में लिया, और हमने हमने उसकी नेक पे, उसके फोरहेड पे हमने 2 हफ्ते तक लगातार मसाज करी। उसके बाद हमने ऑल्टरनेट डेज पे और वीकली। तो हमने कहीं ना कहीं देखा कि उसके डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ने लगा है उस मसाज से। तो एक मसाज का आप देखिएगा, मसाज का क्या होता है कि हम उसको जो फासिद मवाद होता है उसको डायरेक्शन हम कहीं और कर देते हैं। तो इससे आप कभी भी देखा होगा कि आपने आप बहुत ज़्यादा थक गए, एंग्जाइटी हो गई है, और एक गुड मसाज जो है वो कितना आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन करता है। तो नतूल के जरिए से कर सकते हैं हम जो है ये, मसाज के जरिए से कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा हम्माम आ जाता है, जिसे टर्किश बाथ भी कहते हैं। हम्माम के अलग अलग कमरे होते हैं, तो पहले कमरे में हम उसको बिठाते हैं, हम उसको स्वेटिंग होती है, दूसरे कमरे में जो हम ले जाते हैं उसको, फिर उस गर्म पानी से उसका हम्माम होता है तीसरे कमरे में। तो आप देखिएगा कि कितने फासिद मवाद जो है उस हम्माम के जरिए से, लेकिन उसका अगर तरीका सही अगर होना चाहिए तो हम बहुत सारी डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। और ये तो आपका मेरा तो सबका एक्सपीरियंस होगा, थक हार के आके जब हम एक नहा लेते हैं या हम्माम कर लेते हैं तो हमारी कितनी एंग्जाइटी जो है दूर हो जाती है। और चौथा जो तरीका इसके अंदर जो है वो एक्सरसाइज का, आपको पता है कि एक्सरसाइज कितनी जो है वो जरूरी होती है। एक्सरसाइज करने से हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, वो नेचुरल पेन किलर भी होते हैं। तो आप अगर रोज एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि मैं तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से ताल्लुक रखती हूँ, तो मेरा जो है मैं दवाइयाँ पे कम यकीन करके मैं इन सारी थेरेपी पे जो है वो करती हूँ। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत रिलैक्सेशन जो है वो करती हैं। मेन मकसद क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी के, हम उनको सेडेटिव दे देते हैं, हम उनको सुला देते हैं कि सो जाएं, सोना बहुत जरूरी है। अब फिर वहीं आ गया, हरकत सुकून नफसानी, हरकत सुकून बदनी, रेस्ट जरा जरूरी है। जब भी आपकी हरकत सुकून जो है नफसानी ठीक होगी, जाहिर है अगर हम 2-3 बजे तक जागते रहे तो सुबह में हम अपना काम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इतना कर सकते जो मैंने आप अजबाबी सित्ता जरूरी कॉन्सेप्ट बताया था इसके अंदर, 6 एसेंशियल फैक्टर ऑफ द लाइफ, वो इसी से पूरा बेस मैंने कहती हूँ हिफ्ज़ाने सेहत का वो इन पे है। तो आप सोएंगे, अर्ली सोएंगे, अर्ली जागेंगे, वहीं आपका कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस जो है वो सही रहेगा। एक बैलेंस डाइट आपको सही रखनी है, आपको सोना जागने के बाद आप ठीक तरह से पूरा पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, आपका एतबाज इस्तबरा हो रहा है कि जो फासिद मवाद निकलने चाहिए वो निकल रहे हैं कि नहीं है, और जिनको जो है रुकना चाहिए वो बॉडी के अंदर रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि यूनानी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं कि मरीजों के लिए इत्मीनान की बात है। दूसरी बात ये है कि क्या डिप्रेशन और एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो दवाएं होती हैं स्टेज के हिसाब से वो बढ़ती हैं या एक दवा कॉमन ही होती है उनके लिए, शिद्दत पे भी वही होगी या इब्तिदा पे भी वही होगी?
0: देखिए, जो हमने अभी काम किया है वो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन पे किया है। अगर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिप्रेशन पे, तो मैं उसको नहीं कहूँगी कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन हम एडजुवेंट थेरेपी के, उस पर एक सपोर्टिव थेरेपी के जोर पे जो है वो करते हैं। लेकिन हम हल्के हल्के से नहीं, हम पहले स्लाइटली शुरू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी रिलैक्सेशन के खमीर ऐजाद हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन हैं, अक्सीर शिफा, और इवन कुछ हमारे यहाँ ऑयल ऐसे हैं, आप यकीन मानिएगा कि लोग सेडेटिव ले रहे थे बहुत दिन से और सिर्फ उनको फोरहेड पे उसको जो है खाली मसाज करना था और उनको नींद आनी शुरू हो गई। और अगर अच्छी नींद आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा ये किस स्टेज पे है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसी हिसाब से लेना है। माइल्ड में हम हल्की दवाइयाँ देते हैं, फिर हमारा थोड़ा सा अगर मॉडरेट हो जाता है मेडिसिन, हम उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं और उनको ज़्यादा देने के लिए भी बोल देते हैं। ये अलग अलग देख के हमारा देख के होता है कि कौन सी स्टेज पे है, उसके बाद हम कौन सी इनको मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगर हम शुरू में ही आ जाएँ तो, लेकिन ये ना हो कि बात हाथ से निकल जाती है तो फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: आपका फैमिली डॉक्टर वो ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, और ख़ास तौर से एंजाइटी और डिप्रेशन के मामला ऐसे होते हैं अगर आप एक किसी फैमिली डॉक्टर से जुड़े हुए हैं बहुत कारामद साबित हो जाए, डॉक्टर आपके नफ्सियात को और बहुत सारी चीज़ों को पहले से जानता है तो उसको पकड़ सकता है आसानी के साथ।
0: बिल्कुल, देखिए कभी कभी जैसे हमारे घरों का ऐसा सिनेरियो है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने माँ बाप के करीब नहीं होते हैं और बहुत सारी चीज़ें माँ बाप से छुपाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ तो मेरी बेटी को लगा कि मुझे इसको कहीं कुछ कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो मैं इतना अच्छा गाइड नहीं कर सकती, तो मैंने उसको कहा नहीं आप ये काउंसलर के पास जाओ और जब भी आपको ज़रूरत लगती है काउंसलर के पास आप जो है जा सकती हो। एक तो माँ बाप को भी चेंज लाना है, अपने बच्चों को समझना है हमें, हर बात उनकी गलत नहीं होती है और ये अपनी हर बात पे हमें एडमिट नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही हूँ, इसको कहीं ना कहीं जो है वो चेंज करना है।
1: तो उन ख्वातीन के लिए आपको क्या मशवरा है कि वो फिटनेस के लिए और ख़ास तौर से डिप्रेशन और एनजाइटी के साथ दीगर चीज़ों के लिए कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कर सकती हैं और लाइफस्टाइल छोटे घर में हो या बड़े घर में हो वो अपने आप को अंदर रह के किस तरह फिट रख सकती हैं?
0: देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन है, अगर एजुकेटेड लेडी होगी ना तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ध्यान देगी। मैं आपको अगर मैं फिलहाल अपनी बात बताती हूँ कि मैं बताई जैसे मैं 18 साल से योगा कर रही हूँ तो मैं वर्किंग हूँ और उसके बाद मुझे लगा था कि मैं जो नहीं मुझे तो खाना बना के जाना पड़ता है, मुझे भागना पड़ता है, तो मैं नहीं कर सकती कुछ एक्सरसाइज वगैरह। फिर मैंने अपना परसेप्शन चेंज किया, मैंने परसेप्शन चेंज किया मैं इस टाइम को मैनेज कर सकती हूँ, अगर मैं आधा घंटे पहले और उठ गई तो मैं इसके टाइम को अपनी सेहत के लिए मैनेज कर सकती हूँ। अब तो ये है बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी के पास मोबाइल फोन हो रहा है, ऑनलाइन इतनी क्लासेस हो रही हैं। अच्छा मैं तो कहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ना करने के बाद आप अगर दूध गर्म कर रही हैं आप काफ रेजिस तो उसमें भी कर सकती हैं, आप अगर कुछ काम कर रही हैं आप जो है शोल्डर को आप कर सकती हैं, आप हाथ को कर सकती हैं, आप चार पांच स्टेप पांच मिनट ऐसे कौन मना करता है आपको, आप ये बताइए कोई नहीं करता। लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल खुद चेंज करना है, आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। अगर आप सही रहेंगी तो आप पूरे खानदान को सही रख सकती हैं, आप उनको सही बता सकती हैं, आपको अच्छा लगेगा जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप उसे खुद 10 मिनट करोगे। एटलीस्ट शुरुआत हमें खुद से करनी है।
1: डॉक्टर आयशा परवीन के साथ हमने डिप्रेशन और एनजाइटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा का कि उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया और डिप्रेशन और एनजाइटी के ऊपर बहुत सी बातों से वाकिफ कराया। शुक्रिया।
0: शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए।
2: डिप्रेशन एनजाइटी शनाख्त और यूनानी इलाज, अभी आप इस मौजू पर डॉक्टर आयशा परवीन की गुफ्तगू सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी। तो सामईन ये था हमारा आज का प्रोग्राम हिफ्जाने सेहत। अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इसमें नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
5: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों,
6: कुरडीपा गांव के कारीगरों को टूल किट मिलने के बाद उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। स्थानीय दंपति ने बताया कि इस योजना से बेरोजगारी दूर हुई है और उनके उत्पाद अब स्थानीय बाजारों से लेकर राजधानी रांची के प्रदर्शनी मेलों तक पहुंच रहे हैं। देश की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आगामी 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत साहिबगंज जिले में 19 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 13 चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणों को सुलभ और हानि रहित इलाज मिल रहा है। चतरा के लापता ऑटो चालक तिलक यादव का 5वें दिन भी सुराग नहीं मिला है। उनका लावरिस ऑटो बरामद होने के बाद परिजनों और ऑटो चालक संघ ने आज हजारीबाग चतरा मुख्य मार्ग जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। एसडीपीओ सनी वर्धन ने बताया कि विशेष टीम तलाश

0: तलाशी अभियान चला रही है और जामताड़ा जिले के छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन, कॉलोनी और बिजली कार्यालयों में आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
2: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है
1: जी। हमारे इधर नहीं मैडम, बैरस फसल नुकसान में इस साल।
2: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
2: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा
2: जी। जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
2: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों जी को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं तो अभी बाग वाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक पीक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
2: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरा भरा लगाते हैं।
2: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है? हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, जो भी आता है वो पहले सोयाबीन भी आती है
2: जी।
1: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
2: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपका?
1: ट्यूबवेल है मेरा, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें भी पानी आ रहा है।
2: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।
1: हमसे बढ़कर देवा देवा गणपति देवा
2: जी। जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आसपास?
1: आते।
2: अच्छा,
1: नहीं आते, हमारे गांव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
2: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल
2: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूं मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था। आज
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोक नगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोक नगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना वो हमारे अशोक नगर में लगता है जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बड़े एक लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोक नगर एमपी में ही लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
1: हाँ जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: जी मैम, मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
0: तो टिक्की चाट
1: बचपन की याद है।
0: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है मैम। ऐसे जब साथ में खाते हैं ना तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है परभनी से। सतीश सावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच खटपट नहीं होती है?
2: हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
2: हाँ।
0: अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
2: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: विवेक भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन
2: किया। पापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही है आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए, है ना?
2: और बारिश तो नहीं, कहीं कहीं लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी, बिल्कुल। और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेलो फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से
0: जी
1: आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है,
1: ये
0: कहाँ
1: बड़गांव
0: पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है।
0: क्या बात
1: हमारा
0: है।
1: जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से मुलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर
0: जी
1: है। और
0: अच्छा,
1: बड़गाम इस बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा क्या बात है भाई।
1: जी
0: तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरते, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहते हैं। जंगल के किनारे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और बर्फ की गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी, आप क्या करते हैं वहां पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सीपी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस
1: इसके
0: बात
1: अलावा
0: के लिए।
1: क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है,
0: अरे
1: मूवी
0: वाह,
1: देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
0: बहुत
1: मुझे
0: बढ़िया,
1: बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
0: जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी,
1: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो 2-4 बार हमने खेला है कि जैसे
0: बारिश हो
1: बर्फ
0: रही है।
1: गिरी थी, बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया कि यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है और उसके पीच लगाना बहुत आसान होते हैं, फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बचपन में क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंकते हैं,
0: फेंकते हैं।
1: और बचपन की यादें बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं, जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का
1: हाँ
0: गोले
1: मैंने
0: बना के एक
1: देखा
0: दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने
0: जी
1: देखा है
0: जी
1: 2-4 बार मैंने देखा
0: और
1: है।
0: अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले जाए ना खेले
1: बिल्कुल
0: लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन
1: बिल्कुल,
0: सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, गाने के बोले पंचेश्वर में गाते हैं, बावरे गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मतलब अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ हाँ मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, फिर इसको प्रोसेस रहता है मैम चाय पत्ती बनाने का।
0: जी तो जी,
1: उसमें मशीनें डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है।
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं, और
1: जी जी मैम
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू बिहू तब यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने।

0: पर चलता है।
1: जी जी तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही।
1: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना चोरी।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं? वहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है,
1: जी, अच्छा
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहां के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी,
0: लेकिन
1: तो
0: आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो
0: जी
1: एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि वहां
0: जी
1: से एक रास्ता खुल जाता है। तो
0: जी
1: जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं।
0: जी
1: एक वहां सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
0: बहुत
1: जंगल?
0: दूर है हमारे यहाँ।

0: से।
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के?
0: झाड़ ऊंचे तो याद
1: इस तरह से कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, घास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने की आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में बताना चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना?
0: जी जी जी जी।
1: एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए, जंगल तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं, मतलब जो हमारा

0: जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है, और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप दादा ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं, नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना।
0: बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे, और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं, लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया, और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
0: अभी तो धान बहुत आया था और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल, और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट और मिठास होती है उनमें। कौन कौन से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती, ये जो मिठास की अब बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमाया, ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी
0: कौन बोल
1: बहुत,
0: रही।
1: मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ,
0: जी बताइए
1: और
0: नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी, छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से,
0: जी
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है।
0: अच्छा
1: और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स

0: योगदान है इस
1: जी
0: जगह के बारे में। तो जो हम बात कर
1: जी
0: रहे हैं ना, जिन ध्वनि
1: जी
0: तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी
1: जी
0: इंजीनियर
1: जी
0: का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा?
1: जी
0: आप
1: जी
0: चूंकि
1: जी
0: पेशे
1: जी
0: से इंजीनियर हैं, तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे?
1: जी हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी जी
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग, कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ?
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है, इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं, तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जी, जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या
1: ये
0: बात है,
1: थिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हो टोको करके गोल।

बुराई दिल पे रख के हाथ उसे तुम चला ले दिल की इडियट है प्यार से उसको समझा ले और घुमाओ सीढ़ी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दफा सुमे घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से। तो
0: हाँ
1: आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कहना, हमने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से।
0: हाँ
1: तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए, और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर्तीवार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है। बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है। अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे?
1: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी की, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहां की गलियां पतली पतली सकरी सकरी गलियां।
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है, जैसे कि कचौड़ी गली में है, और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया,
0: अच्छा
1: चलो अब मैं
0: कचौड़ी गली का नाम
1: कचौड़ी।
0: लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: मैडम
0: हाँ
1: जी जी जी
0: याद है तो सुनाइए
1: जी
0: जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते?
1: नहीं, गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी। देखिए बात जो हकीकत है,
0: हाँ
1: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये
0: हाँ
1: है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाऊ जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कर कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनम रे जय संकट मोचन का, भगवान श्री राम जी का जो भी है, सचमुच है कि कचौड़ी वैसा नहीं बन
0: कहीं
1: पाता
0: नहीं मिल
1: है।
0: पाता वो स्वाद, नहीं मिल पाता। और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो
1: हाँ
0: मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है, और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है। और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी
1: हाँ
0: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहां के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट, घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है,
0: जी
1: ये एक
0: जी
1: सौ अस्सी घाट सब जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शीतला नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं, दो हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात
1: है जी। जी, हमारे गुरु जी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं
0: जी। बड़ा बढ़िया लगता है भाई, अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है, कीर्तन वाला तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं, नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर, जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो, हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन, और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं
0: जी। प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी।

0: जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन
0: ममता जी।
1: सा,
0: और बताना चाहूंगा मैं,
1: हाँ
0: उससे पहले बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002462। मुंबई का STD कोड है 022 और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा।
2: सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज जमशेदपुर सदर अस्पताल में दिव्यांग जनों के बीच कृत्रिम अंग और व्हील चेयर बांटे गए। हेल्प ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभुकों को सहायता सामग्री सौंपी और समाज सेवा के इस प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज चतरा रेड क्रॉस सोसाइटी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। असीम मंडल पर झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा कुल 2,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड के IG अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने असीम के पश्चिम बंगाल में सरेंडर करने की पुष्टि की है। रांची के नामकुम में आयोजित भव्य विश्वकर्मा पूजा महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नामकुम में जल्द ही एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। और रांची के रोवर जसविंदर सिंह का चयन, जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय रोइंग दल में हुआ है। वह पुरुष वर्ग की मेन्स फोर्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। अभी

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, सोच रही थी कि उसके आने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी। एक रेगिस्तान जैसी, बेरंग, खामोश और खाली। लेकिन जब से वो आया, मेरे खामोश दिल में जैसे किसी ने सितार छेड़ दिया। वो जो उदासी के बादल थे, वो छट गए हैं अब। अब जब तुम मेरे साथ हो, जिंदगी में बाहर ही बाहर है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए शाम के समय समुद्र की उस सुगंध की तरह है, जो एक शांत खिड़की से अंदर आती है।

जिंदगी को परिभाषित करना मुहाल है, पर मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। कहीं रंगीन सा ख्वाब है तो कहीं कभी न खत्म होने वाली एक रूमानी यात्रा। हाँ, जो तुमसे शुरू हुई है और तुम्ही पर आकर खत्म। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी भावनाओं को महसूस करने के लिए एक अतिरिक्त दिल की जरूरत है।

इस रूमानी सफर का हर मोड़ हर नजारा अब सिर्फ तुम्हारे होने से हसीन है, सिर्फ तुम और मैं और हमारी ये हसीन यात्रा। कहते हैं हम सफर प्यारा हो तो सफर का मजा मंजिल पाने से ज्यादा होता है, और हसीन सफर का हर पल इबादत बन जाता है। मैं तुमसे उसी तरह प्यार करती हूँ जिस तरह मैं चांद से प्यार करती हूँ जिसकी आत्मा से प्रकाश निकलता है।

शाही गीत के सफर में आप हैं मंदाकिनी के साथ। इस हसीन यात्रा के साक्षी हैं ये गगनचुंबी देवदार के पेड़, जो मानो हवाओं के साथ लहराकर अपनी खुशी बयां कर रहे हों। हवाओं का ये शोर और पक्षियों का ये कलरव, आहा, देवदार, हवाएं, पक्षी और वो चांद, ये सभी इस यात्रा के हमसफर हैं। कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में ये सफर हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को छू रहा है। पता है ना, इसी तरह आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं।

शायद तुम अनजान हो, पर मैं हर रात शाम की तन्हाई में भोर की पहली किरण में तुम्हारा नाम गुनगुनाती हूँ। हाँ, गुनगुनाती हूँ। मैंने अपनी बंद आँखों से तुम्हें महसूस किया है। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी उल्फत की यह कशिश कभी महसूस होती है?

हाँ, हमें रिश्तों की नुमाइश नहीं चाहिए थी, वो जुड़ाव चाहिए था जो भीतर तक ठहर जाए। मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारी भुजाओं की चौड़ाई नहीं नापी, तुम्हारे भीतर की कोमलता को महसूस किया, संवेदनशीलता देखी, तुम्हारे मौन को सुना, और हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को खुरच खुरच कर देखा, है ना? भीतर से निकली मिट्टी को जांचा है हमने, परखा है हमने, तब जाकर एक दूसरे को चुना है हमने।

शाम 5:35 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे युवानी। युवानी कार्यक्रम के तहत चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय सामान वेतन दिवस और साथ ही साथ चर्चा में सुनेंगे छुआछूत से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी। वार्ता में सुनेंगे डिजिटल युग में हिंदी, वार्ताकार होंगी रितिका कुमारी तिवारी। 6:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकेंगे। 6:30 कृषकों को संबोधित कार्यक्रम सुन सकेंगे ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम में आज चर्चा होगी धान फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। आज की बात में सुनेंगे समसामयिक कृषि कार्य और भेंटवार्ता में सुनेंगे एक महिला किसान से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगी सीता देवी गोदरमा विश्रामपुर पलामू से, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत में सुनेंगे जल संरक्षण और आज के मौसम तथा आज के बाजार भाव से भी आपको जानकारी दी जाएगी।

शाम 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का 7:10 पर। जिले में आजकल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 7:15 पर आयुष्मान सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। 7:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग सुन सकेंगे। 7:45 पर उजाले की ओर, इसके अंतर्गत वार्ता में सुनेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य, वार्ताकार होंगे आनंद कुमार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से का समय होगा रात्रि के 8 बजे और सरहदे क्षेत्रीय फिल्म संगीत का ये

खाने के दिल्ली केंद्र से 9:30 पर आज के फनकार सुन सकेंगे विविध भारती से, और 10 का समय होगा स्पेशल प्रोग्राम चीयर फॉर भारत, इसे आप सुन सकेंगे रात्रि के 10:00। 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम पेश करेंगे रजनीगंधा में, और 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के ठीक 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। और साथी श्रोताओं, आज विश्वकर्मा पर्व है, तो सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, बहुत ही उत्साह एवं उमंग से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और देखा जाए तो आज के दिन जगह जगह मूर्ति स्थापित की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है और इसका हम सबके जीवन में क्या महत्व है, तो श्रोताओं आइए जानते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले तो श्रोताओं हम ये बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माणकर्ता या शिल्पकार माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को ही विश्व का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार ही विश्वकर्मा जी ने इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक और लंका आदि राजधानियों का निर्माण किया था। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र के रूप में भी माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए श्रोताओं हम सभी जो है जानते हैं कि इनका जो बहुत बड़ा सहयोग है, और आज जितने भी शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, ये सभी जगह विशेष रूप से पूजा की जाती है क्योंकि इनके अधिष्ठात्री इन्हीं को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करते रहने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं आती है, उनका काम सुचारू रूप से चलता रहता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो विश्वकर्मा पूजा मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जो है एक इंजीनियर के रूप में उन्हें

अपना भावी सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो हम सबके जीवन में महत्व है कि हम सम्मान करें उस हर चीज़ को जिसे मनुष्य अपने मेहनत के द्वारा उसे निखारता है, बनाता है और लोगों तक ये बहुत ही आसानी से हम सब तक पहुंच जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी हर व्यक्ति का इसमें कुछ ना कुछ सहयोग होता है। तो चलिए श्रोताओं, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आइए अब हम कुछ बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पर, जो कि 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है समान या समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान पारिश्रमिक मिलने के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो दोस्तों, किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम और योग्यता के अनुसार उचित और समान पारिश्रमिक मिले। और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। समान वेतन का अर्थ है, यदि महिला और पुरुष समान या समान मूल्य का काम करते हैं तो केवल लिंग के आधार पर उनके वेतन में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। वेतन का निर्धारण काम की जिम्मेदारी, योग्यता, अनुभव और कार्य के घंटे और प्रदर्शन जैसे उचित आधार पर होना चाहिए। समान वेतन केवल आर्थिक अधिकार का विषय नहीं है दोस्तों, बल्कि ये समानता, समान सम्मान और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। जब महिलाओं को उनके काम का उचित पारिश्रमिक मिलता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और महिलाओं का निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं, जहाँ महिलाएं खेती, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, कई बार महिलाओं के श्रम का पूरा आर्थिक मूल्य भी दर्ज नहीं हो पाता है। इसीलिए जरूरी है कि परिवार और समाज महिलाओं के श्रम को पहचाने तथा उन्हें काम का उचित मूल्य और पारिश्रमिक दिलाने की दिशा में जागरूक हों।

0: कानूनी अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव हो तो इससे वे जागरूक हों और अपने जो अधिकार है उसके प्रति वे सजग रहें। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हमें यह संदेश देता है कि काम का मूल्य व्यक्ति के लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके श्रम, जिम्मेदारी और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। और चलिए श्रोताओं, अब इस जानकारी के बाद हम आपको सुनवाते हैं वार्ता डिजिटल युग में हिंदी। वार्ताकार होंगे रितिका कुमारी तिवारी।
1: हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी सांस्कृतिक से जुड़ा है, डिजिटल युग। दोस्तों, भारत में भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है बल्कि यह हमारी संवेदनाओं, हमारी परंपराओं और हमारी सांस्कृतिक पहचान का है। शताब्दियों से हिंदी ने सूत्र में पिरोने का काम किया है, लेकिन समय कभी ठहरता नहीं। समय के साथ समाज बदलता है और समाज के साथ भाषा के तरीके भी बदलते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह डिजिटल क्रांति का दौर है। हमारे हाथों में मौजूद छोटे से स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक जानकारी प्राप्त करने का हमारा तरीका डिजिटल हो चुका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या यह डिजिटल युग हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन रहा है या फिर यह हिंदी के विकास, विस्तार और वैश्विक पहचान के लिए एक अभूतपूर्ण अवसर लेकर आया है। आइए आज के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जैसे पहले है डिजिटल युग, एक नई भाषाई दुनिया। श्रोताओं, जब हम डिजिटल युग शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ केवल कंप्यूटर या लैपटॉप तक सीमित नहीं रहता। यह तकनीक का एक ऐसा व्यापक ताना बाना है जिसने संचार के पारंपरिक माध्यम से लेकर आधुनिक डिजिटल साधनों तक की एक लंबी यात्रा तय की है। एक समय था जब छपाई मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने पर माना गया कि भाषा को नया जीवन मिला। फिर रेडियो और टेलीविजन ने भाषा को घर घर पहुंचाया, लेकिन डिजिटल तकनीक ने भाषा को एक नई भाषाई दुनिया प्रदान की है। शुरुआती दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था। ऐसा माना जाने लगा था कि जो भाषा कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं दिख सकती वह आने वाले समय में पिछड़ जाएगी, लेकिन हिंदी ने इस धारण को गलत साबित किया। यूनिकोड तकनीक और देवनागरी लिपि ने मानकीकरण के आगमन ने हिंदी के डिजिटल प्रवेश का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त कर दिया। यूनिकॉर्न की वजह से अब किसी भी डिजिटल उपकरण, चाहे वह स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर, देवनागरी लिपि से लिखना और पढ़ना अत्यंत सरल और सुलभ हो गया है। इसने हिंदी को वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। दोस्तों, आज अगर आप इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की खोज करेंगे तो आपको ज्ञान और जानकारी का एक विशाल महासागर मिलेगा। इंटरनेट पर हिंदी का संसार बहुत तेजी से बढ़ा है। आज देश और दुनिया के प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाओं के हिंदी पोर्टल 24 घंटे अपडेट रहते हैं। इसके अलावा खेल, साहित्य, स्वास्थ्य, विज्ञान और मनोरंजन से जुड़े हजारों ई ब्लॉग्स और ई पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। साहित्य प्रेमियों के लिए ई पुस्तक के रूप में हिंदी का क्लासिक और आधुनिक साहित्य अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। डिजिटल ने समाचारों के प्रवाह को तत्कालिक और सुलभ बना दिया है। पहले जिन खबरों के लिए ग्रामीण या दूरदर्शन के क्षेत्रों के लोगों को अगले दिन के अखबार का इंतजार करना पड़ता था, आज वही खबरें रियल टाइम में उनके मोबाइल स्क्रीन पर हिंदी में उपलब्ध होती है। इस डिजिटल प्रसार का सबसे सकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि देश की छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचनाओं की पहुंच आसान हो गई है। सोशल मीडिया ने बदली हिंदी की दुनिया। श्रोताओं, यदि हम डिजिटल युग की बात करें और सोशल मीडिया की चर्चा न हो तो यह बात अधूरी ही रहेगी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हिंदी के प्रयोग का दायरा भूतपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है। अब आम व्यक्ति केवल जानकारी का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं एक सामग्री निर्माता बन गया है। एक साधारण नागरिक भी हिंदी के आप अपने विचार, कविताएं, निबंध और राय सीधे लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। हिंदी पोस्ट, वीडियोस, रील्स और पॉडकास्ट का प्रचलन आज अभूतपूर्ण ऊंचाइयों को छू रहा है। हालांकि इस तकनीकी क्रांति ने युवाओं की भाषाई शैली में भी बड़े परिवर्तन लाए हैं और रोमन लिपि ने हिंदी लिखने का चलन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया ने हिंदी को औपचारिकता दायरे से निकालकर हर दिन की जीवन भाषा बना दिया है। डिजिटल शिक्षा। प्रिय श्रोताओं, शिक्षा उन्नति की नींव होती है। डिजिटल युग शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति ला दी है, उसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नए द्वार खुले हैं। आज इंटरनेट पर हिंदी में प्रचुर मात्रा में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है। YouTube और विभिन्न ऐप्स पर डिजिटल कक्षाओं, वीडियोस और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कठिन विषय भी हिंदी में समझा जा रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र आज ऑनलाइन सामग्री का लाभ उठा रहे हैं। यह बदलाव विषय रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम से पढ़े विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ है। पहले जहां अध्ययन सामग्री केवल अंग्रेजी भाषा तक सीमित थी, वही अब ज्ञान, विज्ञान, गणित, इतिहास और आधुनिक विषयों की हिंदी में उपलब्ध कारणों की दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी और हिंदी का नया रिश्ता। श्रोताओं, अब बात करते हैं तकनीकी और हिंदी के उस अटूट रिश्ते की जो आज के समय में दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा है। आज आपको कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। वॉइस सर्च तकनीकी के कारण आप केवल अपने स्मार्टफोन के सामने हिंदी में बोलते हैं और जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। स्पीच टू स्पीच और टेक्स्ट टू टेक्स्ट जैसी सुविधाओं ने उन लोगों के लिए भी डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में हुए सुधारों ने दुनिया की विभिन्न भाषाओं के साहित्य और ज्ञान को हिंदी में अनुवादित करना आसान बना दिया है। इसके साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, चैटबॉट और भाषा में हिंदी को शामिल किया जा रहा है। डिजिटल सहायक जैसे गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा अब हिंदी में कमांड समझते हैं और हिंदी में ही उत्तर देते हैं। विषय में हिंदी के तकनीकी विस्तार की संभावनाएं असीम हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस उज्जवल इस तस्वीर के साथ साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी है। अंग्रेजी का प्रभाव। इंटरनेट की मुख्य भाषा आज भी काफ़ी हद तक अंग्रेजी बनी हुई है, जिससे हिंदी सामग्री को अभी तक और मुकाबला करना पड़ रहा है। रोमन लिपि का बढ़ता प्रयोग। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि में हिंदी लिखना देवनागरी के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। वर्तनि और व्याकरण की अशुद्धियां डिजिटल मीडिया पर तेजी से सामग्री पोस्ट करने के चक्कर में भाषा के व्याकरण और वर्तनि स्पेलिंग मिस्टेक का प्रयोग हो रहा है। इंग्लिश का प्रयोग। मूल हिंदी शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का अत्यधिक घोलमेल भाषा के सौंदर्य का प्रभावित कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली को सहज और सरल बनाएं, ताकि भाषा की मौलिकता और सौंदर्य को रखते हुए उसे आधुनिक बनाया जा सके। श्रोताओं, जब हम प्रसार और भाषा के प्रचार की बात करते हैं तो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम सबसे पहले आता है। आकाशवाणी ने भारत के कोने कोने तक मानक हिंदी को पहचाने और भाषा के संरक्षण में जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई है वह अतुलनीय है। डिजिटल रेडियो तक कि इस यात्रा के आकाशवाणी ने सदैव समय के साथ कदम मिलाया है। आज आकाशवाणी के कार्यक्रम केवल रेडियो सेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वो विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध है। पॉडकास्ट और ऑन डिमांड रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी की समृद्ध विषय सामग्री अब नई पीढ़ी के युवाओं को मोबाइल तक पहुँच रही है। यह पारंपरिक भाषा संरक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीक का सुंदर संगम है। डिजिटल भविष्य और हिंदी की संभावनाएं। श्रोताओं, देखें तो डिजिटल दुनिया में हिंदी का विस्तार अत्यंत उत्साहजनक नजर आता है। आज वैश्विक कंपनियां भारत के विशाल हिंदी भाषी बाजार को पहुंचा चुकी है। चाहे कारण है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी एप्स, डिजिटल बैंकिंग और गेमिंग उद्योग अपनी सेवाओं को हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं। एआई और आधुनिक तकनीकों में हिंदी का प्रयोग इसी प्रकार बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी केवल भावनाओं और साहित्य की ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान और वैश्विक तकनीक की अंग्रेजी भाषा बनेगी। हिंदी का भविष्य डिजिटल है। डिजिटल युग हिंदी के अस्तित्व के लिए कोई रोहतक नहीं है, बल्कि यह उसके अभूतपूर्व विस्तार का एक सुनहरा अवसर है। तकनीक बदल रही है, इसलिए भाषा के प्रयोग के तरीके भी बदलेंगे। हमें इस बदलाव को हर्ष स्वीकार करना होगा, परंतु स्वीकार करते समय अपनी भाषा की मौलिकता, शुद्धता और जड़ों को बचाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जैसा कि किसी विद्वान ने कहा है, हिंदी का भविष्य केवल पुरानी किताबों में सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल स्क्रीन, स्मार्टफोन की आवाज और इंटरनेट की इस असीम दुनिया में जगमगा रहा है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता डिजिटल युग में हिंदी। इस पर जानकारी दे रही थी रितिका कुमारी तिवारी। और इसी वार्ता के साथ

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जैविक खेती अपनाऊ, माटी के स्वास्थ्य के बचाऊ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनैया सब भाई और बहन मन के रोर मन के रेडियो संगे मनोज और
0: जुगनी बहन दन से जोहार।
1: और ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो कहू मनोज भाई, का हाल खबर है और बतले छुआ पुता मन कैसाना है?
1: सब ठीक है बहन, और खेती बाड़ी बढ़िया चलत है, और संगे संगे देखो हम तो पशु पालन भी करे ला, तो पशु मन भी जितना है गाय गोरु छगरी मन कहब तो सब भी ठीक ठाक है।
0: बड़ा नगद गोट रहो रे, कहली खेती बाड़ी के संगे हमरे के पशु पालन भी करे चाहिए, काले की पशुपालन ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है के जेकर से किसान भाई मन के अतिरिक्त मुनाफा तो होबे करेला, किसान भाई मन का आर्थिक स्थिति भी बेहतर होवेला, इकर से परिवार में खुशी भी बनल रहेला है कि नहीं।
1: और संगे संगे देखो तो गाय गोरु पोषक से हमरे मन के जे गोबर भेटायला उ हमरे कर खेत बारी में काम भी आवेला है कि नहीं।
0: बड़ा नगद गोठ रोरे, कहली देखो पशु मन कर मलमूत्र और गोबर से उत्तम जैविक खाद बनल जा सकेला, जे कि माटी के उपजो और फसल के पैदावार के बढ़ा सकेला।
1: और संगे संगे देखो कि मलमूत्र कर से हमरे मन मूत्र से हमरे मन जैविक कीटनाशक दवा बनायला, जेकर से हमरे मन के एक तो फायदा भी है, और संगे संगे कहा है कि जे मूत्र कर हमरे कर सही रूप से प्रयोग हो जाएला।
0: जे दुधारू पशु है इकर से हमरे के तो दूध भेटावे करेला, और इकर उत्पादन से पशु पालक मन के सोब दिने मुनाफा भी भेटायला, और संगे संगे अगर हमरे छगरी मुर्गी और सुअर पालन भी कर ही तो इकर से हमरे के मांस और अंडा भी प्रोटीन से भरपूर मात्रा में भेटायला, जे की पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी हमरे के भेटायला।
1: और देखो सरकार देने से भी हमरे के बहुत सारे ऐसे योजना में दे है, जेकर से हमरे उन पशुपालन करके आमदनी भी कमा सकेले, और सरकार देने से हमरे मन के पशु भी भेटायला है कि नहीं
0: एकदम। और देखो सरकार देने से जे योजना मन भी भेटायला से के भी हमरे के लेवे के, और योजना से हमरे के लाभ लेवे के चाहिए, ताकि हमरे कर आमदनी दुगुना हो सके।
1: और देखो नी जुगनी बहन, हम तो संगे संगे सब्जी भी खेती बाड़ी करेला, जेकर में एखन फूलको भी हमारे खेत में भरल पड़ल है।
0: देखो पशुपालन का संगे संगे हमारे खेती बाड़ी भी करीला, और रोरे गोठिया थी फूलकोबी कर खेती कर बारे तो देखो बहुत सारा ऐसा किसान है जे की फूलकोबी कर खेती कर है ना, और फूलकोबी कर खेती में बहुत सारा परेशानी भी होवेला, तो देखो उकर लक्षण कैसा ना है, उकर विकार कैसा ना है, और उकर से कातर हमरे निपट सकेला, सिकरो बारे में हमरे के जानकारी रखे बहुत जरूरी है।
1: और देखो खेती बाड़ी करत है लेकिन अगर सही रूप से हमरे मन के जानकारी नखे तो हमरे मन के नुकसान होए कर संभावना रहेला, तो हमरे मन के देखो कौन वे खेती बाड़ी कर रहे थे तो कर पहले हमरे मन के जानकारी जरूरी है, और संगे संगे देखो बीमारी मन होए तो बीमारी का बचाव भी जरूरी
0: एकदम। नगद गोठ रोरे कहा थी कि हमरे के फसल के बीमारी मन से कातेर बचाए है, सिकरो बारे में हमरे के जानकारी करे है, तो चलो इकरे बारे में हमरे जानकारी करब। फूलकोबी कर पौधा में विकार कातेर करल जाएला सिकरे बारे में जानकारी करब। विशेषज्ञ है डॉक्टर वर्षा रानी, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
5: किसान साथियों नमस्कार, आज हम जानेंगे फूलगोभी के प्रमुख विकार, कारण, लक्षण और प्रबंधन के बारे में, और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्षा रानी, सहायक प्राध्यापक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर वर्षा, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार सर।
5: आप हमारे किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि फूलगोभी के शारीरिक विकार क्या हैं?
6: जी, फूलगोभी के शारीरिक विकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें कि मुख्य शारीरिक विकार जो हैं वो हैं बटनिंग, ब्राउनिंग, विपटेल, राइसीनेस और खोखला तना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हॉलो स्टेम कहते हैं। तो आज हम इन सारे शारीरिक विकार के बारे में जानेंगे, खेतों में हम उनको कैसे उनके लक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं, उनका क्या कारण होता है और उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसका क्या प्रबंधन होगा, तो इसकी हम चर्चा करेंगे।
5: जी, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बटनिंग क्या है।
6: बटनिंग या फूलगोभी का एक शारीरिक विकार है जिसमें फूल का आकार बटन जैसा छोटा रह जाता है और फूल का विकास रुक जाता है।
5: इसका कारण क्या है और इसका प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें?
6: जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसका मुख्य कारण है नाइट्रोजन की भारी कमी होना। अगर हमारे खेतों की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये बटनिंग की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा पौधे की अगर लेट रोपाई अगर हम करें तो भी बटनिंग की समस्या होती है, और अगर पौधा बहुत जल्दी रोपाई कर दें तो भी बटनिंग हो सकती है। इसके प्रबंधन के लिए खेत में यूरिया की सही मात्रा डालें, यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं, यूरिया का 1% का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं, और हमें खरपतवार को भी हटाते रहना चाहिए क्योंकि खरपतवार फसल से पोषक तत्व को अपनी तरफ खींच लेते और फसल को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। साथ ही 20 से 25 दिन की स्वस्थ और मजबूत पौध की ही रोपाई करनी चाहिए। किस्म के अनुसार ही फूलगोभी की रोपाई सही समय पर करें। इसके अलावा फसल में नमी बनाए रखें और पानी की कमी ना होने दें।
5: जी, तो फूलगोभी में ब्राउनिंग नामक विकार होता है, तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तृत जानकारी दे दें।
6: फूल गोभी में ब्राउनिंग एक ऐसी समस्या है जिसमें गोभी का सफेद फूल भूरा या काला हो जाता है। यह समस्या अगर बढ़ जाए तो फूल सड़ने लगते हैं और उसमें से बदबू आने लगती है। नई आने वाली पत्तियां छोटी होकर मुड़ जाती हैं और उनका किनारा खराब होने लगता है।
5: जी, तो ब्राउनिंग के कारण क्या है?
6: इस विकार का मुख्य कारण है बोरोन की कमी। अगर मिट्टी में बोरोन की कमी हो जाए तो फूल भूरा पड़ता है। इसके अलावा अगर मिट्टी अधिक क्षारीय होती है तो पौधे मिट्टी से बोरोन को सोख नहीं पाते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी में नमी की कमी होती है तो भी पौधे बोरोन को सही से नहीं सोख पाते हैं।
5: जी, तो इसकी रोकथाम कैसी करनी चाहिए?
6: फसल में लक्षण दिखते ही या फूल बनने से पहले 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 10-15 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करें। साथ ही खेत की तैयारी के समय ही 4-5 केजी बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। साथ ही खेत में सही समय पर सिंचाई करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे पोषक तत्वों को सोख सकें।
5: जी, आगे आप ये बताएं कि फूलगोभी में विप्टल एक विकार होता है, तो यह विकार क्या है और इसमें क्या लक्षण दिखते हैं, इससे कैसे पहचाना जा सकता है?
6: जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विप्टेल विकार होता है, तो विप्टेल हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो विप का हिंदी मतलब होता है चाबुक की तरह, मतलब इसमें जो पत्तियां होती हैं वो चाबुक की तरह हो जाती हैं।
5: जी,
6: इसीलिए इसका नाम पड़ा विप्टेल। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसका लक्षण क्या होता है, जिसको देख कर हमारे किसान भाई पहचान पाए। तो इस विकार में पौधे की पत्तियां सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। पत्तियों का मुख्य हिस्सा चौड़ा नहीं हो पाता है, केवल बीच की मुख्य सिरा ही लंबी बढ़ती रहती है, जिसके कारण पत्तियां पूंछ या चाबुक की तरह दिखने लगती हैं। नई पत्तियां पतली होकर ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और उनका किनारा पीला या सफेद होकर सूखने लगता है। गंभीर स्थिति में फूल बिक्री योग्य नहीं बन पाते हैं।
5: जी, तो अभी आपने विप्टल विकार के बारे में बताया, लेकिन यह विप्टल विकार किन कारणों से पौधों में होता है?
6: मिट्टी में मॉलिब्डेनम तत्व होता है, जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए तो यह समस्या आती है। यह तत्व पौधे में नाइट्रोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। यह विकार ज्यादातर उस मिट्टी में देखा जाता है जिसका पीएच मान 5.5 या उससे कम होता है, यानी अम्लीय मिट्टी में मॉलिब्डेनम मौजूद होने पर भी पौधा उसे सोख नहीं पाता है। इसके अलावा रेतीली या हल्की मिट्टी में ज्यादा पानी की वजह से यह पोषक तत्व बह जाता है।
5: तो इसकी रोकथाम और उपचार कैसे हमारे किसान भाई करें?
6: जी, इसके लिए खेत की तैयारी के समय 1 से 1.5 केजी सोडियम मॉलिब्डेट या अमोनियम मॉलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। अगर मिट्टी अम्लीय है तो मिट्टी की जांच के आधार पर चूना खेत में डालें ताकि मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच आ जाए
5: जी।
6: इससे मिट्टी में मौजूद मॉलिब्डेनम पौधों को आसानी से मिलने लगता है। यदि फसल में लक्षण दिखाई दें तो सोडियम मॉलिब्डेट या अमोनियम मॉलिब्डेट का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
5: फूलगोभी में एक विकार होता है राइसिनेस, इसके लक्षण को वो कैसे पहचाने और इस विकार के कारण क्या है?
6: जी देखिए, आपको नाम से ही पकड़ना है राइसिनेस। राइस मतलब चावल को हम अंग्रेजी में राइस कहते हैं।
5: जी जी।
6: तो इस विकार में जो फूल होता है वो चावल जैसा हो जाता है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये चावल जैसा कैसा दिखता है। तो राइसिनेस जो है फूल गोभी का एक बहुत कॉमन विकार है, जिसमें गोभी का फूल चिकना होने के बजाय, गठीला होने के बजाय चावल के दानों की तरह दानेदार और खुरदुरा हो जाता है। फूल गोभी की जो छोटी कलियां होती हैं वे आपस में जुड़ी रहने के बजाय थोड़ी बड़ी और अलग अलग होने लगती हैं। इसमें फूल ठोस नहीं रहता और ढीला होकर बिखरने लगता है, जिससे गोभी की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण है तापमान में उतार चढ़ाव। फूल तैयार होने के समय अचानक तापमान का बहुत अधिक या बहुत कम हो जाना इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा नाइट्रोजन की अधिकता यानी यूरिया का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करने से पौधे का वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है, जिससे फूल दानेदार हो जाते हैं। इसके अलावा देरी से कटाई होने की वजह से भी ऐसा होता है। फूल पूरी तरह तैयार होने के बाद भी सही समय पर अगर ना काटा जाए तो वह पकने लगता है और उसमें राइसिनेस आ जाती है। गलत किस्म का चुनाव, जैसे अगेती वैरायटी को पछेती मौसम में या पछेती वैरायटी को अगेती मौसम में लगाने से भी यह समस्या होती है।
5: तो इसके रोकथाम और प्रबंधन के उपाय क्या हैं?
6: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें कटाई सही समय पर करनी चाहिए। जैसे ही गोभी का फूल अपनी पूरी साइज में आ जाए और गठीला हो, तुरंत उसी समय उसकी कटाई कर लें। उसे खेत में ज़्यादा दिनों तक न छोड़ें। संतुलित खाद का प्रयोग करें, यूरिया सीमित मात्रा में डालें, फास्फोरस और पोटास का भी सही अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अपने इलाके के मौसम और बुआई के समय के हिसाब से ही उन्नत और सही वैरायटी के बीज का चुनाव करें।
5: जी, फूलगोभी में खोखला तना होने की समस्या देखी जाती है, तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये खोखला क्यों हो जाता है?
6: जी, ये खोखला तना फूलगोभी में होने वाला एक विकार है, जिसमें तना नीचे से लेकर ऊपर तक अंदर से फट जाता है और उसमें खाली स्थान बन जाता है, नली जैसा बन जाता है। गंभीर मामले में ये खोखले हिस्से के अंदर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं या सड़न भी पैदा हो सकती है।
5: जी, तो यह खोखला विकार जो होता है, यह विकार किन कारणों से होता है?
6: इसका मुख्य कारण है बोरोन की कमी।
5: जी,
6: बोरोन की कमी होने पर पौधे की आंतरिक जो कोशिकाएं हैं उसकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं और तना अंदर से फटने लगता है। इसके अलावा नाइट्रोजन खाद जरूरत से ज्यादा देने पर पौधे की वृद्धि बहुत तेजी से और अनियमित होती है, जिससे तना खोखला हो जाता है। मौसम और सिंचाई में बदलाव होने से भी यह समस्या बढ़ जाती है। अत्यधिक तापमान पर या भारी बारिश के बाद अचानक मिट्टी सूखने से तना खोखला हो जाता है।
5: तो इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है?
6: जी देखिए, इसकी रोकथाम के लिए पहले मिट्टी की जांच जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच के अनुसार ही खेत में बोरेक्स या बोरोन उर्वरक का प्रयोग करना होगा। नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल सीमित और संतुलित मात्रा में ही करना होगा।
5: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्षा रानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और फूलगोभी में होने वाले विकारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
6: नमस्कार।
1: और देखो भाई बहन, एखन हमरे मन सुन ली कि फूलगोभी कर पौधा में विकार लक्षण कारण और प्रबंधन काले के हमरे मन करे चाहिए। तो भाई बहन देखो, हमरे मन खेती बाड़ी करे चाहिए, लेकिन जानकारी बहुत ही जरूरी है। और देखो जुगरी बहन, गीत मन भी सुने के चाहिए, चूंकि देखो एक तो हमरे कर खेती बाड़ी करे के मन भी लागेला और संगे संगे हमरे मन के जो कार्यक्रम है वो और बढ़िया से हो सके।
0: तो हमरे की जानकारी के संगे संगे रीझ रंग भी करे चाहिए। तो चलो हमरे नागपुरी लोक गीत के संगे रीझ करब। कलाकार है कालिंदी कुमारी और उकर संगीमन।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो भाई बहन देखो एखन हमारे जो गीत सुनली वो रहे करम गीत, और देखो तनी दिन बाद हमरे के करम परब आवत है। तो करम पर्व में देखो प्रकृति कर परब है, और प्रकृति पर्व में हमरे मन के प्रकृति कर बचाव कर भी हमरे मन प्रेरणा मन लेके चाहिए।
3: गीत तो बड़ा नगद सुना ली, करम भी नचकाल है, मन तो रिझाए गेलक, रिझे तो करत है कि और गीत सुनब, और मन के बड़ा सुकून बुझालक कि करम पहुँच गेलक है, मन बड़ा सुकून बुझात है। तो हमरे के गीत कर संगे संगे हमरे किसान से करल गोइठ के भी सुनब है कि नहीं।
2: और देखो जुगनी बहन एखन वैज्ञानिक कर खेती कर जुग है, और हमारे मन के वैज्ञानिक तरीका से खेती बाड़ी करीला। तो उसने एक किसान है सीता मुनि कुमारी जी की ड्रोन दीदी कर नाम से हमारे मन जानी ला।

0: और अपन खेत में ड्रोन कर काले के प्रयोग करे ना और किसन किसन प्रयोग से फायदा मन हो के बारे में मन के जाने के चाहिए।
1: चलो तब हमारे ड्रोन दीदी सीता मुनि कुमारी से करल गोइठ के सुनीला और इनका से गोठिया है हमरे का संगी मनोज कुमार।
0: किसान भाइयों नमस्कार। समय समय पर आप लोग को नए नए किसानों से भेंट मुलाकात करवाते रहते हैं, इसी क्रम में आज एक नए किसान से भेंट मुलाकात करवा रहे हैं जिसे हम लोग ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं ड्रोन दीदी से। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं।
2: मेरा नाम है सीतामणि कुमारी, मेरा गांव है तुसमु प्रखंड नगड़ी जिला रांची झारखंड राज्य की मैं रहने वाली हूं।
0: आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी?
2: शादी से पहले मेरा पढ़ाई हुआ था मैट्रिक तक और शादी के बाद हमने इंटर फाइनल किए हैं।
0: तो अभी आप क्या कर रहे हैं?
2: किसान घर से ही बिलोंग करते हैं तो अभी तो हम लोग खेती बाड़ी ही करते हैं।
0: कितना एकड़ जमीन है आपका?
2: धान खेती जो करते हैं ना वो लगभग 2 एकड़ में करते हैं, 1 से 1.5 एकड़ में। और टाँड खेती है वो हम लोग का होगा 50-60 में, लेकिन हम लोग लीज पे लेके और खेती करते हैं अभी 5-6 एकड़ में।
0: तो अभी आपके खेत में क्या क्या लगा है?
2: अभी हम लोगों का खेत में लगा है धान लगा हुआ है, मिर्चा है और बैगन है और फिर भिंडी भी लगा हुआ है।
0: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप ड्रोन दीदी हैं, तो ड्रोन दीदी कैसे आपका नाम आपका उपनाम हुआ, कैसे पड़ा?
2: भारत सरकार ने चलाई थी लाखपति दीदी योजना, उसी में हमको चयनित किया गया HURL के तरफ से, जिसमें हमने बिहार के समस्तीपुर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में जाके 15 दिन का ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग करवाने के बाद हम लोगों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण मिला।
0: तो झारखंड में कितने ड्रोन दीदी हैं?
2: झारखंड में तो हम लोग जैसे गड़ूरा के अभी 4 ड्रोन दीदी हैं।
0: पहले आप खेती बाड़ी करते थे, अब जब ड्रोन मिला तो दोनों में क्या बदलाव आपको पड़ा?
2: ड्रोन जब से हम लोगों को मिला है तो खेती बाड़ी में काफी बदलाव हो गया है। पहले होता था कि ड्रोन नहीं था तो खेत में छिड़काव करने जाते थे तो थोड़ा सा दिक्कत होता था, जैसे समय का बचत हुआ भी ड्रोन के माध्यम से। हम लोग 1 एकड़ में पहले लगता था कि 1.5 से 2 घंटा का समय लगता था और अभी लगता है 1 एकड़ में 7 मिनट। 7 मिनट में हम ड्रोन से छिड़काव कर लेते हैं।
0: तो ड्रोन से अपने खेतों में क्या क्या प्रयोग करते हैं?
2: ड्रोन से हम खेतों में अभी तो कीटनाशक ही छिड़काव कर रहे हैं, और जैसे नैनो यूरिया हो गया, नैनो DAP हो गया, वही सब का यूज कर रहे हैं।
0: ड्रोन आप जब चलाते हैं तो खुद चलाते हैं या किसी से चलवाते हैं?
2: नहीं, ड्रोन हम खुद से चलाते हैं।
0: ड्रोन आपको फ्री मिला है कि उसके लिए कुछ पैसा दिया गया?
2: नहीं, ड्रोन हमको मुफ्त में मिला है।
0: तो सीतामणि जी, आपको जब ड्रोन मिला तो क्या देख के आपको चयनित किया गया?
2: HURL के तरफ से ये देखा गया कि मतलब हम उस लायक हैं या नहीं, ड्रोन चला सकते हैं या नहीं, या फिर पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए उसी के हिसाब से, जैसे हम इंटर फाइनल किए हुए थे के हिसाब से ही हमको चुना गया।
0: तो आप में ऐसा कुछ तो और कुछ खास बात होगा जिसे आपको ही चुना गया? आपके क्षेत्र में खेती बाड़ी अच्छा से करते हैं या फिर?
2: किसान है तो खेती बाड़ी बहुत जगह में पहले मतलब लगाते थे तो इतना कम उम्र में खेत जाते थे, तो हम भी मतलब खेती को देख के अपने से भी दवा हम पहले भी देते थे। और जैसे गांव घर में होता है ना कि कोई बहुत कोई अपने से जाके खेत उत में नहीं जाती है और नहीं देखभाल करती है, तो हमको खेती बाड़ी करने का भी नॉलेज है, हम खुद से भी खेती लगाते हैं।
0: जब ड्रोन से आप छिड़काव करते हैं तो सिर्फ रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं कि जैविक दवा का इस्तेमाल करते हैं आप?
2: नहीं, ड्रोन से हम तो जैविक भी छिड़काव करते हैं, जैसे बीजामृत हो गया, घनजीवा अमृत हो गया, निमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, और रासायनिक भी छिड़काव करते हैं।
0: तो सिर्फ दवा का इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कुछ खाद मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं?
2: नहीं, अभी तो बस नैनो यूरिया और DIP का ही हम लोग लिक्विड फॉर्म में छिड़काव कर रहे हैं।
0: एक बार जब आप ड्रोन को चार्ज करते हैं तो कितने देर तक उड़ान भर के अपना छिड़काव करता है वो?
2: एक बार हम जब ड्रोन को चार्ज करते हैं तो 1 एकड़ का छिड़काव कर लेता है।
0: तो उसमें कितना लीटर का दवा आप उसमें रख सकते हैं?
2: 10 लीटर का टैंक है मेरा ड्रोन में, और 1 एकड़ में हम जितना दवा भरेंगे उतना ही दवा को 10 लीटर टैंक में भर के हम छिड़काव करते हैं।
0: आपके गांव में जब आपका ड्रोन दीदी के नाम से सब कुछ जानते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा आपको लगता है?
2: जब से ड्रोन दीदी बने हैं तो पूरा प्रखंड जानता है, पहले तो गांव घर ही जानता था, लेकिन अभी पूरा प्रखंड लेवल तक हमको जानता है कि ड्रोन दीदी सीतामणि कुमारी है। तो अच्छा महसूस होता है कि ड्रोन दीदी आ रही है, ड्रोन दीदी है, मान सम्मान मिला और आज मेरा नाम रोशन हो रहा है।
0: सीतामणि जी, जैसा कि आप अपने खुद से जब छिड़काव करते थे और अब ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं?
2: पहले हम लोग जैसे पीठ में लाद के छिड़काव करते थे तो छिड़काव करने में काफी परेशानी आती थी, जैसे खेत में हम लोग छिड़काव करते थे तो नाक मुंह में भी दवा घुस जाता था, उससे हम लोग का शरीर को नुकसान भी होता था। और अभी हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर रहे हैं तो ड्रोन ऊपर उड़ के छिड़काव कर रहा है, ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं तो सभी पौधा में बराबर मात्रा में हम लोगों का दवा पहुंच रही है। पहले हाथ से करते थे तो सभी पौधा में बराबर मात्रा से दवा नहीं पहुंचता था, और

0: झाड़ी जैसे ऊंचा गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये सब फसल में छिड़काव करने में हम लोगों को मतलब दिक्कत होता था पहले, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से हम छिड़काव कर रहे हैं तो अभी हम लोगों को हर फसल में एक बराबर मात्रा से दवा का छिड़काव हो पा रही है।
1: जो किसान भाई हमारी बातों को सुन रहे हैं उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जो किसान भाई हमारे बातों को सुन रहे हैं उसको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि ड्रोन का यूज करें, ड्रोन का इस्तेमाल करें और ड्रोन से ही दवा का छिड़काव करें। काहे कि ड्रोन से छिड़काव करने से हर पौधा में सीमित मात्रा में दवा पहुंच जाती है, उसमें कीट लगने का संभावना नहीं रहती है।
1: तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ थे ड्रोन दीदी सीता मुनि कुमारी, जो की अच्छी अच्छी बातें कहीं और ड्रोन के बारे में काफी कुछ बातें कहीं। तो किसान भाई, आप लोग को भी ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने खेतों को हरियाली बनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहिए।
2: तो एखन हमरे मने ड्रोन दीदी सीता मुनि कुमारी से करल गोइठ के सुन ली, बड़ा नगर जानकारी देला कि ड्रोन कर हमरे मने खेती बाड़ी में का तेर उपयोग कर सकेला, जो नवा तकनीक है एकर उपयोग कैसन करल जा सकेला, सेकर बारे में बड़ा नगद जानकारी देला।
1: तो भाई बहन देखो, एकरे संग आज कर किसान वाणी कर बेरा हो सिरात है।
2: तो बता देवे चाहिला कि ई कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुति रहे प्रभु शरण केर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: खुश रहो, मस्त रहो और अपन खेती में नवा नवा प्रयोग करते रहो। रोनमन रेडियो संगे मनोज और
7: जुगनी बहन के देव विदा।
6: जोहार।

अक्षिता, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, AP 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, विश्वकर्मा पूजा सृजन, निर्माण और श्रम के देवता माने जाते हैं। श्रम का महत्व सर्वाधिक है इसमें, सभी क्षेत्रों में, खास करके कृषि क्षेत्र में भी। और अभी देखिए, खेतों में धान की फसल लहलहा रहे हैं और यहाँ भी मेहनत के बदौलत हमारे किसान भाई जो हैं वो उनके जो अभी धान खेत में लहलहा रहे हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत दिखाई देती है। और वो उनकी कड़ी मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए, यानी कि रोग कीट यदि लगते हैं उन पर तो उनका सारा मेहनत व्यर्थ चला जाता है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि समय पर वो इन पर लगे रोगों और कीटों पर नियंत्रण कर लें, क्योंकि धान की फसल में अच्छी उपज के लिए समय पर खेत की देखरेख करनी भी बहुत आवश्यक होती है। यानी आप समय समय पर खेतों के निरीक्षण करते रहें, साथ ही संतुलित पोषण, कीटों की निगरानी और रोगों का उचित प्रबंधन भी जरूरी होता है। किसान भाइयों, हम बता दें कि धान की फसल में खेतों में पानी का भी प्रबंधन बहुत ही मुख्य होता है, क्योंकि धान को हर समय बहुत अधिक पानी में डुबोकर रखना होता है।

में बहुत अधिक पानी की सिंचाई कर देते हैं, लेकिन इससे फसलों को भी नुकसान होता है और पानी की बर्बादी भी होती है। तो यहाँ पर सोच समझ कर आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। खरपतवार धान के साथ साथ पानी, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इसके रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद खेत की निकाई गुड़ाई करते रहें। आवश्यकता के अनुसार दोबारा खरपतवार निकालने की आवश्यकता हो तो आप दोबारा भी इसे निकाई गुड़ाई करके निकाल सकते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग यदि बहुत आवश्यक हो तभी करें, नहीं तो आप जैविक तरीके से भी आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं और दवा की मात्रा और सही समय इन सब की जानकारी के अनुसार ही आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। अब हम बातें करेंगे प्रमुख कीट की। जो धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं वो है तना छेदक। इसमें पौधे की बीच वाली पत्ती सूखकर आसानी से निकल जाती है, जिसे कि डेड हार्ड कहते हैं, और बालियां निकलने के बाद दाने ना बनना, वाइट ईयर दिखाई दे सकता है। खेत में नियमित निगरानी करें। अधिक प्रकोप की स्थिति में आप अपने आसपास के कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार उसमें कीटनाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं और समय रहते इन पर नियंत्रण अवश्य कर लें। उसी प्रकार से श्रोताओं देखा जाता है उसमें धान में पत्ती लपेटक, इनके जो कीट होते हैं वो पत्तियों को मोड़कर उसके अंदर से हरा भाग खा जाते हैं, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद धारियां दिखाई देने लगती है और खेत की निरीक्षण करने पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो आप उन पर नियंत्रण करें और जरूरत पड़ने पर कीटनाशी दवाओं का भी छिड़काव करें। यदि हम बातें करें भूरा माहू का, तो यहाँ पर ये पौधे के निचले हिस्से से रस चूसते रहते हैं इसके कीट, और अधिक प्रकोप में पौधे सूखने लगते हैं और खेत में गोल गोल सूखे क्षेत्र दिखाई दे सकते हैं। खेत में ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन ना डालें, पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करें और कीट की संख्या बढ़ने पर आप उस पर नियंत्रण करने के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। धान में लगने वाले कुछ रोग हैं जो बहुत ही मुख्य होते हैं, जिसे कि हम झुलसा रोग भी कह सकते हैं, तो पत्तियों पर आंख या नौ के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं, गर्दन पर संक्रमण होने पर बालियां सूख सकती हैं। संतुलित उर्वरक प्रबंधन, खेत की निगरानी और रोग की शुरुआत में ही आप इस पर रोकथाम के लिए फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करें या फिर जैविक तरीके से इस पर नियंत्रण पाएं। उसी प्रकार से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट मुख्य रोग है। पत्तियों के किनारों से पीला होना, सूखापन बढ़ना इत्यादि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। खेत में अनावश्यक चोट से बचाएं, संतुलित पोषक तत्व डालते रहें और रोगग्रस्त खेत से स्वस्थ खेत में पानी का प्रवाह जो है उसे रोकें और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी आवश्यकता के अनुसार ही करें, और इस प्रकार के यदि लक्षण दिखाई दे तो उस पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। शीत ब्लाइट ये भी एक प्रकार के रोग है। पौधे के पत्ती को खोलकर पानी जैसे धब्बे बनते हैं जो बाद में बढ़ जाते हैं, और खेत में अत्यधिक नमी और बहुत घनी फसलों से बचना चाहिए। जहाँ पे बहुत अधिक घनी धान लगाए जाते हैं, पत्ती लगाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार के रोग ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस प्रकार के यदि रोग दिखाई दें तो उस पर फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन की यदि हम बातें करें, तो सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे खेत का निरीक्षण अवश्य करें हमारे किसान भाई। खेत में पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप जैसे विधियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। खेतों में मित्र कीटों और मकड़ियों को अनावश्यक कीटनाशी से नष्ट न करने दें। नाइट्रोजन उर्वरक की अत्यधिक मात्रा न डालें। रोगग्रस्त पौधे और अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। एक ही कीटनाशी या फफूंदनाशी को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके जगह आप अलग अलग दवाओं का प्रयोग करें तो ज़्यादा उचित होगा। दवा की मात्रा, फसल, कीट, रोग और उसके आवश्यकता अनुसार ही रखें, और लेबल पर दी गई मात्रा, सुरक्षा इत्यादि को जरूर उसमें उसका पालन करें।

0: कोविड या रोग की पहचान होने पर या संदेह होने पर नमूना लेकर आप उसके अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं और आप आश्वस्त हो सकते हैं कि किस प्रकार के रोग है और निर्देश के अनुसार जो भी आपको उसमें परामर्श दिए जाते हैं उसका पालन करें। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई धान फसलों को लहलहाते हुए यदि देखना चाहते हैं, उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप समय समय पर निरीक्षण करें और जिस जो भी आपको लक्षण दिखाई दे उसका तुरंत निराकरण करें। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। एक महिला किसान से ली गई भेंटवार्ता है। भेंटवार्ताकार है सीता देवी गोदर्मा विश्रामपुर पलामू से। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाड़ी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड के गोदर्मा कला गांव की एक सफल महिला किसान सीता देवी, जिनसे आज विस्तृत बातें होगी खेती बाड़ी की। स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। अभी आप क्या क्या लगाई हैं खेतों में?
2: उधर हम लगाए हैं सर, मकई बुने हैं, भिंडी बुने हैं, नेनुआ है, झींगी है, अरहर है।
1: तो मकई भिंडी, मकई तो अब काटने की अवस्था में,
2: मकई अलग है, भिंडी अलग है।
1: अच्छा,
2: दूसरा दूसरा खेत में रोपे हैं हम लोग।
1: हाँ।
2: और उसी में कोहरा है, उसी में लौका है, सब उधर मतलब लगाए हैं, फर नहीं रहा है, पानी से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है।
1: क्या इधर क्या क्या कोहरा वगैरह में क्या दिक्कत आता है?
2: कोहरा में दिक्कत यही है कि पानी से जलकाव हो गया है, पूरा पियर हो गया, मतलब सूखने तरह के। अब दूसरा नया सोर बिकेगा तो हम लोग अपना हरियाली देगा, खाद मान दिया, दवाई दिया, तब चलेगा।
1: अच्छा, और उसके बाद अभी क्या चीज की तैयारी चल रही है आगे के लिए?
2: आगे के लिए तैयारी यही है कि गाजर बुनाएगा, आलू रोपाएगा, लहसुन प्याज मिर्ची भंटा, ये सब धान भी किए हैं, तिल है।
1: गाजर की खेती कैसे करती हैं?
2: गाजर की खेती करते हैं सर हम लोग की अपना नहर से जुतवा देते हैं, उसके बाद फिर रोटा बेटा से जोतवाते हैं, जोत के उसका में बीज एक परत गोबर लेड़ी डाल देते हैं, जितना जमा किए हैं उतना, और डाल के और फिर जुताई करते हैं। जुताई करके बिहन का दिन रात भर फुलाते हैं, फिर उसको माठा में बोते हैं, बो के और फिर सुबह ओकरा घामा में हल्का हल्का दवाई खजर के धूप लगा के तब बुनते हैं, बुन के और उसका हम झोरा बनाते हैं।
1: अच्छा,
2: झोरा बनाते हैं तो लम्बा लम्बा घिंचता है।
1: अच्छा,
2: और वह झोरा बना के हम गाजर का बो देते हैं और फिर खाद देकर ऊपर से गोबर के और डीएपी या जो मतलब
1: उसमें आवश्यकता,
2: हाँ, दवाई सब डालना है घास मारने के लिए, वही तरीका के हम बुन के पटाते हैं। और पटा के उसका सिंचाई करके वह जब इतना बड़ा बड़ा जम जाएगा कुछ चरचर अंगूर के, तो उसका में घास जब अपने से बिनना स्टार्ट करेंगे, हम भी बिनेंगे, बाल बच्चा बिनेंगे,
1: मतलब खर पतवार निकाल,
2: हाँ, खर पतवार सब पूरा निकाल देंगे। ओकरा बाद फिर वे उसका में जितना है गोबर का कूट कूट के फिर ओकरा छिटाई करेंगे।
1: अच्छा,
2: और छिटाई करके उसी में हम क्या करते हैं कि फिर जैसे कि पिलुआ पताई खाने लगता है तो उस पर दवाई मरवाते हैं, जो घरेलू दवाई उपलिन करते हैं, तो वही वाला हम अपना गाजर में डालते हैं कि गाजर का पत्ती नहीं पिलुआ खाए।
1: अच्छा, और ये तो गाजर की बात हो गई, इसके बाद और
2: आती जो गोभी है, तो गोभी को खेत जुताई कर देते हैं एकदम पूरा प्लेन, उसका में दाहा मार के गोबर के एकद मुठा एकद अजरी डाल के या पानी डाल के उसका गोभी के लगा देते हैं।
1: अच्छा
2: अच्छा, लगा के उसका फिर पटा देते हैं। पटाने के बाद पूरा फिर दो चार दिन होगा तो उसका में फिर दवाई गोबर खाद जोन फिर जरी तर देंगे देते हैं हम लोग कि जो कि मतलब जल्दी विकास करे, यही तरीका के हम करते हैं।
1: इधर आपका ब्रोकली की खेती पर क्या आप लोग का ध्यान रहता है?
2: ब्रोकली के खेती पर वही जैसा कि इसमें करते हैं तैसे उसमें भी करते हैं,
1: ब्रोकली में भी।
2: हाँ, ब्रोकली में भी जितना ये गोभी में मेहनत करते हैं उतना वो ब्रोकली में भी गोभी में मेहनत करते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, दोनों के बिहन तल बदल मतलब तैयार होने वाला है, अब खेत में बोआएंगे दोनों।
1: अच्छा, और धान में भी क्या क्या समस्या आ रही है?
2: धान में इधर तो समस्या ये है कि ज़्यादा पानी के प्रभाव है, पानी बह रहा है, उसी में जो घास है तो उसमें घास मरने के लिए दवाई डलेगा और नहीं तो पूरा हिल के कदई में और अपना सोह सोह के बाहर बिगेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
2: और जो पिलुआ लग जाएगा तो लाठी से इसे इसे पूरा झाड़ देंगे, झाड़ के और उसको पूरा पानी निकाल देंगे, पुरुआ पूरा मतलब खत्म हो जाएगा, पिलुआ बह जाएगा, तब उसी का मुंह ही बांध के फिर खाद देंगे और दवाई दे के पाटना पानी उसमें डुबा देते हैं।
1: मोटे अनाज में किसकी खेती की है?
2: मोटी में अनाज में इधर तो मकई भर है, अरहर है, तिल है और अब तो मान लो कि पूरा एकदम टोटल खेती पानी से एकदम जल गया है, मकई सकई सब अब तुर फार के हटा के पूरा जोताई करके चना बुनाई होगा। टोटल में चना, लोटनी, मसूर, खेसारी, बटुरा जितना है वो सब हम लोग बुनेंगे उसमें।
1: चना की क्या तैयारी चल रही है अभी?
2: चना की तैयारी चल रहा है कि वह खेती में जितना गोबर है उतना सब डलाया है एक दिशा से, जब खेत के पानी सूख जाएगा खेत पूरा तो उसी का जोता के उसी में चना अपना अथी जोताई करके और पूरा हर से मतलब पहल का माला बास से जो बुनाता है वो तरीका से धारी से मतलब ऐसे सेवतल जाएगा, ये तरीका के हम करते हैं।
1: अच्छा, धान की अभी जो समस्या है वो तो हम लोग जान लिए।
2: हाँ।
1: और चना की खेती की तैयारी चल रही है, सरसों की भी तो तैयारी अब हमारे ग्रामीण भाई लोग लगेंगे।
2: हाँ, सरसों भी वही तरीका के जितना इसमें मेहनत है किसान भाई उतने सरसों में भी मेहनत है कि जब सरसों जम जाएगा तब दवाई देना स्टार्ट हो जाएगा, कहे कि माहो लग जाएगा तो उसमें पूरा एकदम एगो दाना नहीं पड़ेगा,
1: खराब कर देगा।
2: हाँ, खराब कर देगा। वही हिसाब से हम करते हैं या वो दवाई देंगे, पूरा घास पात है से फिर निकालेंगे, दवा देंगे, पानी पटाएंगे।
1: यहाँ जो उत्पाद तैयार करती हैं कहाँ बेचने जाती हैं?
2: उत्पाद करते हैं तो मान लीजिए कि यही रेला पूरा तौल देते हैं थोके ठेला से गाड़ी से ले जाके और नहीं तो गढ़वा ले जाते हैं, सब बेचते हैं
1: गढ़वा ले जाके।
2: हाँ, और इसे तो रोज बाजार है गोदरमा रेला।
1: कब का बाजार लगता है?
2: बाजार सुख के और मंगर के बाजार लगता है
1: गोदरमा में।
2: हाँ, गोदरमा रेला में।
1: अच्छा, और गढ़वा?
2: गढ़वा तो बीफे के बाजार है, हर बीफे हफ्ता में एक दिन बाजार है।
1: ज्यादा फायदा कहाँ नजर आता है आपको?
2: ज्यादा मतलब जैसे कि गढ़वो है कि प्रतिदिन बाजार है, एक दिन के बाजार नहीं है, जैसे कि तुर फार के लाद के गाड़ी पर ले जाइए तौल के आ जाइए गढ़वा। और यहाँ तो है कि मतलब अपना दूधौरी एक गाड़ी मतलब अपना एक क्विंटल लेके चले भर मतलब रोगा बाजार में लिया के बैठ के बेच सकते।
1: अच्छा,
2: यही तरीका।
1: अरहर की क्या स्थिति अभी?
2: अरहर के जैसे कि इधर तो अरहर पूरा पियर हो गया है, अब अरहर का पूरा जमीन जब सूख जाएगा किसान भाई तो वही तरीका के उसमें खाद डलाया है, खाद डलाया है तो उसमें फिर दवाई डलाएगा, फिर पूरा पत्ती हरियर होगा, उसी विकास से चलेगा। अधर तो उसमें लेट है, अधर चैत में अरहर तैयार ना होगा।
1: गन्ना भी लगाई है क्या?
2: गन्ना हमारे पास तो नहीं है, कवि जी भी था तो वो सब जोतवा दिया उसका बेटा पुतो, यहाँ पर कवि जी नहीं है। थोड़ा बहुत है गन्ना, चार गो थान है मोरार मतलब खाने पीने भर लगाए हम भी है।
1: अच्छा अच्छा। और बाकी आपका यही सब्जी की खेती आप अधिक बड़े पैमाने पर?
2: हाँ, सब्जी की खेती ज्यादा है, गेहूँ बुनाएगा फिर वो आएंगे, गेहूँ बुनेंगे, चना बुनेंगे, मसूर।
1: गेहूँ की तैयारी तो कर रही होंगी?
2: हाँ, गेहूँ भी खेत प्रति असो उतना धान भी नहीं रोपाया है, पानी पीछे गिरा है ना किसान भाई, तो ऐसे हम लोग थोड़ा पछुआ गए हैं। कुछ धान रोपे हैं मतलब 2 बीघा में और बाकी इधर पूरा परत है तो उसमें गेहूँ चना मसूर लोटनी खेसारी बटूर ये सब बुनेंगे।
1: अभी उसकी तैयारी मतलब में लगे?
2: हाँ, तैयारी
1: तो मतलब जमीन की तैयारी सबके लिए कैसे करती हैं, कई बार जुताई करती हैं जमीन को?
2: जमीन को तैयारी जुताई होता है देखिए कि 3-4 चास तक एक लगले होता है किसान भाई, 3-4 चास जब लगले करके उसका छोड़ देते हैं, जब पानी 1-2 पानी गिरता है तो बुनते हैं, अब नहीं तो अपना सच्चाई से पूरा पटाते हैं, पटा के पूरा घास जब जम जाएगा तब फिर खेत के चरक हो जाएगा तब फिर उसका जोताई करेंगे, जोताई करके तब फिर उसमें हम बुनेंगे।
1: और जैसे हमारे बहुत से किसान भाई लोग अब जैविक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं खेतों में, तो फिर अभी क्या आपकी क्या स्थिति है?
2: जैविक खाद का अभी है हमारे लिए कि मतलब सब कुछ मेरा मिला है, जैविक खाद का टंक भी बन गया है और जैसे कि प्लास्टिक बेर भी हो सकता है, टंक मिला है, इन्हें साल सब हम लोग तैयारी किए हैं, केचुआ खाद डाले हैं और केचुआ उसमें डाले हैं गोबर में, वही तरीका से पूरा गोबर खा जाएगा। पानी डालते हैं प्रतिदिन, तो जब गोबर केचुआ खा के एकदम चाल के धूल जैसा कर देगा तो वह केचुआ के मैं हम चलनी से चाल के पूरा पॉकेट में भर देते हैं, तो बेचते भी हैं और वही अपना कठौत गमला में ले जाके खेत में डालते हैं पूरा।
1: तो इसको सरकार द्वारा लाभ मिला था आपको केचुआ पालन के लिए?
2: हमको यहाँ मिला है केचुआ पालने के लिए, बिरला में मिला है केचुआ और टंक भी मिला है और फिर यहाँ अथी विभाग में मिला है, दान विभाग में पूरा सामान पूरा टीम में मिला है।
1: अच्छा,
2: हमको भी मिला है, मेरा दोनों बहू के भी मिला है। तो यही हम लोग सब
1: तो खेती बाड़ी जो करती है तो सब लोग घर के सदस्य लोग?
2: सब घर लोग के सदस्य लोग सब करते हैं, बाले बच्चे सब
1: है ना।
2: हाँ,
1: सब मतलब कि जितना भी घर का सब लोग का भरण पोषण हो गया, पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब कुछ इसी से?
2: हाँ, पढ़ाई लिखाई सब खेती गृहस्थी से है। अब दोनों लड़कन जो है से बाहर में है तो वो अपना अपना करते हैं अपना विकास के लिए, उसका हम से मांगते नहीं है। जो हम चलाते हैं पूरा घर खेती गृहस्थी से, पूरा बाल बच्चा के खिलाने पिलाने दवा दारू सब अपना से हम कराते हैं घर के खेती गृहस्थी से। अब बाकी उसका छोड़ दिए अपना विकास के लिए कि अपना विकास करे। बोलेरो भी एक ठो लिए हैं छोटा वाला बाबू, बड़ा वाला के है कि जैसी जी लेंगे। अब एक दो चार महीना अंदर के मतलब अब सब अपना अपना पैर पर करके तैयार
1: हो। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी सीता देवी और अपनी खेती बाड़ी संबंधित जानकारियां साझा की, इसके आपको धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, एक महिला कृषक से ली गई भेंटवार्ता था। भेंटवार्ताकार थी सीता देवी और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओं, जाते जाते हम बातें करते हैं सितंबर माह में मुख्य कृषि कार्य की। तो श्रोताओं, बता दें कि सितंबर महीना खरीफ फसलों की देख रेख, कीट रोग कीट प्रबंधन और आगामी रबी फसलों की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और क्षेत्र और मौसम के अनुसार कृषि कार्यों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को अभी क्या करना है, उन्हें खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें, बहुत अधिक पानी जमा ना होने दें, आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़े तो जल की निकास जरूर करें। धान में नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा को जो है वो डाल दें और ज़रूरत से अधिक यूरिया ना डालें। खरपतवारों पर नियंत्रण समय पर कर लें ताकि फसल में जो पोषक तत्व है पानी के लिए स्पर्धा न करना पड़े। मक्के के देखभाल के लिए मक्के में तनाछेदक और फॉल आर्मी वर्म की निगरानी करें। पौधे की पत्तियों और तने को जो है ध्यान से देखें, रोग या कीट दिखाई देने पर उनकी पहचान करें और आवश्यकता अनुसार उन पर नियंत्रण कर लें। दलहनी फसल में अरहर उड़द मूंग सोयाबीन मूंगफली जैसे फसलों में जल भराव ना होने दें। खेत में रोग और कीटों की नियमित निगरानी करते रहें। फसल पकने की अवस्था में समय पर कटाई करने को तैयार रहें। सब्जियों में श्रोताओं, फूलगोभी पत्ता गोभी टमाटर मिर्च बैंगन और अन्य सब्जियों की आगामी फसल के लिए नर्सरी आप खेतों में तैयार कर लें। नर्सरी में जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित सिंचाई भी की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही रोगग्रस्त पौधे को भी हटा दें। रबी फसल की तैयारी के लिए आप तैयार रहें श्रोताओं। गेहूं चना मसूर सरसों मटर आदि के लिए खेत बीज और खाद की व्यवस्था कर लें और जहां संभव हो मृदा परीक्षण के लिए आप उर्वरक के लिए भी डालने के लिए भी पूरी तैयारी कर लें। तो इस प्रकार से श्रोताओं, आप अभी ज़रूरत है कि आप रबी फसलों में जो भी तैयारी करनी हो उसकी बुआई के लिए वो सभी तैयारियां करके रखें, क्योंकि अब खरीफ फसल पकने को है, उनकी कटाई जैसे ही होगी आप अपना जो रबी फसलों की तैयारी शुरू कर लेंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हमें दें इजाज़त। कार्यक्रम ग्रामीण सभा से नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। रांची, जमशेदपुर समेत राज्यभर में रक्तदान शिविर और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। नक्सली अभियान में एक और बड़ी सफलता। सारंडा और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहे माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में किया आत्मसमर्पण। गिरिडीह में दिवंगत मंत्री सुदेव कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कई मंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राज्य में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा का महापर्व। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की रांची के नामको में राज्य स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। और राज्य के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में हुआ चयन। ईरानी कप में ऋषभ पंत के साथ खेलेंगे मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। इस उपलक्ष में रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। श्री मरांडी ने श्री मोदी के 25 वर्षों के जन सेवा काल की सराहना की।
1: लोगों को लगता नहीं था कि ये काम कभी संभव हो पाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम दिखाया। जैसे देश में जम्मू कश्मीर में 370 था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 370 धारा समाप्त, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा को समाप्त कर दिया।
0: पीएम मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर

0: सेवा संकल्प अभियान के तहत आज हम बात कर रहे हैं नक्सल उन्मूलन की। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रभावित होकर करोड़ों के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में शांति और विकसित भारत की राह आसान हुई है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और सुरक्षा बलों के चौतरफा अभियानों के कारण नक्सलियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता ने राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद के खात्मे के साथ साथ आम जनजीवन को नई दिशा दी है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। गांव वीरान हो रहे थे, लोग डर के साये में जीते थे, लेकिन फिर बदलाव की एक शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं।
1: सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई के साथ साथ सुदृढ़ पुनर्वास नीति के चलते आज राज्य के सुदूर बूढ़ा पहाड़ से लेकर सारंडा के जंगलों तक शांति लौट आई है। कभी उग्रवाद की मार झेलने वाले सारंडा क्षेत्र के नागरिकों ने इलाके में लौटी शांति और विकास पर अपनी खुशी जाहिर की।
3: मेरा नाम रोया नागरी है, टोंटो प्रखंड क्षेत्र से हूँ। और नक्सलाइट अभी खत्म होने के बाद विकास पटरी में आ गया है। विकास बीएसएनएल का टावर था, ना जियो का टावर था, ना एयरटेल का टावर, किसी भी कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत था।
4: पश्चिम सिंह चैमासा से रवि बिरोली। हमारे क्षेत्र में पूर्व में नक्सल बहुत ज्यादा अपना पैर फसारा हुआ था, लेकिन वर्तमान में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो है क्षेत्र में विकास की गंगा बहने वाली है और जगह जगह जो रोड पुल पुलिया जो है ये बनना शुरू हो चुका है। अब विकास जो है अच्छी गति पकड़े लिया।
1: नक्सलवाद के अंत में राज्य के सुदूर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में चौतरफा विकास के नए द्वार खोले हैं, जिससे यहां के लोग भी अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से दिलीप बैनर्जी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। असीम मंडल पर झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा कुल 2,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने असीम के पश्चिम बंगाल में सरेंडर करने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह पहुंचे और दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते थे और उनका निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है।
5: झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक ये बहुत बड़ा क्षति है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन है। और बतौर मंत्री रहते हुए जो उनकी सक्रियता थी, अभी भी मन मानने को तैयार नहीं कि वो हमारे बीच नहीं।
0: इस दौरान सरकार के कई मंत्री और मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी कार्यक्रमों में इसके केवल शुरुआती 2 छंद गाने की अनुमति मांगी है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे कांग्रेस के तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है।
6: लगता है कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा मतलब राष्ट्रीय गीत के साथ जो राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही सही नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में जब गाया जा रहा था तो बीच में ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने उस गाने को लेकर कितना बौखलाहट दिखाई दिया।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना राज्य में कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके तहत गुमला में बांस शिल्पकारों को आधुनिक टूल किट मिली है, जिससे उनके उत्पाद रांची के मेलों तक पहुंच रहे हैं।
7: मैं पीएम विश्वकर्मा के तहत मैं मोदी जी को बहुत बहुत उसका जन्मदिन में धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा में मुझे जो लाभ मिला है, जैसे ट्रेनिंग करके जैसे मुझे टूल किट मिला है 15,000 का, उसके बाद में मुझे काफी सारा लाभ मिला है उनके तरफ से, तो जैसे कि लोन मिला है और उन्हीं के अनुसार से मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ।
0: वही हजारीबाग में कुम्हार महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण तेज हुआ है, जिससे उनकी आय में भारी बढ़ोतरी हुई है।
8: हम लोग को बहुत फायदा हुआ और अभी भी घर बैठे रोजी रोजगार कर सकते हैं। और फिर मतलब कभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब यहाँ पीएम विश्वकर्मा का योजना का ट्रेनिंग हुआ तब से बाहर भी निकलने लगे, अपना घर भी संभालने लगे और रोजी रोजगार भी करने लगे।
0: राज्य भर में आज निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। रांची के नामकुम में आयोजित भव्य महोत्सव में कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने नामकुम में जल्द ही एक नया कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बड़ी घोषणा की।
9: हम लोग नामकुम में भी कौशल विकास का केंद्र खोलेंगे, ताकि उसमें हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ेगी तो उनको बढ़िया जॉब पूरे झारखंड में मिल सकता है, क्योंकि काफी उद्योग की संभावना है। जो हमारे लोग बाहर जाता है, बाहर का पलायन को रोक करके हम उसको यहाँ पे रोजगार में सम्मिलित कर सकते हैं, ये हम लोगों सरकार की पॉलिसी है।
0: रांची स्थित जेवीएम श्यामली स्कूल के पूर्व छात्र और झारखंड के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का चयन प्रतिष्ठित ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में हुआ है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिनर शिखर अब ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। रांची जमशेदपुर समेत राज्यभर में रक्तदान शिविर और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। नक्सली अभियान में एक और बड़ी सफलता, सरंडा और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहे माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में किया आत्मसमर्पण। गिरिडीह में दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राज्य में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा का महापर्व। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की रांची के नामकुम में राज्य स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। और राज्य के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में हुआ चयन। ईरानी कप में ऋषभ पंत के साथ खेलेंगे मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है।
1: मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
9: जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। मेरा युवा भारत सिमडेगा की लेखा अधिकारी सोरिना टेटे ने 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से क्विज में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि
2: इसका ये प्रथम चरण है और यह स्वामी जी जो युवाओं के आदर्श पुरुष कहे जाते हैं 12 जनवरी 2027 को जब हम लोग इसका राष्ट्रीय स्तर पर मनाएंगे उसका यह एक तरह से तैयारी है और यह पहला चरण है और ये हर एक जिला में ये क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है और इसमें हमारे जिले के 15 से 29 साल के हमारे छात्र भाग लेंगे, प्रतिभागी भाग लेंगे और उसमें से जो चयन होकर आएंगे उनका 500 शब्दों में निबंध प्रतियोगिता होगा जिसे वो अपलोड करेंगे और उसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको फिर राज्य स्तर पर शामिल होने का अवसर मिलेगा और उसमें और जो बेहतरीन अपना प्रदर्शन करेंगे उनको फिर राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
1: स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज को लेकर चल रहे महाप्रयोग में सिमडेगा के वैज्ञानिक सिद्धार्थ प्रसाद भी शामिल हैं। पिछले दिनों सिमडेगा आए वैज्ञानिक सिद्धार्थ प्रसाद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि
3: तो जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसमें ये जेनेवा में है सर्न में स्विट्जरलैंड में और इसका मुख्य जो पहलू है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि हम लोग जो सबसे एक्सेप्टेबल जो हाइपोथेसिस है या थ्योरी है वो ये कहती है कि बिग बैंग हुआ जो कि एक महाविस्फोट आप उसको कह सकते हैं। बिग बैंग के बाद ही इसके बाद ही सारे के सारे ब्रह्मांड का इस क्रिएशन हुआ उत्पत्ति हुई।
1: सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्न और मध्यम वर्ग के कारोबारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक सन्नी अभिजीत मिंज ने कहा कि
4: अभी तक सिमडेगा जिला में टोटल 14,279 लाभुकों को मुद्रा योजना के तहत आच्छादित किया गया है और उसके तहत 168 करोड़ से अधिक का लोन उनको दिया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में 7,822 अकाउंट में 122 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जिसमें
1: सिमडेगा जिले में आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ की गई। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों गैर सरकारी प्रतिष्ठानों बस स्टैंड ऑटो स्टैंड आदि में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करते हुए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की गई। मनोज कुमार सिन्हा मनु आकाशवाणी समाचार सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता के रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कर।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग।

0: उलझे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और

0: और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपए जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य

0: रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 20

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनअतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी ने यह बात नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कही।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसी हो रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है।
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की, इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबरा मीटिंग की मेजबानी की जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि ये भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमिकॉन 2.0 के जरिए सनत को फरोग देना है जो 6 अहम सुतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तहकीक और तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप्स और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक

0: countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा, इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
4: जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
5: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
6: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मेडल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है जब हसरत जफरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक डुएट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न व इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बारावंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गाने लिखे।

दोस्तों, हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तुरी बाजे पहलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अंबेडकर

0: वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,
1: तेरी

0: थे।
1: पगला कहीं का इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: तुम मुझे।
1: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति।

0: वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोपके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस के रूप में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmoments.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। भारत ने दिल्ली में 3 T20 मैच की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 7 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। भारत ने अभिषेक शर्मा की 34 गेंद पर 108 रन की शानदार पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 221 रन बनाए। इसके साथ ही अभिषेक भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said the outlay for second phase of India's semiconductor mission 2.0 has been increased to 30

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत

0: और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said, the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said, India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The 3-day conference.